मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः की 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका रेडियो मित्र अजय धाकड़। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर

0: गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रसमूह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा GST, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPS के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और NIA ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये मातृवंदना।

अभी आपने सुनी ये मातृवंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शिव साथी कार्यक्रम में आगे लीजिए आप सुनिए उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

ओम व्यास के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भक्ति रचना।

शर्मा बंधुओं के स्वर में अभी आपने सुनी है भक्ति रचना। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है परिवार मूल्य, इस विषय पर आज का ये चिंतन। चिंतक हैं डॉक्टर जी वी सिंह।

0: जापान के एक पूर्व सम्राट यमातो के मंत्री ओचोशान पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनके परिवार में 100 से भी अधिक सदस्य थे, किंतु वे सभी एक साथ पूर्ण सौहार्द से रहते थे। उनमें कभी भी किसी बात को लेकर खटपट नहीं होती थी। ये बात सम्राट के कानों तक पहुँची। सम्राट को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सम्राट बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात मंत्री के घर पहुंच गए। स्वागत सत्कार स्वीकार करने के उपरांत सम्राट ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि इतने अधिक सदस्यों वाले आपके परिवार में शांति और सौहार्द का रहस्य क्या है? मंत्री ने अपने पौत्र से एक कागज़ और कलम मंगाया और कागज़ पर कुछ लिखकर सम्राट को देते हुए कहा, महाराज, इस कागज़ पर मैंने अपने परिवार की शांति और सौहार्द का मूल मंत्र लिख दिया है। सम्राट कागज़ पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। कागज़ में एक ही शब्द 3 बार लिखा था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। मंत्री द्वारा लिखा गया यह मंत्र न केवल मंत्री के परिवार के लिए अपितु संपूर्ण विश्व परिवार के लिए एक सार्वकालिक और सार्वदेशिक महामंत्र है। आज जबकि संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग बीते दिनों की बात हो गई है, एकल परिवार समय का यथार्थ बन गया है, परिवार का अर्थ ही बदल गया है, भाई भतीजी के कौन कहे, वृद्ध माता पिता को भी कोई साथ नहीं रखना चाहता, तब हमें परिवार की उपादेयता और परिवार मूल्यों की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की एक अनिवार्य इकाई है। मानव संस्कृति का समारंभ और विकास पारिवारिक या कौटुंबिक जीवन से ही हुआ है और आज भी वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। परिवार छोटा हो या बड़ा, किंतु परिवार के बिना हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह परिवार ही होता है जहां संस्कारों व परंपराओं की शिक्षा मिलती है। वह परिवार ही है जो हमें जीने का ढंग सिखाता है, तनाव के पलों को खुशियों में बदल देता है और कठिनाई के क्षणों में सहारा देता है। परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से समृद्ध न हो, फिर भी अपनों के प्यार भरे दो शब्द व्यक्ति के बुझे हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं। प्रश्न है कि परिवार रूपी इतनी महत्वपूर्ण और उपादेय संस्था में आज इतना बिखराव क्यों आ गया है? वो कौन से मूल्य और सिद्धांत हैं जिनके खो जाने से आज परिवार बिखरते जा रहे हैं? यदि हम अतीत पर दृष्टि डालें तो कुटुंब की प्राचीनतम अवधारणा हमें वैदिक साहित्य में मिलती है, जहां 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। कौटुंबिक सौहार्द के लिए वे कितने प्रयत्नशील थे, ये बात हमें वेद के मंत्रों से ज्ञात होती है। वे कहते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। पुत्र माता पिता के प्रति, भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति और पति पत्नी के प्रति मधुर, निष्कपट और प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। पारिवारिक जीवन में सौमनस्य बनाए रखने के लिए पारस्परिक व्यवहार के मानदंड भी स्थापित किए गए थे। यदि पुत्र के लिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उपदेश था, तो पिता के लिए भी निर्देश था कि पुत्रम मित्रवदाचरेत, अर्थात 16 वर्ष के पुत्र के साथ पिता मित्रवत व्यवहार करें। ये आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक है जिस परिवार में लोग पारिवारिक अनुशासन मानते हैं, जहां बड़ों को उचित सम्मान और छोटों को स्नेह मिलता है, जहां त्याग सेवा और सहिष्णुता का अभाव होता है, जहां छोटी मोटी समस्याएं मिल बैठकर सुलझा ली जाती हैं, जहां पति पत्नी पिता पुत्र के बीच पारस्परिक सम्मान और सहनशीलता होती है, वही परिवार धरती पर स्वर्ग के समान होता है। इन्हीं मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन से एक सुखी और संपन्न परिवार का निर्माण होता है। ऐसे परिवारों से ही एक सभ्य सुसंस्कृत समाज की कल्पना की जा सकती है।
1: परिवार मूल्य, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का ये चिंतन। चिंतक थे डॉक्टर जेबी सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय है खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जीसी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, सब्जी उगाने के पहले आप नर्सरी बनाते हैं, और नर्सरी जब बनाते हैं तो नर्सरी थोड़ी जमीन से 3-4 इंच ऊंची बनाएं, और उस नर्सरी में रोग लगने के पूर्व ही उसमें आप थायरम और कार्बन डाइजिन 50-50 ग्राम एक क्यारी में आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि नर्सरी में जब पौधे छोटे होते हैं तो उसमें तना विगलन और तना गलन नाम का रोग आ जाता है, और थोड़े से जब पौधे बड़े हो जाते हैं 15-20 दिन के 10 दिन के, तब उनमें हल्के हल्के गोल गोल धब्बे पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे आते हैं, और हमारी ये नर्सरी में ही पौधों को खराब कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब हम उनको खेत में ले जाते हैं तो हमारी ऐसे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, और जितनी हमें फसल मिलना चाहिए उतनी फसल नहीं मिलती है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही नर्सरी से ही हमारे जो सब्जियों की कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए रोकथाम करना आवश्यक होता है। जब नर्सरी में पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, 4-5 इंच के हो जाएं, उस वक्त मैनकोजैब नाम की एक दवा आती है, 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसमें नर्सरी में छिड़काव कर दें, 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर दें, तो आपका जो ये पत्ती धब्बा रोग आते हैं ये रोग नर्सरी में नहीं आएंगे, और नर्सरी में पौधे आपको एकदम स्वस्थ मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। ऐसे पौधों को आप फिर अपने खेत में वहाँ उनकी रोपाई करें। जैसे इसमें नर्सरी में आप जो है खरीफ में जो सब्जियों की फसलें हैं उसमें आपका टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, और आपके ये वाली फसलें लेते हैं। इस मौसम में किसान भाई बहुत तादाद में भिंडी भी लेते हैं, तो इन सब फसलों में नर्सरी के बाद जब रोपाई करते हैं उसके बाद में फिर उसमें पत्ती धब्बा रोग अगर दिखाई दे तो आप मैनकोजैब नाम की दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में 1 बीघा खेत के लिए पर्याप्त होती है उसका छिड़काव कर दें, तो पत्ती धब्बा रोग इसमें आपकी फसलों में नहीं आएगा। खरीफ के मौसम में विशेष रूप से खरपतवार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब्जियों में निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार अगर खेत में ज़्यादा होंगे तो उसमें कीट बढ़ने की संभावना होती है। कीटों में हरा मच्छर है, माहू है, जैसिड है, एफिड है, और सफ़ेद मक्खी है, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो है कुकड़ा रोग को फैलाते हैं या पीला मोज़ेक नाम के रोग को भी फैलाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये रोग ना अपने खेत में फैलें और हमारी जो सब्जियां हैं वो स्वस्थ और अच्छे पौधे हमारे खेत में मिलें, इसके लिए इन कीटों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कीट स्वस्थ पौधों में रोग फैला देते हैं। जो हमारे रोगग्रस्त पौधे हो जाते हैं उनका जो है रस चूसते हैं, और रस चूसने के बाद में ये स्वस्थ पौधों पर जाते हैं और वहाँ भी रस चूसते हैं, तो जो इनके वायरस के विषाणु के इनके पेट में जाता है, कीटों के पेट में, इसके बाद में ये स्वस्थ पौधों पर उस रस को छोड़ देते हैं और हानिकारक और जो रोगग्रस्त पौधों के रस चूस करके आते हैं, तो इस तरह धीरे धीरे ये पूरे खेत में ये कोकड़ा रोग और पीला मोज़ेक रोग फैल जाता है। तो अगर इस तरह का रोग आपको खेत में दिखाई दे तो सबसे पहले आप ऐसे रोगग्रस्त पौधों को निकाल करके और गड्ढे में डाल करके उसको मिट्टी से बंद कर दें या नष्ट कर दें, और साथ साथ दवाई का छिड़काव भी करें। दवाइयों में आप जो है मेलाथियन दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियन दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है, इसके अलावा एक दवा और है डाइमेथोएट, इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा लें। ये दवा जो है 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है। जैसे अगर 1 बीघा आपका खेत है, सब्जी लगी हुई है, तो उसमें 150 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, तो हमारी जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं इनमें आपका कीट नियंत्रण आसानी से हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था खरीफ सब्जियों में कीट और रोग नियंत्रण, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जेसी गुप्ता। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
2: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
3: याद रखो हमारी बात,
4: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
3: जंगल है धरती का गहना,
4: सदा इसकी रक्षा करना,
3: होगी जो धरती पर हरियाली,
4: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
5: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर एक कार्यक्रम दर्पण। मीडियम व्यू 216.45 यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
6: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितं यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जलसंपदं च दुष्यति। अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जलसुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महंतं वैषम्यं।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और NIA ने 30 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें ईरान को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या फिर समझौता करना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने मध्यस्थों के जरिए 7 शर्तें रखी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिका के कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अलर्ट यमन के हौसी गुट की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल चुका है। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहली सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ। कवि हैं श्री शैवाल सत्यार्थी। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा 10:05 पर। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे भानुप्रिया राय के गाए हुए कुछ भजन। गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समय रहेगा 9:00 और शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं 9:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे साधना।

ஒரிக காயின் ராகுகா சலாகுவரா லீ தோடி जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें। दोपहर में अपना फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत पुनः आप सुन सकते हैं दोपहर 12:30 पर। स्वास्थ्य दर्पण का समय रहेगा दोपहर 1 बजे। लोक संगीत और सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर और दोपहर 1:45 पर। शो साथियों, शास्त्रीय संगीत, स्वास्थ्य दर्पण, लोक संगीत और सुगम संगीत, ये सभी कार्यक्रम भोपाल की ही प्रस्तुति हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3 बजे। श्रोता साथियों, यह सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सायंकालीन समय में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। यह कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति है। सायंकालीन समय में फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 10:00। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा शाम 6:00। सुर्खियों में इस कार्यक्रम को का समय रहेगा रात्रि 8:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर। राग रजनी इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। श्रोत साथियों, जैसा भी कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे विश्व अल्जाइमर दिवस और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लोक माधुरी में बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। तो श्रोताओं, यदि हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार खुशी क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच में एयरपोर्ट और सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाने की घोषणा की। भोपाल में आज उद्यानिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद का आयोजन होगा। प्रदेश में 5,935 वन रक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू होगी और अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश की संभावना। कई जिलों में गरज चमक के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नीमच में कहा कि जिले में शीघ्र ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा और

0: खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वे अग्रोहा भवन में आयोजित सेवा से संकल्प अभियान के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों में 1 लाख से अधिक शासकीय भर्तियां की गई हैं और आगामी ढाई वर्षों में 3.5 लाख से अधिक भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा से संकल्प अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी और सेवा की भावना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने नीमच के खिमला क्षेत्र में मादा चीता छोड़े जाने को भी जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के साथ विश्व पटल पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। वे कल ग्वालियर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे।
1: और उस आजादी के बाद जो 65 वर्ष गुजरे, वे संघर्ष के वर्ष, कई देशों के लिए हजारों वर्ष लगता है उनके आकार बदलने के, छुटकी भर में नहीं होता। और 2014 में एक वातावरण था हमारे देश जहां लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं, अभिलाषाएं समाप्त होने की कागर, और उस समय भी भारत माता के एक ऐसे सेवक और ऐसे रक्षक ने कमान संभाली जिसने भारत माता की दिशा और दशा दोनों पिछले 12 वर्षों में बदल के छोड़ दी।
0: इस दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि अधोसंरचना, मानव संसाधन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। श्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर में करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा, जिससे करीब 18,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत कल झाबुआ में गुजरात के वड़नगर से वाराणसी तक की सेवा संकल्प यात्रा का स्वागत महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और जनप्रतिनिधियों ने किया। वहीं धार में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरमालवा में विकसित भारत 2047 विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अशोकनगर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 25 सितंबर को मेरे सपनों का भारत तकनीकी नवाचार से विकसित भारत 2047 विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर देश के साथ प्रदेश में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम देखते हैं कि यह अभियान रतलाम में किस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर देश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत रतलाम में भी रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और महादीपोत्सव आयोजित किया गया। वहीं हितग्राहियों ने अपने घरों के बाहर दीपक लगाए, किसी ने रक्तदान तो किसी ने सेवा और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। रतलाम के युवा चिंटू मेहता इस अवसर पर बताते हैं कि
4: प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल से पिछले 4-5 सालों से अपने परिजन के लिए दवाइयाँ ले रहा हूँ, जिससे प्रति माह मुझे जो दवाइयाँ पहले 2-3 हज़ार रुपये की मिलती थी, वे अब मात्र 500 रुपये में ही मिल रही है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, जिससे हमें बीमारियों को लेकर चिंता अब नहीं सताती है।
5: मैं सावलिया पाटीदार पाजनखेड़ा से। प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, उनसे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं और ये एक अच्छी योजना है। इससे ग्रामीण जन भी काफ़ी खुश हैं और साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की जन औषधि योजना है, उससे भी लोगों को कई सारी दवाइयाँ बहुत ही कम दामों पर मिल रही हैं।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: भोपाल में आज उद्यानिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संयुक्त आयोजन में उत्पादन, प्रसंस्करण, वित्तीय संसाधन, मूल्य संवर्धन और वैश्विक बाजार तक पहुंच पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग प्रतिनिधियों और कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 सत्रों में उद्यानिकी क्षेत्र की संभावनाओं, निजी निवेश, आधुनिक तकनीकी और बाजार से जुड़ाव पर भी चर्चा होगी। बिहार से आए 16 सदस्यीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दल

उज्जैन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन में दल से संवाद कर शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन वीर भारत संग्रहालय, सर्प उद्यान और महाकाल महालोक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वीर भारत संग्रहालय में प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक की गौरव गाथाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि सर्प उद्यान के माध्यम से सांपों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास होगा। वन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल की लिखित परीक्षा में सफल 5,935 वन रक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षण और पैदल चाल परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक अलग अलग वन मंडलों में होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 2 रजत पदक जीते हैं। एलावेनिल वलाविरन, विदारसा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। एलावेनिल जापान की हिनाता ताइची के बाद दूसरे स्थान पर रहीं। नए शामिल किए गए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने भारत के लिए 3रा पदक पक्का किया। उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम ट्रेडिशनल एमएमए स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला सिंगापुर की तेओ हुई हून से होगा। सेमीफाइनल में जीत या हार दोनों ही स्थिति में सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भी बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र 21 सितंबर को डिप्रेशन और 22 सितंबर को डीप डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आगे भी बनी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के पीताम्बरा सर्वसिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर के पास हाल में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत की घटना के बाद रात 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार के हवन, यज्ञ और अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 सप्ताह नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मंदसौर में भी मेरा युवा भारत द्वारा ओबीसी बालिका छात्रावास में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा संगम और स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि उपज मंडी जबलपुर में आयोजित साप्ताहिक जैविक हाट में कल बरगी विधायक नीरज सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खंडवा में गणेश उत्सव के दौरान मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने वाली विभिन्न गणेश उत्सव समितियों का कल सम्मान किया गया। अशोकनगर के चंदेरी में हथकरघा संचालनालय 3 माह का साड़ी बुनाई कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहा है, जिसका चयन आवेदन के माध्यम से होगा। प्रशिक्षणार्थियों को शासन के द्वारा ₹750 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और नर्मदापुरम के इटारसी शासकीय महात्मा गांधी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 23 सितंबर को युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच में एयरपोर्ट और सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाने की घोषणा की। भोपाल में आज उद्यानिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद होगा। प्रदेश में 5,935 वन रक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू होगी और अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में गरज चमक के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम में भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है काव्य पाठ। कवि हैं श्री शैवाल सत्यार्थी।

मित्रों, शिवालय में टिमटिमाते नन्हे दीपक को मैं निहार रहा था, तभी कुछ पंक्तियों ने अपना आकार ग्रहण किया। सुनिएगा। दीप तुम जलो, अंधकार जले, अहंकार गले, रोशनी तले, अंधेरा रो रो ढले। दीप तुम जलो, अंधकार जले, अहंकार गले, रोशनी तले, अंधेरा रो रो ढले। फुलझड़ी के फूल लगें बड़े भले, फुलझड़ी के फूल लगें बड़े भले, अनार खिलखिलाए आधी रात ढले। फुलझड़ी के फूल लगें बड़े भले, अनार खिलखिलाए आधी रात ढले। रोशनी अंधेरे को, जिंदगी मौत को छले। रोशनी अंधेरे को, जिंदगी मौत को छले। भोर की उजली किरण सबसे गले मिले, भोर की उजली किरण सबसे गले मिले। ज्योति कलश आप लें, काली माँ हाथ मले। ज्योति कलश आप लें, काली माँ हाथ मले। एक अन्य रचना, राष्ट्र को समर्पित, मंजिल तक। मंजिल तक, यह कदम उठे वह कदम उठे, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। ये पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाएं छाएं मंजिल तक। यह कदम उठे वह कदम उठे, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। यह पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाएं छाएं मंजिल तक। चट्टाने आए दें धोके, दुर्भाग्य भले राहें रोके। ताकत कदमों में चलने की, फिर क्या मौका या बेमौके। चट्टाने आए दें धोखे, दुर्भाग्य भले राहें रोके। ताकत कदमों में चलने की, फिर क्या मौके या बेमौके। उम्मीद उठें, उम्मीद बढ़ें, उम्मीदें जाएं मंजिल तक। यह कदम उठे वह कदम उठे, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। यह पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाएं छाएं मंजिल तक। यह धरती अपनी धरती है, दुख दर्द हमारे हरती है। यह धरती अपनी धरती है, दुख दर्द हमारे हरती है। इसकी खिदमत से क्या न मिला, सोना चांदी यह भरती है। यह हाथ उठे वह हाथ उठे, हम हाथ मिलाएं मंजिल तक। यह धरती अपनी धरती है, दुख दर्द हमारे हरती है। इसकी खिदमत से क्या न मिला, सोना चांदी यह भरती है। यह हाथ उठे वह हाथ उठे, हम हाथ मिलाएं मंजिल तक। यह कदम उठे वह कदम उठे, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। यह पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाएं छाएं मंजिल तक। सब दुनिया दोस्त हमारी है, यह कली कली फुलवारी है। सब दुनिया दोस्त हमारी है, यह कली कली फुलवारी है। क्या बात बड़े या छोटे की, हर कोई मूरत प्यारी है। इनको सिजदा उनको सिजदा, सौ सौ दरगाहें मंजिल तक। यह सब दुनिया दोस्त हमारी है, यह कली कली फुलवारी है। क्या बात बड़े या छोटे की, हर कोई मूरत प्यारी है। इनको सिजदा उनको सिजदा, सौ सौ दरगाहें मंजिल तक। यह कदम उठे वह कदम उठे, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। यह कदम उठे वह कदम उठे, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। मित्रों, एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूँ, तुम्हारी अंतहीन प्रतीक्षा की मृत्यु पर। हर रोज की तरह आज भी आँख खुलने के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा का जन्म हुआ है। हर रोज की तरह आज भी आँख खुलने के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा का जन्म हुआ है। स्वप्न में भी रात्रि के अंतिम चरण तक तुम साथ थे, फिर जागरण में भोर की उजली किरण तक तुम साथ थे। स्वप्न में भी रात्रि के अंतिम चरण तक तुम साथ थे, फिर जागरण में भोर की उजली किरण तक तुम साथ थे। तो शायद किसी ग्रह की अशुभ छाया ने तुम्हें हमसे छीन लिया है। तो शायद किसी ग्रह की अशुभ छाया ने तुम्हें हमसे छीन लिया है। हमारी हंसी खुशी के फूलों को चुन चुन बीन लिया है। किसी ग्रह की अशुभ छाया ने

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म क्योंकि का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर खान के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जब वी मेट का ये गीत। गीत लिखा था अरशद कामिल ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म एतराज़ का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। यह आकाशवाणी का है ग्वालियर केंद्र और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर खान के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: stupid mind. श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म थ्री इडियट्स का ये गीत। गीत लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था शांतनु मोहित्रा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात कुछ क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा

प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3

0: डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
5: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
4: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
6: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
4: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी

0: साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत चार हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय

0: टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं भानुप्रिया राय के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इनके स्वर में ये पहला भजन।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोता साथियों, सुगम संगीत किस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे हैं भानुप्रिया राय के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये एक और भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। शहजादी सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे थे भानुप्रिया राय के गाए हुए कुछ भजन। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने के बाद अब अगला कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता और साथियों को आपके मित्र अजय का नमस्कार। श्रोता साथी, बच्चों को टॉपिक याद रहे इसलिए शहर के स्कूलों में हो रहा है नया प्रयोग। या दोस्तों, पढ़ा हुआ याद रखने टीचर करा रहे स्टोरी टेलिंग फ्लैश कार्ड से रिकॉल। बच्चों में पढ़ी हुई चीज़ें याद न रख पाना स्कूलों में शिक्षकों के लिए चुनौती बन रहा है। लंबे चैप्टर, लगातार बढ़ता सिलेबस, पढ़ाई का दबाव और एक साथ कई विषयों को याद रखने की ज़रूरत के बीच बच्चे पढ़ी हुई जानकारी को कुछ समय बाद भूल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में अब केवल पाठ पढ़ाकर आगे बढ़ने के बजाय बच्चों की मेमोरी और रिकॉल क्षमता बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। श्रोताओ, टीचर्स कठिन टॉपिक को कहानी से जोड़ रहे हैं और बच्चों से किताब बंद कराकर क्विज करा रहे हैं और फ्लैश कार्ड वर्ड पजल के जरिए पुराने पाठ को दोहरा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में भूलने की बीमारी बढ़ रही है। कई बार मानसिक तनाव, नींद पूरी ना लेना और ज़्यादा पढ़ाई की वजह से ये समस्या

समस्याएं होने लगती है। इसलिए दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए टीचर्स ने नई रिकॉल और मेमोरी टेक्निकल पढ़ाई में शामिल की हैं। स्कूलों में इन तरीकों को किया जा रहा है फॉलो। कहानी से जोड़कर

टीम क्विज़ और एक दूसरे से सवाल पूछने की गतिविधि से बच्चों को खुद जवाब याद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फॉर्मूले, शब्द परिभाषाएं, तारीख और कई महत्वपूर्ण तथ्य कार्ड पर लिखे जाते हैं। बच्चे कार्ड देखकर जवाब बताते हैं या सही शब्द से सही अर्थ का मिलान करते हैं। पुराने टॉपिक को कुछ दिन बाद दोहराने से जानकारी लंबे समय तक याद रखने में जो है वो मदद मिलती है। श्रोता, विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों का पड़ी हुई चीजें भूल जाने के महीने में 100 से ज्यादा केस आए हैं। बच्चों में भूलने की समस्या का संबंध कई बार ध्यान की कमी, तनाव, नींद, एंग्जाइटी या जानकारी को सही तरीके से रिकॉल ना कर पाने से होता है। बच्चों को अत्यधिक रात्रि में स्टडी करने से मना करें और कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लेने दें बच्चों को। बच्चों को केवल बार बार पढ़ाने के बजाय समझना, याद कराना और फिर बिना किताब देखे रिकॉल कराना सिखाना ज़्यादा प्रभावी है। कहानी, गेम, सवाल जवाब और गतिविधियों के जरिए बच्चों को इंटरेक्टिव बनाने से बच्चे जानकारी को बेहद तरीके से बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। श्रोताओं, यह खबर इस बात का सबूत है कि बच्चों का इमोशनली तौर पर उनका विकसित होना और उन्हें प्रोत्साहित करना भी बेहद ही ज़रूरी है। जहाँ दोस्तों, हमेशा ही बच्चों को इमोशनली मजबूत बनाने भी बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे भावनात्मक तौर पर मजबूत होंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। श्रोता, अक्सर हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि परीक्षा में कम अंक यानी असफल होने के डर से बच्चे घातक कदम उठा लेते हैं। यह उदाहरण है कि वे इमोशनल तौर पर कितने कमज़ोर हैं। ऐसे में एक अभिभावक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की इमोशनल हेल्थ को पर विशेष ध्यान दें। बच्चों की इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, इसका उनके विकास पर असर पड़ता है, और बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उन्हें दें, इससे वे जिम्मेदार भी बनेंगे। अगर बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। दिन भर में फैमिली टाइम निश्चित करें जिसमें बच्चों से बातें करें, उनकी बातें सुनें, जिससे वे खुद को इग्नोर फील ना करें। योग और मेडिटेशन बच्चों को नियमित तौर पर कराएं, साथ ही बच्चों में नई हॉबी भी डेवलप करें और उनमें सामाजिक जुड़ाव विकसित करें। शुद्ध बच्चों को इमोशनली तौर पर मजबूत करने के लिए उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुनें और जितना हो सके बच्चों के लिए समय अवश्य निकालें।

शुदा बच्चों को इमोशनली तौर पर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, साथ ही उन्हें शारीरिक तौर पर भी मजबूत करने की ज़रूरत है। जी दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी, खान पान और शारीरिक एक्टिविटी पर ध्यान देकर हम बच्चों को शारीरिक रूप से जो है वो मजबूत बना सकते हैं। शुदा बच्चों की इम्यूनिटी वयस्कों की तुलना में अधिक मजबूत होती है, और शुदा इसकी वजह यह है कि उनकी थाइनस ग्रंथि विकसित होने की अवस्था में होती है। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चे को पानी और तरल पदार्थ अधिक दें। जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी की दवा को सप्लीमेंट के रूप में देना चाहिए। श्रोता, बच्चों की सहमति से बनाएं उनकी दिनचर्या। पढ़ाई, मनोरंजन, खेल के साथ साथ उनकी रुचि के कार्य को प्राथमिकता दें और बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।

0: दोस्तों आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या क्या खिलाएं। शुद्ध हल्दी में एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, आयरन और जिंक जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां उनके आहार में शामिल करें। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम व पोटेशियम जैसे पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों को मौसमी फल दालें खिलाएं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। शुद्ध बाजारों में मिलने वाले इम्यूनिटी बूस्टर की गुणवत्ता की जांच करके ही बच्चों को दें। बच्चों को रस्सी कूदना, साइकिलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य खेलों को उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल जरूर करें। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और फेफड़े भी मजबूत होंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोतो, विश्व अल्जाइमर दिवस आज। परिचितों के नाम याद ना आना, एक बात को दोहराना बीमारी के हैं कई लक्षण। दोस्तों, बार बार भूलना बीमारी का संकेत है। अगर ऐसे कुछ बातें आपके साथ हो रही हैं तो डॉक्टर से मिलें और इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। श्रोताओ, जैसे कि कुछ चीज़ हैं जैसे कि चाबी रखकर भूल जाना, परिचितों के नाम याद ना आना, एक बात को बार बार दोहराना। अधिकांश लोग इसे भ्रम इसे उम्र का स्वाभाविक पड़ाव मानकर टाल देते हैं। घर में बुजुर्ग ऐसा करें तो अक्सर परिवार इसे बढ़ती उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही भूल गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। श्रोता, विशेषज्ञों के मुताबिक यह अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था हो सकती है। न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि बिगड़ती जीवनशैली, तनाव जैसे कारक कम उम्र में भी याददाश्त और मानसिक क्षमता को जो है प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए लगातार लक्षण अगर ऐसे दिखें तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें, तुरंत ही विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। श्रोताओं, यह कुछ कारण हैं जिन्हें अगर देखें तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले हुई बातचीत, हाल ही की घटना, तारीखें याद ना रहना, साधारण जोड़ घटाव, घरेलू बजट या रोज़मर्रा की कुछ आर्थिक कामों को अचानक भूल जाना, जानी पहचानी जगह का रास्ता भूलना, याद ना रहना कि वहां आप कैसे पहुंचे, बेवजह चिड़चिड़ापन, अपनों पर शक, डर, उदासी या लोगों से मिलना जुलना कम कर देना, बोलते समय शब्द भूलना, श्रोता सही शब्द न मिलना, वाह के बीच में ही छोड़ देना या बार बार बात का क्रम टूट जाना। श्रोता, बीमारी के शुरुआती लक्षण ऐसे पहचाने। जीआरएमसी के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उदनिया के मुताबिक अल्जाइमर का पूर्ण स्थायी इलाज अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुरुआती चरण में पहचान होने पर दवाओं और कॉग्निटिव थेरेपी से बीमारी को जो है वो कम किया जा सकता है। श्रोता साथियों, दिमाग को भी रोज चाहिए एक्सरसाइज। विशेषज्ञों के अनुसार पहेलियां सुलझाना, किताबें पढ़ना, नई भाषा या वाद्य यंत्र सीखना दिमाग को सक्रिय रखने में जो है वो मदद करता है। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें, हरी पत्तेदार सब्जियां अपने आहार में शामिल करें और ओमेगा 3 युक्त आहार लेना उपयोगी हो सकता है, और जितना हो सके परिवार और दोस्तों के साथ नियमित संवाद भी मानसिक सक्रियता बनाए रखने में जो है वो महत्वपूर्ण है।

0: श्वेता ग्वालियर की बेटी प्रियंका मुंदड़ा ने अमेरिका के प्रमुख शहर अटलांटा में हुई मिसेज इंडिया इन यूएस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में रहने वाली भारतीय विवाहित महिलाओं ने भाग लिया। टैलेंट राउंड में प्रियंका को मोस्ट डेजलिंग पर्सनैलिटी के सम्मान से नवाजा गया और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। इसके साथ ही उनके सिर पर सौंदर्य का ताज भी सजाया गया। श्रोता साथियों, इस प्रतियोगिता का विजेता होने की खुशी में प्रियंका मुंदड़ा जी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोता, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी कि शांति में निवेश सभी के लिए हर जगह हर दिन। श्रोता, इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 में की गई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है शांति का अर्थ केवल युद्ध का न होना नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और सुरक्षा जरूरी है। इस दिन जमीनी स्तर पर शांति स्थापित करने वाले कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और युवाओं के योगदान को सम्मानित किया जाता है। श्रोताओं, यह दिवस दुनिया भर के लोगों को अहिंसा और आपसी सहयोग के लिए भी प्रेरित करता है।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

श्रोता साथियों, खबर रोजगार से जुड़ी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने मध्य प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक ग्रेड 3 के 1174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं और इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। श्रोता, इसके लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैप आईटी यानी कि मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी या किसी अन्य एजेंसी संस्था से सीबीसीटी स्कोर कार्ड परीक्षा होना आवश्यक है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के पुरुष उम्मीदवार अनारक्षित के लिए आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष। मध्य प्रदेश राज्य के पुरुष उम्मीदवार EWS इनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष और मध्य प्रदेश राज्य के पुरुष और महिला उम्मीदवार OBC SC ST के लिए आयु सीमा जो है वो 45 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी महिलाएं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की इन सब और सभी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा जो है वो 45 वर्ष निर्धारित की गई है। श्रोता साथियों, अब समय चला इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो इस कार्यक्रम से अपने मित्र अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना गोरी का गायन, राग है सलाग वराली तोड़ी। तो आइए सुनते हैं साधना गोरी का गायन, राग है सलाग वराली तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे साधना गोरे का गायन, राग था सलाग वराली तोड़ी। आपके साथ सारंगी पर संगत की थी उस्ताद अब्दुल मजीद खान ने। मीडियम 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। अब जिले की चिट्ठी कुछ ही क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे शहडोल जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शहडोल जिले की रेल कनेक्टिविटी को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें शहडोल संभाग से सीधे जुड़ी कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर उसलापुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इनकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहडोल अनूपपुर से गुजरने वाले व्यस्त रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ेगी। जिले में इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत में 2,904 मामलों का निराकरण किया गया। कुल 8,66,00,000 रुपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय शहडोल के साथ ब्योहारी, बुढ़ार और जयसिंह नगर में खंडपीठ बनाई गई थी। वहीं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उद्योगपतियों और युवा उद्यमियों के साथ इंटरेक्टिव मीट की। कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एपी सिंह ने बताया कि पीपर औद्योगिक क्षेत्र में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट लगाने की दिशा में पहल हुई है। वहीं जिले में मानव हाथी संघर्ष के बीच उत्तर मंडल ने हाथी प्रभावित गांवों के 1,717 कच्चे मकानों को पक्का कराने का प्रस्ताव दिया है। डीएफओ ने कलेक्टर को भेजे पत्र में बताया कि पश्चिम बिहारी वन परिक्षेत्र में वर्षों से जंगली हाथियों का आना जाना लगा रहता है। जिले में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घर और सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हुई है। वन विभाग लोगों को अलर्ट और जागरूक करने के लिए विभिन्न तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करता है। जिले में एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। पटासी गांव में बीते दिनों कल्याण शिविर एवं मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी गईं और उनका मौके पर निराकरण किया गया। वहीं अभियान के पहले दिन 6 स्थानों पर रक्तदान शिविर, वन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा वृक्षारोपण तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 17 सितंबर 17 अक्टूबर तक ब्लॉक और तहसील स्तर पर सेवा सेतु कैंप लगा रही है, जिनमें रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया, सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन और ऋण सुविधा की जानकारी दी जाएगी। पंजीकृत वेंडर भी शिविरों में मौजूद रहेंगे। वहीं धरती आबा योजना के तहत जिले के 2,469 आदिवासी परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन 10 अक्टूबर तक होगा। भूस्वामी किसान, एमपी किसान ऐप, ई उपार्जन मोबाइल एप्लीकेशन और ई उपार्जन कियोस्क तथा कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं में पंजीयन करा सकते हैं। सिक्किमी बटाईदार, कोटवार, वन पट्टाधारी एवं प्रमाण पत्रधारी किसानों का पंजीयन केवल समिति स्तर पर ही किया जाएगा। जिले में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो चुका है। इस वर्ष हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थी।

0: रहा। प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 संभाग और जनजातीय कार्य विभाग की एक टीम शामिल हुई। शहडोल के 3 मैदानों में सभी 40 मुकाबले खेले गए। शहडोल जिले में आगामी धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज की मेस में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए अलग अलग किचन बनाए जाएंगे। वहीं बैगा किसानों को उन्नत खेती तकनीक की जानकारी देने के लिए मझगवां गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें बीज उपचार, फेरोमोन ट्रैप, पौध संरक्षण, खाद बनाने तथा वर्षा जल प्रबंधन और सिंचाई एवं कीट नियंत्रण की जानकारी दी गई। और अंत में जिले की चिट्ठी में सफलता की कहानी, बात करते हैं एक ऐसे नवाचार की जिसके चलते जिले की एक महिला किसान प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। जिले के गोहपारू के सगरा गांव की महिला किसान विद्यावती प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनी है। अपनी 9 एकड़ भूमि पर वे धान, चना, अलसी, मक्का और उड़द सहित विभिन्न फसलों की खेती करती हैं। इसके साथ ही वे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक स्वयं तैयार करती हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक खबरों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे।
2: मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म धर्मकांटा का ये गीत। गीत लिखा है मजरू ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। ग्राम संदलपुर आंतरी से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा है कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदी यादव और उर्मिला देवी यादव ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम इटमा से मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी देवी रावत ने। तो आइए सुनते हैं सभी फरमाइश पर फिल्म धर्मकांटा का यह गीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म आज का अर्जुन का ये गीत। गीत लिखा था अनजान ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था बापी लहरी ने। सौदागर संतरपुरा से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी चौरसिया कॉलोनी जिला ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, लखन चौरसिया और रेखा चौरसिया ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
2: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
1: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
2: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
1: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
2: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: पानी रे पानी,
4: पानी रे पानी,
1: आओ मिलकर करें प्रयास,
2: शुद्ध पानी हो सबके पास।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म पाप की दुनिया का ये गीत। गीत लिखा था अनजान ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था बापी लहरी ने। जैन रेडियो श्रोता संघ वीरम गांव से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी और हेतल भावसार ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी राजकोट एयरपोर्ट कॉलोनी से जगदीश जोशी, मंजुला जोशी, हितेश, हेमा, रिद्धि, पुलकित और पर्व जोशी ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म है 20 साल बाद का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। बिलाई छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी ग्राम करेली ज़िला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समान अंसारी, अमीर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी न बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी न करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत। गीत लिखा था एसएच बिहारी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लक्षणपुर से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने। और इसी गीत को सुनी फरमाइश की थी महादेव घाट अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। शो साथियों कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म संगीत का ये गीत। गीत संतोष आनंद का है और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया है जगदीश धाकड़, नाइमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। तो आइए सुनते हैं सभी फरमाइश पर फिल्म संगीत का ये गीत।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। सरस्वती कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलगा याग्निक की आवाज़ों में फिल्म जीत का यह गीत। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम चौहान ने। यमुनानगर दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर जिला ग्वालियर से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा है अनीता जैन, शिवानी जैन, नीलम जैन, सुभाष जैन, चित्रलेखा और ममता ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है विवेकानंद कॉलोनी जिला शिवपुरी से एकता जैन, मिनी जैन, निखिल, धनंजय, प्रीति, संजय और संजल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं सभी फरमाइश पर फिल्म जीत का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अभी ही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को है। अब अगला कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में निशानेबाज इलावेनिल क्लावेरन को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि हमारी बेटी की यह शानदार उपलब्धि देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा है। भोपाल में उद्यान की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग प्रतिनिधियों और कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के आसार हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: साउंड वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स। डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सजीव फोन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारा नंबर है 2660 और एसटीडी कोड है 07। श्रोताओं, आपसे हमारी हमेशा गुजारिश रहती है कि जब भी आप कॉल लगाएं, सबसे पहले अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और उन फिल्मों के दो नाम और गीत के बोल अपने पास तैयार रखिए जो गाना आप सुनना चाहते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन बनने वाले हैं।
2: हेलो
1: हेलो,
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं हसीना बी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
1: हसीना बी मंसूरी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: अच्छे सर, आप कैसे हो?
1: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ
2: जी, बढ़िया रहना चाहिए। आपका नाम सर?
1: मेरा नाम दिनेश कुमार है
2: जी। जी शुक्रिया सर।
1: अभी कितने दिनों बाद फोन लगाया है हमने?
2: अरे आप तो हमसे जब भी लगाते, जब पूछते हो तो मेरे जॉब पे जाते, टाइम ही नहीं मिलता मेरे को सर।
1: अरे ये तो
2: बड़ी 15 दिन के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि हम बहुत पुराने श्रोता और सबका ध्यान रखते हैं।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत पुरानी श्रोता हैं, कई बार हमारे से बात भी हो चुकी है आपकी। हम तो बस एक जानकारी के लिए पूछ रहे थे कि कितने दिनों बाद फोन लगा है।
2: वो सर आपका फर्ज है पूछने का जी। और हमारे लेटर भी तो आ रहे हैं सर आपके यहाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेटर भी आ रहे हैं, आपके पत्र शामिल भी हो रहे हैं। आज क्या सुनना चाहेंगी आप
2: सर? फिल्म का नाम है एक नजर और गाने के बोल हैं

0: ये सुना दीजिए सर।
1: बहुत बढ़िया हसीना जी, बहुत बढ़िया। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, आकाशवाणी भोपाल।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी जी जी, आप कौन बोल रहे हैं सर?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आपका नाम जानना चाहूंगा।
1: मैं ग्राम खेरो कला जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ सर।
0: रमेश नायक जी का बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। शुक्रिया जी।
0: आज रमेश नायक जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैं गीत सुनना चाहता हूँ रफी साहब की आवाज में, है चौधरी का चांद फिल्म, वैसे शीर्षक गीत है वो।
0: जी जी जी जी, चौधरी का चांद फिल्म का गीत है और शीर्षक गीत सुनना चाहते हैं, है ना?
1: जी जी जी, शकील साहब ने लिखा है, शकील बदायूनी है ना जो?
0: बिल्कुल बिल्कुल, शकील बदायूनी जी है, कौन नहीं जानता उनको, इतने बड़े शब्दकार हैं।
1: हेलो दिनेश भाई
0: जी,
1: हमारी यूपी के इतने गीतकार हैं यार के कहीं की नहीं होंगे, कौन किसी भी प्रांत के नहीं होंगे।
0: जी जी जी जी,
1: इतने गीतकार हैं, कई गीत में तुम बता दो मैं गीतकार।
0: बिल्कुल बताइए बताइए, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। हम
1: लंबी लिस्ट है, जैसे बताया है कि सबसे ज्यादा गीतकार यूपी के रहने वाले हैं।
0: जी जी जी जी,
1: जैसे मजरूह सुल्तानपुरी के बराबर तो किसी ने गीत ही नहीं लिखे होंगे कोई गीतकार ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जरूर गौर फरमाना, जो गाना पूरा हो तो मैं अब भी सुनना उस गाने को।
0: जी जी जी, ये गाना हमारे भी पसंदीदा गीतों में से एक है।
1: मेरी बात ना गौर से सुनिएगा, तो मैं रफी और लता के अलावा किसी के गीत ही नहीं सुनता ना पसंद करता हूँ।
0: दोनों ही बहुत बड़ी हस्ती है, चाहे लता जी का नाम लिया जाए या मोहम्मद रफी जी का।
1: पता नहीं है ना, कोई जानता है वो आजकल के लड़के हुए
0: नहीं, नहीं
1: जानकारी नहीं है इस बात की।
0: नहीं, ऐसा है रमेश जी कि अलग अलग गायकों की अलग अलग वैरायटी है, नए गायक भी हैं, नए
1: वो मैं बात कह रहा हूँ कि पसंद अपनी अपनी हुआ करती।
0: जी जी जी,
1: दोष नहीं देता।
0: जी जी जी जी,
1: है ना, कोई किसी को पसंद करता, कोई मुकेश को पसंद करता,
0: तो
1: कोई किसी को,
0: कोई किसी को भी पसंद करे। हमारा तो ये उसूल होना चाहिए कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, हमें जो पसंद है हम सुन रहे हैं।
1: है ना? सही यार सर, अपनी अपनी पसंद हुआ करती, लेकिन हकीकत मैंने बताया आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल, रफी साहब के अलावा चाहे आप कव्वाली सुन लीजिएगा, चाहे भजन सुन लीजिएगा, देश के ऊपर सुन लीजिएगा, चाहे फिल्मी गीत सुन लीजिएगा,
0: जी
1: से कम नहीं रहा वो बहुत आगे। लेकिन अब वो क्योंकि अब बहुत बांटे हम कहते नहीं है, लेकिन रफी के अलावा और लता जी के अलावा कोई गायक नहीं हुआ ना होगा आगे। अधूरा गीत न सुनवाना, पूरा सुनवाना सर।
0: चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा ही गीत सुनवाया जाए।
1: दिनेश भाई आप भी गौर करिएगा, शब्दों पे गौर करिएगा आप गाने की।
0: जी जी
1: जी, धन्यवाद।
0: चलिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: सर जी, कल तेजादशमी है
1: जी,
0: तेजा जी महाराज का जन्मोत्सव है, उसके हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और उसी तेजा जी महाराज की पिक्चर है सर जी, अगर गीत निकल जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा।
1: गीत का नाम बता दीजिए और फिल्म का नाम बता दीजिए, गीत के बोल बता दीजिए, तो हम बिल्कुल निकालने की कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत।
0: पिक्चर का नाम है वीर तेजा जी महाराज।
1: वीर तेजा जी महाराज, आपका नाम बताएं हमको आप।
0: सर जी
1: आपका नाम?
0: अनोखे सिंह।
1: अनोखे सिंह जी, इसके गीत के बोल क्या है वीर तेजा जी फिल्म के?
0: भाई इसमें वो तो राजस्थानी भाषा में है सर जी, भाई उसमें जेठ अषाढ़ का भी आता है, आरती भी आती है, जो भी कुछ उसमें।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: एक पसंद और बता दीजिए आपकी।
0: एक पसंद दूध का कर्ज।
1: दूध का कर्ज जी, गाने के बोल।
0: हाँ, वो यही दूध के कर्ज पे है ना, इस पे टाइल टाइल गाना
1: जी। बोल याद नहीं है आपको?
0: हाँ हाँ, ये कर्ज निभाना है क्या, ऐसा गाना है, वो भी नाग देवता पे है, तेजा जी महाराज और ये सब नाग देवता पे आते हैं
1: जी। जी जी, तो चलिए गीत आ रहा है आपके आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो,
1: हेलो, फोन करेंगी सुने?
0: फोन करें कि सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: ओहो, क्या बात है। मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से, खजुराहो से।
0: फूलचंद
1: पाल
0: पाल।
1: खजुराहो मध्य प्रदेश।
0: जी, बोलिए फूलचंद जी, क्या करना चाहेंगे आज?
1: जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही लग रहा था कि आप दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं।
0: जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और क्या चल रहा है आजकल अभी खजुराहो में?
1: दिनेश भाई, वो खजुराहो में तो बहुत बढ़िया जो भी हाल में चल रहा है, और आइए आपका भी घूमने खजुराहो।
0: कोई उत्सव वगैरह है?
1: जी, अभी तो नहीं, लेकिन उत्सव तो हमेशा रहता है। विश्व प्रसिद्ध नगरी है खजुराहो,
0: जी
1: विदेशों
0: जी
1: लोग
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: तो घूमते हो। अभी तो खजुराहो का नजारा ही कुछ अलग है, बरसात का के बाद जो है हरियाली हरियाली, सारा जो है पार्किंग जो है बढ़िया दिखाई दे रही।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वहाँ रहते हैं और इन सब जो अपने आसपास की चीज़ें हैं इनका आनंद लेते हैं, बड़ा अच्छा लगा जानकर। आज क्या सुनना चाहेंगे फूलचंद जी?
1: जी बिल्कुल, दिनेश भैया जी, फिल्म का नाम है बड़े घर की बेटी,
0: बड़े घर की
1: बेटी,
0: बेटी बेटी।
1: और
0: और
1: गीत के बोले कि जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी हो तो बड़ाई, आंगे आंगे राम चला से पीछू लक्ष्मण भाई, कौशल्या तेरी अंगनवा में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: और ये गीत भाई साहब आपको डेडिकेट रहेगा।
0: हमको क्यों?
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाना चाहते हैं, और हमारे कुछ मित्र हैं, मांगीलाल चंदेल जी, दिनकर सिंह चित्तकोट धाम से हैं,
0: जी
1: और विजय कुमार पांडे जी हो गए, और मणिराम पाल जी हो गए, और राजू यादव जी हो गए, जितनी माताएं बहनें सुधाई हैं पूनम कानपुर से हो गई, सभी को डेडिकेट रहेगी।
0: जी जी जी जी तो ठीक है, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: आकाशवाणी
0: सर
1: मध्य
0: जी
1: प्रदेश
0: नमस्ते।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
0: हाँ सर जी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: ध्रुवा राम साहू बोल रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
1: जी, बोलिए आज क्या सुनना चाहेंगे आप।
0: आज के कार्यक्रम में सर फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था, और गीत के बोला सर अजनबी मुझको इतना बता मेरे दिल परेशान क्यों है वाले गीत सुना दीजिए सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्यों परेशानी आप हमको बता दीजिए।
0: बिल्कुल परेशान नहीं है सर, बस दिल का मतलब एक प्रकार से इजहार कर रहे हैं।
1: जी
0: फूल लगाते हैं और फूल लग जाता है सर, मैं मतलब मेहनत करने के बाद हम परेशान रहते हैं कि हमारा फूल लगेगा कि नहीं करके, और फूल लग गया सर,
1: देखिए, जब
0: इसलिए
1: भी कोई काम
0: इजहार
1: दिल
0: कर
1: से
0: रहे हैं।
1: किया जाता है तो वो काम कभी रुकता नहीं, हो ही जाता
0: जी सर, जी सर,
1: है
0: सफलता
1: ना।
0: मिल ही जाती है सर, जो कोशिश
1: बिल्कुल
0: करते हैं उनकी
1: सफल,
0: कभी। बिल्कुल सर, कोशिश करने वाले
1: कोशिश
0: कभी
1: करने
0: हार
1: वालों
0: नहीं
1: की हार
0: होती।
1: नहीं होती, है ना।
0: जी सर, जी सर,
1: बिल्कुल, तो
0: बिल्कुल
1: ध्रुवाराम
0: सर, मैं पूरा
1: साहू जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप।
0: हाँ बस सर खेत में हूँ सर, अभी मैं खेत
1: जी
0: में देखने आया था किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है फसलों को ऐसे करके, तो बिल्कुल
1: जी
0: सब
1: जी जी
0: स्वस्थ
1: जी
0: समस्त हैं,
1: जी जी
0: और उसी की खुशी में फोन लगाया सर, लग गया फोन, बहुत खुशी हुई।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मन प्रसन्न होता है कई बार तो हमारे काम सब अपने आप होते चले जाते हैं, है ना।
0: जी सर, जी सर,
1: तो ठीक है, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरा भाई है सर, उसका नाम लेना चाहूंगा मैं,
1: जी जी जी जी
0: परशुराम साहू सर। सर
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: मैं गुरुजी कला से योगिता लखेरा बात कर रही थी।
0: योगिता?
1: हाँ योगिता लखेरा।
0: लखेरा कहाँ से बताया आपने?
1: गुरुजी कला से।
0: गुरुजी कला से, गुरुजी कला कहाँ पड़ता है?
1: ये कटनी जिला में रीठी तहसील में पड़ता है।
0: जी जी जी जी, तो योगिता जी क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: गणेश जी का गाना सुना दीजिए।
0: गणेश जी का गाना सुना दीजिए। गणपति जी बैठाए हैं आपने?
1: हाँ

0: राजनीति में रंगमंच में बैठ जाते हैं मोहल्ले
1: तो गणेश जी
0: का।
1: का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: कौन सा भी सुना लीजिए।
1: देखिए क्या होता है कि जब फोन करें गीत सुने कार्यक्रम होता है तो इसमें आपको अपनी पसंद बतानी होती है और फिल्म का नाम बताना होता है ना?
0: तो वो वाला देवा हो देवा गणपति देवा,
1: देवा हो देवा गणपति देवा, हमसे बढ़कर कौन का, है ना?
0: यही वाला।
1: तो बिल्कुल गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वक्र

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी, ग्राम मोहली, तहसील बांदरी, जिला सागर से मैं पंडित शिवनारायण बोल रहा हूँ।
0: शिवनारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: आज सुनवाना गाना।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: दिल है बेताब।
1: दिल है बेताब, ये तो हो गया फिल्म का नाम
0: जी। क्या तुम्हें पता है,
1: क्या तुम्हें
0: पता है एक गुलशन।
1: शिवनारायण जी क्या चल रहा है आजकल?
0: बस गणेश जी विराजमान है।
1: हाँ तो आज कल तो आप बिल्कुल व्यस्त होंगे पूजा पाठ में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम आरती होती है, भजन होते हैं।
1: जी जी जी जी
0: जी। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ।
0: ठीक है सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेंगे, सुने
1: जी। सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार।
1: सर मैं कृष्णपाल परमार, छायन मीना, सोनकच्छ तहसील, देवास जिला, मध्य प्रदेश से।
0: कृष्णपाल परमार
1: जी सर, सोनकच्छ तहसील से, देवास जिले से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, परमार जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, करीब 20 दिन एक महीना हो गया कॉल करा के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोता बड़े जागरूक हो गए हैं और बड़े समझदार हो गए हैं, अपने दोस्तों को भी समय देने लगे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जानकर कि अब एक ही श्रोता के बार बार फोन नहीं आते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद आते हैं ना। तो बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे कृष्णपाल जी?
1: हम दोनों पिक्चर के गाना है, रफी साहब का गाया हुआ,
0: जी।
1: अभी ना जाओ कि दिल अभी भरा नहीं।
0: क्या बात है,
1: अभी तो आए हो।
0: जी जी जी जी। तो ये केवल गीत सुनना चाहते हैं या किसी को मैसेज भी है?
1: नहीं किसी को नहीं सर, ये पुराने गीत ही सुनता हूँ मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत है ये, है ना?
1: रफी साहब है, लता जी है
0: जी,
1: किशोर कुमार जी है, ये से गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं इनके गाए हुए।
0: जी जी जी जी जी। वैसे हमारे

0: जितने भी पुराने श्रोता हैं उनकी जो पसंद है वो बहुत ही आला दर्जे की होती है, मैंने देखा है अक्सर, है ना।
1: सर आकाशवाणी से हम 1995 से जुड़ा हूँ मैं,
0: जी जी जी जी जी
1: तो जब भी से रेडियो को सुनता हूँ, फरमाइश भी सुनता हूँ, जैसे इंदौर से कार्यक्रम आते हैं तो उन पे फोन भी लगाते थे पहले।
0: जी जी जी जी जी
1: आज तो क्या है कि मोबाइल है, पहले एसटीडी पे जाके बैठना पड़ता था।
0: हाँ जी हाँ जी। देखिए वो एक अलग समय था, ये एक अलग समय है। देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होती है, समय चेंज होता है, हमारे तौर तरीके चेंज होते हैं, तो ये तो है ही, समय का
1: एक
0: बदलाव
1: रुपए
0: है।
1: वाला डिब्बा चलता था, वो फोन लगता न कट जाता था, अगर टाइम खत्म होने के बाद
0: जी जी जी
1: तो
0: जी जी
1: काफी तकलीफ होती, फिर उस समय अगर फोन कट,
0: डायल बार बार करना पड़ते थे, है ना, पूरा
1: अब
0: घुमा।
1: तो काफी सुविधा हो गई ना, अपने पास ही मोबाइल रहता है।
0: तो गीत आ रहा है आपका, आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं।
1: ठीक है
0: कैसा
1: सर,
0: चल रहा है आपका काम धाम, क्या करते हैं आप?
1: सिलाई का काम करता हूँ सर मैं, अच्छा चल रहा है काम, पेंट
0: जी जी जी जी जी
1: शर्ट का काम है, कुर्ता पजामा।
0: जी जी जी
1: जी
0: तो चलिए बहुत बहुत
1: ठीक
0: धन्यवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेंगे सुने।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ आकाशवाणी भोपाल।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेंगे सुने।
1: हाँ नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: परेश राम बोरकर बोल रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट से।
0: परेश राम बोरकर
1: जी सर,
0: स्वागत है कार्यक्रम में। बालाघाट से
1: जी सर।
0: जी, क्या करते हैं परेश राम जी?
1: आज सर वर्तमान में गेस्ट टीचर के में काम करता हूँ सर, गांव से वही 8 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा।
1: आदमी साला साले टेकरी।
0: जी जी जी, क्या पढ़ाते हैं आप?
1: आज सर सामाजिक विज्ञान विषय टीचिंग करता हूँ सर जी।
0: जी जी जी जी जी, तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं आप तो। टीचर की भूमिका तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है हमारे समाज में, हमारे जो जहाँ पर भी हम लोग ये काम करते हैं तो एक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है टीचर को ना।
1: जी बिल्कुल सर जी, शिक्षक जो है एक राष्ट्र की निर्माता की भूमिका निभाता है सर जी।
0: जी जी जी,
1: यदि एक शिक्षक अच्छे से अपना शिक्षण कार्य नहीं करता सर, तो ना सिर्फ एक विद्यार्थी वरन पूरा
0: शिक्षक के कार्य के ऊपर देश का भविष्य टिका होता है भाई।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल,
0: है ना
1: जी,
0: वही है। तो क्या सुनना चाहेंगे परेश राम आज?
1: आज देश रंगीला वाला एक सॉन्ग था सर, देशभक्ति सॉन्ग, ये सुनना था सर जी।
0: देश रंगीला,
1: यस सर।
0: फिल्म का नाम?
1: फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है सर जी।
0: अरे ये तो बड़ी मुश्किल है।
1: मेला फिल्म का ये सुना देना सर जी। मेला दिलों का आता है।
0: मेला दिलों का आता है, मेला फिल्म का। चलिए ठीक है। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परेश राम बोरकर जी से बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है फोन करेंगी सुने।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: अनिल बामने बोल रहा हूँ इंदौर से।
0: अनिल बामने,
1: हाँ
0: बामनिया। बामनिया जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आपसे शायद, है ना?
1: हाँ, ये मंदिर के लिए 8 महीना हो गए सर लगाए को करके।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: इतनी प्रतीक्षा करना पड़ी मुझे इस प्रोग्राम के लिए।
0: आपको क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी, आपने कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि आप तो बड़े पुराने श्रोता हैं।
1: हाँ नहीं, इसलिए चल गया, मैं स्कूल में टीचर हूँ तो क्या हमको नियमित रूप से जाना पड़ता टाइम टू टाइम।
0: जी जी जी जी,
1: तो आजकल क्या ये अटेंडेंस मामला है तो
0: जी, हाँ जी,
1: तो 10:30 तक पहुँचना ही होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 10:30 तक आपको पहुँचना ही होता है और पंच करना ही होता है ना?
1: जी जी ऐसा है।
0: तो बिल्कुल वो तो ठीक है, लेकिन रेडियो का टाइम तो आपने स्कूल टाइम के अलावा भी होता है, आगे पीछे भी होता है।
1: मैं निकालता हूँ ना सब में।
0: हाँ जी,
1: टाइम निकालना पड़ता है सुनने के।
0: रेडियो तो सुनना हो ही जाता होगा आपका, प्रोग्राम में भाग लेना नहीं हो पाता, अलग बात है।
1: हाँ, तो सर आज मुझे गाना सुनना है
0: जी,
1: फिल्म साजन का।
0: जी,
1: मेरा फिल्म साजन का गीत सुनना चाहता हूँ मैं।
0: जी,
1: मेरा दिल भी कितना पागल है।
0: क्या बात है, तो टीचर लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या?
1: होता नहीं है, ये तो एक हम एक्चुअल क्या, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ।
0: जी जी जी,
1: हिंदी साहित्य का टीचर हूँ।
0: हाँ जी,
1: तो सर अपने अल्फाज वगैरह आ ही जाते हैं ना।
0: हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसमें जो साजन फिल्म में कैरेक्टर था वो भी हिंदी साहित्य का ही कुछ कविता वगैरह लिखने वाला था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है।
1: इसमें तो राम लक्ष्मण का संगीत है और गीतकार में
0: नहीं नहीं, जो हीरो था की संजय दत्त, वो एक कवि था।
1: वो तो हीरो हीरो है,
0: वो कवि कवि था, साहित्य वाला ही था।
1: केदार निभाया था उन्होंने।
0: जी, किरदार निभाया था, है ना?
1: हाँ, किरदार निभाया था उन्होंने।
0: तो ठीक है, गीत बहुत सुंदर है और आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। यह रोग आमतौर पर बढ़ती उम्र से जुड़ा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे होने वाले बदलाव शरीर और दिमाग में इसके लक्षण दिखाई देने से काफ़ी पहले शुरू हो सकते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज रीवा की कृषि उपज मंडी करहिया में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। भोपाल में उद्यानिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग प्रतिनिधियों और कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भी बारिश और गरज चमक के आसार हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्वर्ण पदक के लिए भारत

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म चांदनी से। स्वर लता मंगेशकर और बाबला के हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिवहरी। फरमाइश हमें आई है वैष्णव कॉलोनी सनावत से। श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश कौर और शादाब खत्री। अगली श्रोता बक्सर से, थाना रोड बक्सर। जूत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म यस बॉस से। गीत को सुरों से सजाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, गीत को संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने।

लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत सुनेंगे। आनंद बख्शी ने लिखा, शिव हरी का संगीत। फरमाइश हमें आई है मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 67 से। श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। अगली श्रोता सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, मनन, साक्षी, तानिया।

अगला गीत सुनेंगे गुरु रंधावा और अर्जुन के स्वर में। फिल्म का नाम हिंदी मीडियम। गीत लिखा गुरु रंधावा ने, संगीतकार हैं रजत नागपाल और गुरु रंधावा। फरमाइश हमें आई है धामड़ी मनोरा जिला वाशिम से। श्रोता है तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुट डेरे। अगले श्रोता जिला सागर से हैं बेलई, लक्ष्मण रायकवार, विनीता रायकवार, कुमारी वैशाली, अनरथ और ऋषि रायकवार। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म भूल भुलैया से। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार हैं प्रीतम। फरमाइश हमें आई है डाब वाली हरियाणा से, श्रोता हैं जेके बकोला, श्रीमती सुनीता, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया। अगली फरमाइश आदर्श नगर मलोट से है। राज शर्मा श्रोता हैं, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा और निवार शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: भोपाल पर।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो।

0: ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई थी। प्लेटफॉर्म के शोर के साथ ट्रेन से उतरने वालों और ट्रेन पर चढ़ने वालों की हड़बड़ाहट भरी अजीब गरीब आवाजें हो रही थी। कोई बोल रहा था,
1: बेगम इटारसी स्टेशन आ गया, जल्दी समेटो सामान, चढ़ने वालों की भीड़ ज्यादा दिख रही है, जल्दी करो। एक महिला कह रही थी,
0: अरे आप लोग हम औरतों का भी ख्याल नहीं रखते हैं भाई साहब, अरे हमें भी तो इसी ट्रेन में चढ़ना है। अरे लाल शर्ट वाले भाई साहब, आप तो या तो भीतर जाइए या नीचे उतरिए, हिमालय की तरह अटल तो खड़े ना रहिए। कामिनी ये सूट केस पकड़, मेरी चिंता मत कर, मैं भी चढ़ जाऊंगी, एनसीसी के कैडेट रही हूँ। हाँ एक नौजवान कह रहा था,
1: आप कब से गेट पर खड़े हैं भाई, किसी का इंतजार कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर उतर कर कीजिए ना, हमें तो ट्रेन से उतर जाने दीजिए। एक लड़की कह रही थी,
0: अरे आप लोग झटपट उतरिए ना, देखिए कितने लोग चढ़ने को तैयार हैं। एक दुबला पतला मरियल सा वृद्ध कह रहा था,
1: बहन जी हम दुबले पतलों का भी कुछ ख्याल कीजिए, आप दरवाजे को रोक के यूं ही खड़ी रहीं तो कोई मच्छर भी ट्रेन में नहीं चल पाएगा।
2: इतनी भीड़ के बावजूद मेरे कंपार्टमेंट में ये 4 सीटें खाली पड़ी हैं। खैर, खाली रहे या भर जाए मेरी बला से, गाड़ी 5-7 मिनट में चलने ही वाली है, तब तक खिड़की से प्लेटफॉर्म का नजारा ही कर लेता हूँ, सफर की बोरियत भी कुछ कम हो जाएगी। अरे ये राय बहादुर मोहनलाल भार्गव यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, इनके साथ तो कुछ सामान भी है, निश्चित ही ये भी इसी गाड़ी से सफर करेंगे। बाप रे, कहीं इसी डिब्बे में पहुंच गए तो सफर बर्बाद हो जाएगा। इनकी उपदेश भरी बातों और बड़ी बड़ी डींगों को झेलना आसान काम नहीं है, किसी को भी प्रशंसा के पहाड़ के शिखर पर चढ़ा देना इनके बाएं हाथ का खेल है।
0: भाई साहब, आपने इस खिड़की का रिजर्वेशन ना कराया हो तो मेहरबानी कर अब यहाँ से दूर जाइए, बाहर की कुछ हवा का आनंद हमें भी तो लेने दीजिए।
2: वेरी सॉरी, मैं तो यूं ही किसी वेंडर को देख रहा था, अपनी सीट पर चला जाता हूँ, आप जितनी चाहे हवा खाइए, हवा पर फिलहाल कोई टैक्स तो नहीं है।
3: अरे रामाधर, इधर ले आओ सामान। हाँ हाँ, यहाँ भाई, इसी कंपार्टमेंट में 46 से 49 तक की सीटें अपनी हैं। हाँ, और लड़कियों को भी यहीं बुला लाओ। हाँ हाँ भाई, अभी तो सामान ऊपर वाली बर्थ पर रख दो, लड़कियाँ आएंगी तो खुद ही अपनी सुविधा अनुसार अरेंज कर लेंगी।
2: अरे भार्गव जी, आप?
3: अरे वर्मा जी। अरे वाह भाई, कैसे हैं आप?
2: मेरे अहोभाग्य की इसी एक महीने में आपके ये चौथी बार दर्शन हो रहे हैं। भाई ऐसा लगता है अब तो मुझे अखबार में अपना राशिफल देखकर ही सफर पर निकलने के बारे में सोचना होगा।
3: क्या मतलब वर्मा जी? भाई कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जिस दिन के राशिफल में मुझसे भेंट होने की संभावना दिखाई गई होगी उस दिन के सफर को आप टाल देंगे?
2: नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, आप जैसे सज्जन पुरुष का संग मिल जाए तो सफर बड़ा खुशनुमा हो जाता है।
3: भाई वर्मा जी, आपकी बात आप जाने, मुझे तो जब भी आपका साथ मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है।

0: भाई आप जैसे महान लेखक की संगत बिरले लोगों को ही मिलती है। भाई मेरे मन में आपके प्रति अपार श्रद्धा है। वर्मा जी, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए बस कम ही है। आपने इतनी कम उम्र में जितना लिखा है उतना कम ही सरस्वती पुत्र लिख पाते हैं। भाई मेरे घर में तो बस आपका ही राज है।
1: मेरा राज
0: जी?
1: मैं कुछ समझा नहीं।
0: वर्मा जी, आपके द्वारा लिखी गई सारी किताबें मेरे घर में हैं। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर दिन आपकी किताब पढ़ता मिल जाएगा। आपने लिखा ही कुछ ऐसा है कि किताब पढ़ना शुरू कर दो तो खत्म करके ही छोड़ पाते हैं। मेरे परिवार की युवा पीढ़ी तो आपके साहित्य की दीवानी है।
1: अच्छा
0: भाई, आपकी नई किताब पहले मेरी बेटियां पढ़ती हैं, फिर कहीं हम मियां बीवी के हाथ पड़ती है।
1: भार्गव जी,
0: जी
1: आपने तो मुझे सातवें आसमान पर चढ़ा दिया है। अरे भाई, कुल जमा मेरे 5 नॉवेल और 7 कहानी संग्रह ही तो छपे हैं अभी। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, काफी कुछ लिखना है। आप देखिए भाई, आप यूं ही प्रशंसा की पुष्प वर्षा करते रहे तो मैं भविष्य में शायद ही कुछ अच्छा लिख पाऊं। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जरूरत से ज्यादा प्रशंसा भी लेखक की दुश्मन होती है।
0: भाई आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि प्रशंसा लेखक के लिए टॉनिक का काम करती है। जब भी आपसे मुलाकात होती है मैं आपको यही टॉनिक देने की कोशिश करता हूं भाई।
1: आप ठहरे राय बहादुर, भला आपकी राय के सामने सिर झुकाने से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ।
0: अरे भाई आ गई तुम दोनों
2: जी।
0: देखो उधर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाओ। रामधर भाई, अब तुम सारा सामान ठीक से जमा कर, उधर वो उस सीट पर बैठ जाओ। हाँ वहाँ।
2: चलो दीदी चलो।
0: तुम दोनों कहाँ रह गई थी?
2: मेरी एक सहेली भी अपने परिवार के साथ इसी डिब्बे में सफर कर रही है।
0: अच्छा,
2: हम दोनों उसी से बातचीत में लग गई थी।
0: अच्छा अच्छा।
3: गोरी लड़की के हाथ में अपना ताजा उपन्यास बिखरी दुनिया देखकर लेखक हरिकिशन वर्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। नई जनरेशन में भी वो इतने पॉपुलर हैं ये जानकर गर्व से भर उठे। भार्गव जी का कहना उन्हें तो ठीक लग रहा था कि उनके परिवार में वर्मा जी का राज है।
4: वो पर वो दीदी, वो कैसा सूट पहनकर आई थी, तो कलर मुझे बिल्कुल।
1: ये सांवली लड़की अधिक मॉडर्न और चंचल है। कॉलेज की दुनिया में लड़कियों को अपनी धोती अकड़ का भोंडा प्रदर्शन करने की जो ललक पैदा हो जाती है ना, वो इस सांवली लड़की में खूब भरी हुई है। दूसरी लड़की जबकि अपेक्षाकृत अधिक समझदार और अंतर्मुखी दिखती है।
4: अरे नहीं दीदी, अब घर के बाहर निकल रही है तो थोड़ा बंधन के तो निकलना चाहिए। अब ऐसे क्या बाइयों जैसे उठकर आ गई, आप क्या हंस रही थी?
5: वर्मा जी के हाव भाव ये जाहिर कर रहे थे कि फिलहाल वे इन लड़कियों की अप्रत्याशित उपस्थिति को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजी मासिक पत्रिका करंट हिस्ट्री को पढ़ने में तल्लीन हो जाने का स्वांग कर रहे थे।
4: क्या दीदी?
3: वे उन दोनों लड़कियों को इस बात का एहसास कराना चाहते थे कि कंपार्टमेंट में लड़कियों के आगमन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा।

0: गीली हो गई हैं। रामधर, इन्हें अपने गमछे से अच्छी तरह पोंछकर पेटी में रख दे और मेरे चमड़े वाले जूते निकाल दे। अरे समझ गया ना क्या कर रहा है?
1: रामधर समझ गया था। उसने चप्पलें लेकर चमड़े वाले जूते निकाल कर दे दिए थे।
2: वर्मा जी को पत्रिका पढ़ने का स्वांग रास नहीं आ रहा था। वे चोर नजर से बार बार उन लड़कियों को देख लिया करते थे। वर्मा जी इस नतीजे पर जा पहुंचे थे कि उस सांवली लड़की का अकड़ भरा रवैया उस गोरी लड़की को थोड़ा सा भी नहीं भा रहा था। वो तिलमिला उठती थी।
3: अरे ये क्या, वो गोरी लड़की तो मेरे उपन्यास बिखरती दुनिया का पन्ना खोलकर बहुत सावधानी के साथ उस अकड़बाज लड़की को आंखों के इशारे से दिखा रही है।
1: पुस्तक के उस पन्ने पर वर्मा जी का बड़ा सा चित्र जो छपा था, कमाल हो गया। वर्मा जी का चित्र देखकर उस सांवली लड़की के हाव भाव एकदम बदल गए। वो संयमित हो गई थी। अब वो तेजी से पीछे छूटती आ रही वृक्ष पंक्तियों को खिड़की से देखने लगती थी। उसके फूहड़पन पर अब मर्यादा ने पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। राय बहादुर का ध्यान वर्मा जी पर केंद्रित हो गया था।
4: अरे भाई वर्मा जी, अरे ये बताइए कि लिखने पढ़ने के अलावा आप लेखकों का दीन दुनिया से भी कोई रिश्ता नाता रहता है या नहीं? भाई आप तो इस समय इस पत्रिका में ऐसे खोए हैं जैसे इसके बाहर दुनिया में कहीं भी आनंद का वजूद ही नहीं है।
3: राय बहादुर जी, लेखक तो अपनी जिंदगी में एक नहीं कई रिश्ते एक साथ निभाते हैं और बखूबी निभाते हैं। इन रिश्तों से मिलने वाले रस को समाज में बांटने के लिए ही तो वे साहित्य का सृजन करते हैं।
4: भाई बहुत खुशी की बात है कि आप भी मेरी ही तरह दुनियादारी में विश्वास करने वाले शख्स हैं।
3: बिल्कुल।
4: वर्मा जी
3: जी,
4: भाई थोड़ी देर के लिए इस पत्रिका को एक तरफ रखकर इनसे परिचय कीजिए। देखिए ये दोनों मेरी बेटियां हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: वो जो एन खिड़की के पास बैठी है ना,
3: हाँ।
4: वो मेरी छोटी बेटी निर्मला है।
0: नमस्ते।
4: गर्ल्स कॉलेज में तीसरे वर्ष में पढ़ती है।
3: नमस्ते नमस्ते।
4: और ये जो दूसरी लड़की है ना, ये मेरी बड़ी बेटी है।
1: इसी बीच फलवाला जोर से चीख उठा।
5: ताजा अनार, बहुत बढ़िया, मीठे और बेदाना, खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। अनार, ताजा अनार।
0: जी मुझे कमला कहते हैं।
3: आप दोनों बहनों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। समझ लीजिए मेरी तो ये यात्रा सार्थक हो गई। भगवान सभी को आप जैसे सहयात्री दें।
0: You are very interesting person. मैंने तो सुना था राइटर लोग बड़े रूखे रूखे और नक चढ़े होते हैं, एकदम बेरस बेमुरव्वत।
4: जी, ये बातूनी कमला है ना, ये महात्मा मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ती है।
3: अच्छा।
4: हाँ, और ऑक्सफोर्ड जाने के लिए आसमान सिर पर उठाए हुए कहती है बस आगे पढ़ेगी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, नहीं तो घर भला और ये भली।
3: ये जमाना तो इन्हीं लड़कियों की ऊंची उड़ान का जमाना है।
4: हाँ भाई,
3: इनकी उड़ान को रोकना समय के तकाजों के साथ नाइंसाफी होगी। वैसे भी आपके पास भला कमी भी किस बात की है, कमला जी को भी अपनी मनमानी कर लेने दीजिए ना। अरे वो भी क्या याद रखेंगी कि आप जैसा उदार मना पिता मिला था क्यों।
0: वर्मा जी, आप बार बार उस पत्रिका की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या है उस पत्रिका में कि उसको छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा? जरा बताइए तो सही, ये पत्रिका कौन सी है?
3: ये कोई नॉवेल या स्टोरी कलेक्शन नहीं है निर्मला जी, ये तो हिस्ट्री के रूखे सूखे विषय की अंग्रेजी की एक मासिक पत्रिका है। लीजिए, आप भी देख लीजिए।
0: दीजिए। करंट हिस्ट्री लगती तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो आप इसे अपने पास रखिए, पढ़ने का मूड हुआ तो आपसे मांग लूंगी। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच।
3: डियर वर्मा, बातचीत का ये सिलसिला तो यहीं थम गया। यदि बातचीत का कोई दूसरा सिरा न मिला तो राय बहादुर मोहनलाल भार्गव का प्रशंसा पुराण फिर से सुनना पड़ेगा, जिसको झेलते झेलते सफर का सारा आनंद ही किरकिरा हो जाएगा।
0: किस सोच में डूब गए लेखक महोदय? कहानी का कोई नया प्लॉट दिमाग में कुलाचे भरने लगा है क्या?
3: ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप लोग आज कहाँ जा रहे हैं?
0: मैं जबलपुर जा रही हूँ, वहाँ मेरी एक मित्र की शादी है। और मैं कलकत्ता जाऊंगी। कलकत्ता में एमसीसी का मैच देखकर शांति निकेतन चली जाऊंगी और पापा सतना में उतर जाएंगे।
3: आप अकेली जाएंगे? आश्चर्य है।
4: अरे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है वर्मा जी, क्या हमारे देश में अकेले लड़की को यूं लंबा सफर करने का अधिकार नहीं है?
3: नहीं भाई, मतलब ऐसा।
4: भाई देखिए लेखक महोदय, भारत की लड़कियां अब पहले जैसी मोम की गुड़िया नहीं रह गई हैं। उन्होंने भी हर तरह के हालात का सामना करना बखूबी सीख लिया है।
3: नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं।
6: निर्मला द्वारा अकेली आधा हिंदुस्तान नापने पर कम से कम आपको तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए वर्मा जी।
3: मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहिए ना।
6: आपने अपने उपन्यास बिखरती दुनिया की लैला रानी को उसके कॉलेज के दोस्त के साथ अकेले लंदन भेजने में कोई संकोच नहीं किया है, फिर निर्मला के अकेली लंबी यात्रा पर निकलने पर ये आश्चर्य कैसा?
4: संगमरमर के बने महल में भी किसी कोने में मिट्टी के चूल्हे होते हैं कम्मू, इसमें वर्मा जी का भला क्या दोष?
6: आप भी पापा कहाँ की बात ले बैठे। वर्मा जी ने तो

0: आपकी बात में यूं ही टिप्पणी कर दी थी। हमें उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था।
1: पापा आप भी कभी कभी अपने ठेठ पुराने और बेघड़े स्वभाव के वशीभूत होकर ऐसी चुभने वाली बातें कर डालते हैं। वेरी सॉरी, विचारों की इस अंधी खो से आप आखिर कब बाहर निकलेंगे पापा?
2: क्या कहा?
0: बस निर्मला बहुत हो गया। डोंट मेक सच कमेंट्स अगेंस्ट अवर फादर। ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस। वेरी सॉरी निर्मला, यू शुड बी सॉरी।
3: स्पष्ट है कि न तो निर्मला को अपने पिता की चुटकी पसंद आई थी और न ही कमला उसको कोई ध्यान देने की चीज मान रही थी।
4: दूसरी तरफ लेखक वर्मा के मौन, संकोच भरे हाव भाव और गम खाकर बैठे रहने में राय बहादुर की अफसरी उजड़ता को प्रोत्साहन मिला था। वे तो वर्मा जी को आहत और अपमानित करने के ऐसे अवसरों की तलाश में ही रहते थे। सुंदर अवसर जानते तब अपनी सहिष्णुता, सुधार प्रियता और सामाजिक क्रांतिवादिता का बखान करने से न चूके।
5: वर्मा जी, मेरा आदर्श सामाजिक सुधार नहीं, सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति?
6: जी जी।
5: मेरे अंग्रेज और ईसाई दोस्त मेरे घर आते हैं, खाना खाते हैं हमारे साथ एक ही टेबल पर। संतति नियोजन और सेक्स हाइजीन की किताबें मैंने स्वयं खरीद कर इन लड़कियों को लाकर दी हैं। वर्मा जी, निर्मला अपनी तस्वीरों के एल्बम सजाते ही मुझे दिखाए बिना नहीं रहती। आप जानते हैं जवान पढ़ी लिखी लड़कियों के एल्बम में क्या क्या खुराफाते नहीं होती।
6: वो तो
0: बस कीजिए ना पापा।
5: मैं जात पात नहीं मानता वर्मा जी। मैं अपनी भतीजी की शादी पंजाब में एक सिविलियन भोलानाथ सिंह के साथ कर चुका हूँ।
6: अच्छा
5: जी, आखिर लड़कियों का दूल्हा बेमौसम ओलों की तरह बरसाया क्यों जाए? भाई मैं तो औरतों की व्यक्तिगत आजादी का खूब कायल हूँ।
6: जी जी।
5: कमला और निर्मला के पत्राचार ना जाने कहाँ कहाँ होते हैं। शायद निर्मला शांति निकेतन जाकर अपना दूल्हा खुद चुनाए।
6: जी जी।
4: इस संवेद हंसी में निर्मला की हंसी शामिल नहीं थी। अपने पापा की खुल्लम खुल्ला बात पर झेपने से फुर्सत मिलती तो हंसती बेचारी। उस समय राय बहादुर के बुढ़ाए चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष के ऐसे भाव फैले हुए थे जैसे बातों ही बातों में उन्होंने कोई किला फतह कर लिया है। अनुकूल अवसर देखा तो वे अपनी बघारते चले गए।
5: सच बात तो ये है वर्मा जी,
6: जी,
5: कि आप लोग किताबों में लिखते हैं और हम लोग उस पर अमल करते हैं। नाजुक ख्याली या आजादी को जबान या कलम पर उतारना एक बात है, मगर उसे अपनी जिंदगी पर उतार कर जिल्लतें, परेशानियां और अपमान आमंत्रित करना बिल्कुल दूसरी बात। सच मानिए वर्मा जी, राम ना हो तो रामायण किसे कहें।
4: इस तरह राय बहादुर की मीठी जुबान, सभ्यतापूर्ण व्यवहार और लेखक वर्मा जी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव ने वर्मा जी के आसपास अवज्ञा का एक घेरा बना दिया था। वर्मा जी भीतर ही भीतर राय बहादुर की मीठी जुबान के तीखे वार से आहत थे। कोई वश न चला तो वे आत्मनिरीक्षण में संलग्न हो गए। राय बहादुर की बातों से वर्मा जी को मालूम हो चुका था कि उनकी दोनों लड़कियां कुंवारी हैं। उन्होंने डरते डरते राय बहादुर से कह ही दिया,
6: जवानी की अल्हड़ता से इनकार तो नहीं किया जा सकता। आखिर हम नौजवानों को आप जैसे बुजुर्गों से ऐसी बातें पूछ ही लेनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि कहीं हम गुमराह तो नहीं हो चले।
4: दूसरी तरफ राय बहादुर का हौसला अपनी बुलंदी पर था। वे किसी की सलाह पर ना तो कान देने को तैयार थे और ना ही तब किसी प्रकार का समझौता करने के वे मूड में थे।
5: वर्मा जी,
6: जी,
5: मैं अपनी लड़कियों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं करता। बार डांस में, सिनेमा और अफसरी मजमों में ये हर जगह जाती हैं। पार्टियों में अपने मनमाने टेबल पर मनचाहे साथियों के साथ बैठती हैं।
6: अच्छा,
5: आखिर एजुकेशन के मायने क्या हैं वर्मा जी? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, वो सब तो यही हैं। इस जमाने की पढ़ी लिखी लड़कियां, इनका मुस्कुराना, इनका हंसना, मिलना जुलना, यही तो समाज की आगे की परंपरा बनेगी।
6: जी जी।
0: लेखक महोदय, आप तो कहीं खो गए। कहीं कोई परेशानी हो तो हम लोगों के साथ बांटिए ना।
1: हाँ हाँ, परेशानी कह डालने से कम हो जाती है। दीदी ठीक ही कह रही हैं। अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर कर लीजिए।
6: नहीं नहीं, परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तो ईश्वर से कुछ मांग रहा था। अब जब भी मैं उससे कुछ मांगता हूँ वो मुझे निराश नहीं करता, तो अब मांगता हूँ तो तमंचा तो पकड़ा ही देता है।
1: जरा हमें भी तो बताइए, आपने भगवान से क्या मांगा है?
6: देखिए,

0: ईश्वर के सामने रखी गई मांग को हमारे यहाँ गोपनीय रखने की परंपरा है। भाई गोपनीयता भंग होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है।
1: कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना निजी मामला है, हम तो यूं ही आपके मन को परखना चाहती थी।
0: अच्छा।
1: भगवान आपकी इच्छा पूरी करे तथास्तु।
0: धन्यवाद।
2: गोपनीयता तो मात्र एक बहाना था। दरअसल वर्मा जी बड़बोले पर उपदेशक राय बहादुर के ऊपर से आडंबर की चादर उघाड़ने की कोई नायाब कल्पना ईश्वर से उधार मांग रहे थे। लेखक नाम का प्राणी होता ही ऐसा है कि थोथे उपदेशों और शेखी बघारने की मनोवृत्ति पर प्रहार किए बिना उसको चैन नहीं मिलता। वर्मा जी भी ऐसे ही लेखकों में से हैं। वर्मा जी अपने मिशन में सफल हों, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।
1: लेखक महोदय, बुजुर्ग कहते हैं कि पेट भरा हो तो ईश्वर का स्मरण ठीक से हो जाता है। तो लीजिए ये चीकू खाइए, एकदम ताजे हैं, इटारसी स्टेशन से ही खरीद कर लाए हैं। लीजिए।
0: नहीं नहीं बस।
1: अरे अरे लीजिए ना, असंकोच मत कीजिए, लीजिए।
3: आप तो बड़ी बहन की मानिए और संभालिए ये तश्तरी।
0: अरे
3: मैंने सेब छील कर इसमें रख दिए हैं, पहले इन्हें खाइए फिर निर्मला के चीकू पर हाथ साफ कीजिएगा।
0: पहला ऑफर तो निर्मला जी का था, वो आपसे छोटी भी हैं, उनका मान रखते हुए पहले उन्हीं के चीकू का भोग लगाता हूँ। ये वाह, गजब के मीठे।
1: वाह क्या खूब कही है, भोग।
0: क्यों?
1: लेखक जी आप तो स्वयं ही भगवान हो गए, भोग तो भगवान को ही लगाया जाता है। ईश्वर जी महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
2: इस समय लेखक वर्मा जी नाना प्रकार के भावों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसे हुए थे। दोनों लड़कियों की उपस्थिति के कारण चाहे वे धीर गंभीर बने हुए हों, मगर मुस्कुराना ही नहीं खिलखिलाकर हंसना भी उन्हें खूब आता था। यद्यपि राय बहादुर द्वारा चाहे अनचाहे किए गए अपमान से वे बुरी तरह से आहत थे, लेकिन फलों की मिठास का आनंद लेने से इनकार न करके वे राय बहादुर से मिले अपमान को भी स्वादिष्ट बना देना चाहते थे।
1: क्या दीदी?
3: देख तो निर्मला आगे एक बोगदा आ रहा है।
4: हाँ दीदी, हाँ देखो देखो बस आने ही वाला है।
3: ट्रेन थोड़ी देर में इस बोगदा में प्रवेश करेगी।
4: सच्ची?
3: बहुत मजा आएगा।
4: हाँ दीदी।
3: पता है पूरी ट्रेन अंधेरे में गुम हो जाती है।
4: सच्ची?
3: और कंपार्टमेंट में तो कोई नजर ही नहीं आता, खूब अंधेरा और सन्नाटा बस।
4: अरे निर्मला देखो लो, ट्रेन बोगदा में प्रवेश कर चुकी है।
2: कमला और निर्मला के लिए ये बोगदा मात्र एक आनंद की चीज थी, लेकिन वर्मा जी के लिए तो जैसे इस बोगदे ने विजय का द्वार ही खोल दिया था। आइए वर्मा जी की जुबानी ही सुने कि बोगदे से गुजरते समय ट्रेन के उस अंधेरे कंपार्टमेंट में क्या घटा।
0: राय बहादुर द्वारा दिए गए अपमान से मुझमें एक बेकाबू उद्दंडता का भाव जाग उठा था। जो ही बोगदे का अंधेरा आया और मेरे डिब्बे में बिजली के अभाव में एक दूसरे की शक्लें दिखनी बंद हुई, त्यों ही मैंने बोगदे के बीचों बीच पहुंच कर करंट हिस्ट्री पत्रिका को उठाकर उसे जोर से चूमा।

0: बोगदे से जूं ही गाड़ी बाहर आई और स्टेशन आने को हुआ, यूं ही बरसता सावन बैसाख हो गया। पहले जहां कंपार्टमेंट में रुमानियत और हंसती मुस्कुराती सावन की झड़ी लगी हुई थी, अब वहां क्रोध, घृणा और शिकायत से भरा ग्रीष्म का आग की लपटें बिखेरता मौसम पसर गया था।
1: कमला निर्मला को क्रोध से घूर रही थी तो निर्मला कमला को घृणा से निहार रही थी। सारे कंपार्टमेंट में सन्नाटा फैल गया था। राय बहादुर लाल चेहरा किए बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों को भांप रहे थे कि ट्रेन के बोगदे से गुजरते समय वो बेशर्मी उन दोनों में से किसकी भागीदारी में हुई।
0: उस समय दो बेटियों और पिता के बीच शर्मिंदगी और अविश्वास का एक त्रिकोण बन गया था।

0: लो भाई हरिकिशन वर्मा, तुम्हारा तो स्टेशन आ गया। उतर लो प्यारे, ट्रेन जल्दी तो मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, नीचे उतर ही जाता हूँ।
1: लेखक हरिकिशन वर्मा सारे घटना चक्र को पीछे छोड़ ट्रेन से नीचे उतर पड़े।
2: उतरते समय राय बहादुर और उन दोनों लड़कियों में से कोई भी उनसे नहीं बोला। तब राय बहादुर का लाल चेहरा बता रहा था कि आधुनिकता और उदारता की बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाला राय बहादुर मोहनलाल भार्गव पराजित हो चुका है।
1: उस कंपार्टमेंट में केवल एक पिता शर्मिंदगी के बोझ तले दबा चुपचाप बैठा है। शेष कहानी वर्मा जी से ही सुने तो ठीक रहेगा।
3: मैं करंट हिस्ट्री वाली अपनी पत्रिका उसी कंपार्टमेंट में छोड़ाया। वो वहीं छूटने की सच्ची हकदार भी थी। इस महाप्रलय के अंतिम अध्याय में चूंकि उनका भी 50% हिस्सा था, मैंने उस पर पेंसिल से राय बहादुर के प्रवचन का एक वाक्य उद्धृत कर दिया, जो ये था।
4: नाजुक ख्याली या आजादी को जबान या कलम पर उतारना एक बात है, मगर उसे अपनी जिंदगी पर उतार कर जिल्लतें, परेशानी और अपना अपमान आमंत्रित करना बिल्कुल दूसरी बात।
3: अलविदा, अलविदा दोहरे चरित्रधारी राय बहादुर मोहनलाल भार्गव, अलविदा, अलविदा।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति से इनकार नहीं किया गया है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। ये रोग आमतौर पर बढ़ती उम्र से जुड़ा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे होने वाले बदलाव शरीर और दिमाग में इसके लक्षण दिखाई देने से काफी पहले शुरू हो सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तारियाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांडविया ने कहा है कि देश को इस स्पर्धा में पहली बार ये पदक मिला है। वन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल की लिखित परीक्षा में सफल 5,935 वन रक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षण और पैदल चाल परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक अलग अलग वन मंडलों में होगी। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भी बारिश और गरज चमक के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

0: बीमारी में बीता हर पल हमें स्वास्थ्य की कीमत बता देता है। श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे का नमस्कार। श्रोताओं, आज है विश्व अल्जाइमर दिवस। यह दिवस हर साल यानी कि आज ही के दिन 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर और डिमेंशिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह रोग मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें समय के साथ याददाश्त, सोचने समझने और रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। देखने में आता है कि रोगी कई बार एक ही बात भूल जाता है। हाल ही में हुई कोई घटना या कोई बातचीत याद रख पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार व्यक्ति परिचित जगहों या रास्तों को भी भूल जाते हैं। रोज़मर्रा के कामों में भी उसे कई परेशानियाँ होने लगती हैं। लेकिन हर भूलने की समस्या अल्जाइमर नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति में लगातार ऐसे बदलाव दिखें तो सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। श्रोताओं, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को डांटने या बार बार उसे उसकी भूल की ओर याद दिलाने के बजाय उनसे धैर्य, सम्मान और प्यार से पेश आएं। उनकी बात ध्यान से सुनें और उन्हें सुरक्षित व सहज वातावरण दें और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भी सहयोग करें। याद रखिए, बीमारी व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति को बीमारी से अलग देखकर सम्मान और अपनापन देना हम सबकी जिम्मेदारी है। कहते भी हैं, रोग से लड़ें, रोगी से नहीं। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: आंख लड़ाइए फिर आगे बढ़ जाइए, बढ़कर हाथ मिलाइए, अपना नाम बताइए, पहले

0: चंद रोग प्रतिरोधक क्षमता और बदलते मौसम में उनकी देखभाल को लेकर अभिभावकों के मन में कई सवाल रहते हैं। ऐसे में आयुर्वेद की पारंपरिक अवधारणाओं और आधुनिक चिकित्सा की समझ के बीच सही जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर शैलेश जैन को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य को किस दृष्टि से देखा गया है।
1: आयुर्वेद में यदि हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। इन 8 अंगों में कौमार भृत्य एक अंग है, और जिसमें कि बच्चे के भरण पोषण, उसके स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान का वर्णन किया गया है। आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिस तरीके से पीडियाट्रिक एक अलग बच्चों का विभाग है, तो सोचने की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों को इस बात का ज्ञान था कि बच्चों का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने आज से हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद में कौमार भृत्य का वर्णन किया और उसका महत्व बताते हुए फिर यह भी कहा कि जब एक कौमार भृत्य विशेषज्ञ शिशु की प्रॉपर भरण पोषण और उसको स्वास्थ्य देता है, तभी जाके अन्य जो बाकी के 7 अंग हैं उनके लिए वह व्यक्ति उपलब्ध हो पाता है। तो उस प्रारंभ से ही आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य को बड़ा ही महत्व दिया गया है।
0: जी, अब डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के समय की अगर हम बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर माता पिता की सबसे बड़ी चिंताएं क्या है?
1: देखिए, जहां तक मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनकी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, वो बच्चे को भूख ना लगना, बच्चे का ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ना खाना
0: जी,
1: जिसकी वजह से लगातार कॉन्स्टिपेशन बने रहना। पेरेंट्स का कहना होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक बच्चे को मोशन ही नहीं होता है
0: जी।
1: बच्चे का पानी नहीं पीना, बच्चा तभी पानी पीता है जब उसको एक्सट्रीम थर्स्ट होती है, नहीं तो वो पानी नहीं पीता। बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में बॉटल देते हैं भरी हुई, शाम को बच्चा वैसे ही वापस ला देता है, तो बच्चा पानी नहीं पीता। और आज के समय में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने में मिल रहा है, वो बच्चे के बिहेवियर में देखने को मिल रहा है। आजकल के बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, आजकल के बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और सहनशीलता का अभाव देखा जा रहा है। तो ये आज की कॉमन कंप्लेंट्स हैं। इसके अलावा बच्चे का हाइट ना बढ़ना, वजन का ना बढ़ना, और उनको बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, मौसम बदलते हो जाना, ये पेरेंट्स की आज बिल्कुल कॉमन कंप्लेंट्स है।
0: जी जी जी, दिनचर्या में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से क्या है समस्या है, या बच्चों के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या का कोई महत्व है?
1: देखिए, आयुर्वेद के यदि हम प्रयोजन की बात करें तो आचार्य कहते हैं प्रयोजनम चाश्य आयुर्वेदः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद में आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजन है स्वस्थ के स्वास्थ्य का संरक्षण और रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण। तो विश्व की एकमात्र पद्धति मैं कहूँगा आयुर्वेद ऐसी है जो डिसीज का ट्रीटमेंट तो बताती ही है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि व्यक्ति स्वस्थ कैसा रहे या बच्चे को हम स्वस्थ कैसा रखें। तो इसके लिए आचार्यों ने बकायदा दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और आहार विहार का पूरा वर्णन हमारे ग्रंथ में उपलब्ध है, और यदि उन दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि के नियमों का पालन किया जाता है तो बिल्कुल बच्चा स्वस्थ रहेगा।
0: जी, और जैसे बच्चों के पाचन तंत्र की बात करें तो बच्चों के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए माता पिता को किन बातों का ध्यान देना चाहिए?
1: देखिए, पाचन तंत्र तो मैं समझता हूँ आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज बच्चे, मैंने जैसा कि आपको बताया, हरी सब्जियां नहीं खाते, फल उन्हें पसंद नहीं आते, पानी वो पीते नहीं हैं, भूख उन्हें लगती नहीं है, तो ये आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ में ही आज का यदि आप चलन देखें तो फास्ट फूड्स, जंक फूड्स और पैकेट फूड्स, इनकी तरफ बच्चों का रुझान बहुत अधिक बढ़ गया है। डेली आइसक्रीम खाना है उन्हें, तो कुल मिलाकर पाचन तंत्र को ठीक रखना, डाइजेशन को ठीक रखना आज बहुत बड़ी चुनौती है, और आयुर्वेद तो प्रारंभ से यही कहता है कि सारे रोगों की जड़ पेट है। यदि आपका पेट ठीक है तो आप स्वस्थ हैं, और यदि आपका पाचन ठीक नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो बच्चों के संदर्भ में भी यही है कि यदि हम आयुर्वेद में जो पथ्य अपथ्य आहार विहार के नियम बताए गए हैं उन्हें पालन

0: करेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, और कहा भी जाता है कि संतुलित आहार सेहत की सबसे बड़ी कुंजी है। अब डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए भी कोई उपाय बताए गए हैं?
0: देखिए, आयुर्वेद में आचार्य काश्यप जो कि काश्यप संहिता, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी वर्णन है वह पूरा काश्यप संहिता में मिलता है। और हमारे आचार्य काश्यप ने इसमें एक पूरा का पूरा अध्याय, जिसे कि लेह अध्याय बोला है, वहाँ उसमें उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आहार विहार जीवन शैली जन्य परिवर्तन और साथ ही च्यवनप्राश और स्वर्ण प्राशन जैसे योग, लेह योग का भी वर्णन किया है कि यदि हम उन्हें बच्चे को देंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बनी रह सकती है।
1: जी। और डॉक्टर साहब, अक्सर काफ़ी लोगों में ये जिज्ञासा रहती है कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा और एलोपैथी को साथ में लिया जा सकता है, या दोनों चिकित्सा पद्धति का लाभ कोई पेशेंट ले सकता है?
0: देखिए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ आप ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आयुर्वेद हो एलोपैथ हो, यदि उनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ उनकी लिमिटेशंस भी हैं। और आज के समय के हिसाब से यदि हम देखें, मॉडर्न मेडिसिन की यदि हम बात करें, तो आज उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स, इम्यूनाइजेशन, ये सभी यदि बहुत अच्छा है उनके पास में, तो फिर आयुर्वेद में भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज जैसे कि बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र में बच्चों को बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी देखने को आज हमें मिल रहा है, तो इन सभी के लिए फिर आयुर्वेद भी बेहतर है। साथ ही बच्चों में और भी कई सारी बीमारियां जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि, ये कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि लाइफ लॉन्ग डिसीज हैं, और उनको यदि हमें ठीक करना है तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, विकल्प है, वह आयुर्वेद है। तो मेरा ये मानना है कि यदि कंडीशन जैसी है, यदि एक्यूट कंडीशन है तो उसमें हम एलोपैथ लें, और क्रॉनिक कंडीशन है तो उसमें हम आयुर्वेद को अपनाएं, और इनको आज के समय में इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। दोनों ही पद्धतियों को लेकर भी आप साथ में इलाज कर सकते हैं, बस दोनों चिकित्सकों को आप उनसे सलाह लेते हुए ही आप यह दोनों को इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात की आपने। हम अपने श्रोताओं से भी यही कहना चाहेंगे कि कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही वह ट्रीटमेंट शुरू करें, और अपने डॉक्टर्स के नॉलेज में रखते हुए ही कोई ट्रीटमेंट को आगे तक कंटिन्यू करें। अब डॉक्टर साहब, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बात की थी स्वर्ण प्राशन की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, स्वर्ण प्राशन जैसे आयुर्वेदिक संस्कारों को लेकर माता पिता में काफ़ी रुचि है, इसके बारे में आपकी क्या सलाह है?
0: देखिए, स्वर्ण प्राशन संस्कार, जैसा कि आपने कहा, तीन शब्दों से मिलकर बना है, स्वर्ण प्राशन और संस्कार। स्वर्ण मतलब गोल्ड या सोना, प्राशन मतलब चटाना, और संस्कार हमारे यहाँ कहा गया है, संस्कारो ही गुणांतराधानम, गुणों का आधान करना ही संस्कार है। तो यदि हम तीनों शब्दों को मिलाकर इसका अर्थ देखें, तो सोने को चटाकर गुणों का आधान करना, हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि बहुत कम मात्रा में हम बच्चे को स्वर्ण दें तो वह उसके लिए बहुत अच्छा बताया गया है। यदि हम प्राचीन समय में देखें तो हमारे राजा महाराजा भी जो रहते थे वो स्वर्ण के पात्र में भोजन करते थे, और जो मुकुट वगैरह उनका जो होते थे वो सारे स्वर्ण के आभूषण होते थे। तो उनका कारण यही था उनके पहनने का, कि यह थोड़ी मात्रा में स्वर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, और हमारे आचार्य ने स्वर्ण प्राशन का महत्व बताते हुए कहा है, स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि आयु बल वर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधि भी ना च दृश्यते षडवी मासे श्रुत धर्म स्वर्ण प्राशनात् भवेत। अर्थात यदि कोई स्वर्ण प्राशन लेता है बच्चा, तो उसके मेधा मतलब इंटेलेक्चुअल पावर, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव पावर, उसका बल मतलब उसका शरीर का बल, और वह बच्चा यदि स्वर्ण प्राशन लेता है तो उसकी आयु अच्छी होगी, वह मंगलकारी होगा, पुण्यकारी होगा, वर्ण वर्ण मतलब उसके शरीर का कॉम्प्लेक्शन वह भी बहुत अच्छा होगा, और ग्रहापहम बोला है मतलब कि कई सारे रोग ऐसे हैं जो कि नाम से वर्णित नहीं है लेकिन वो भी बच्चे को ग्रसित कर लेते हैं, उनसे भी बच्चे की रक्षा होती है। तो कुल मिलाकर, और आचार्य कहते हैं यदि एक महीने तक कोई लगातार स्वर्ण प्राशन लेता है तो वह परम मेधावी हो जाता है, और उसे व्याधि भी ना च दृश्यते मतलब उसे कोई व्याधि नहीं होती है, और यदि

0: बच्चा छठवीं माह से 6 मास तक इसका सेवन करता है तो वह श्रुतधर हो जाता है। तो कुल मिला के बहुत कम मात्रा में यदि हम बच्चे को स्वर्ण देते हैं तो वह उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उम्र के हिसाब से उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, हाइट वेट होनी चाहिए, उसे इम्प्रूव करता है, इसके साथ उसके वर्ण को भी इम्प्रूव करता है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है
1: जी। डॉक्टर साहब, अब मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं?
0: देखिए, आजकल जो हम बच्चों को स्वर्ण प्राशन देते हैं तो 6 मास के बच्चे से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेदिक उपचार बच्चों की हर बीमारी में किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, हर बीमारी में किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे जैसा कि कहा कि यदि आपके पास बेहतर विकल्प उपस्थित है, यदि बच्चे को एक्यूट कंडीशन है, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो रखा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो चुका है, तो इमरजेंसी कंडीशन है, तो मैं कहूँगा ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद तो आप लें ही, लेकिन साथ में जो हमारे पास बेहतर विकल्प है मॉडर्न मेडिसिन का, हमें उसे भी अपनाना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी बात की आपने। निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है, हमारे श्रोता उससे लाभान्वित होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। अब डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं माता पिता से, आज के जो पेरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आज बच्चों को अच्छे डॉक्टर और अच्छे दवा से ज़्यादा आपके समय की ज़रूरत है, आपके अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है, घर के अच्छे बने हुए भोजन की ज़रूरत है, और मोबाइल टीवी की जगह उन्हें अच्छे मैदान की ज़रूरत है। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी दवा शुरू करने से पहले चिकित्सक के परामर्श की ज़रूरत है। और अंत में बस मैं पेरेंट्स से इतना ही कहूँगा कि बच्चे मिट्टी जैसे होते हैं, आप उन्हें जैसा आज आकार देंगे कल वो वैसे ही ढल जाएंगे, इसलिए आपका समय, आपके संस्कार, आपके बच्चे और देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है।
1: निश्चित तौर पर आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी, यही हम उम्मीद भी करते हैं। और हमारे श्रोता जो भी यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी जो जिज्ञासा है उनका समाधान भी अवश्य रूप से हुआ होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने बच्चों के स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका विषय पर डॉक्टर शैलेश जैन से मनीष गजभिये की यह बातचीत सुनी। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अब समय हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। श्रोताओं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक लगातार नई नई संभावनाएं लेकर आ रही है। आज हम बात करेंगे क्रायोथेरेपी और आधुनिक पेन रिलीफ ट्रीटमेंट की। इस थेरेपी का उपयोग कुछ स्थितियों में दर्द और सूजन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। खेल के दौरान लगी कोई चोट हो या मांसपेशियों में दर्द या सूजन हो, ऐसी स्थिति में ठंडी सिकाई या क्रायोथेरेपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका सरल अर्थ है कोल्ड थेरेपी, यानी बर्फ या अत्यधिक ठंड से उपचार। इसके तहत शरीर को कुछ मिनटों के लिए बेहद कम तापमान के संपर्क में लाया जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे प्रभावित हिस्से में सूजन और दर्द बढ़ाने वाले केमिकल्स कम हो जाते हैं। यह तकनीक दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाने वाली नसों की गति को धीमा या सुन्न कर देती है। थेरेपी खत्म होते ही जब शरीर वापस सामान्य तापमान में आता है तो रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ता है और शरीर में प्राकृतिक पेनकिलर एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है। श्रोताओं, यह थेरेपी एक सुरक्षित थेरेपी है, लेकिन गंभीर हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या तंत्रिका तंत्र से संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के ये थेरेपी नहीं लेना चाहिए। अब बारी है कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने की। सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा पत्र के जरिए। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे को। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोहन लाल कुशवाहा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सोहनलाल कुशवाहा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दीप्ति परमार की आवाज में चंद गजलें। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दीप्ति परमार की आवाज में चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। मातृभाषा का अनादर मां के अनादर के बराबर है। जो मातृभाषा का अपमान करता है वो देशभक्त कहलाने लायक नहीं। ये बात कही महात्मा गांधी ने।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, बोल गुलजार के हैं, धुन आर डी बर्मन की, और फिल्म का नाम है आंधी। और इसके बाद आप सुनेंगे चितचोर फिल्म का गीत।

0: यशुदास और हेमलता की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारम्भ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केन्द्र का उद्घाटन भी करेंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ किया। यात्रा में पंजाब में नशे की समस्या, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले श्री चौहान ने तख्त श्री दमदमा साहिब में मत्था टेक कर पंजाब की सुख समृद्धि और नशा मुक्त पंजाब के लिए अरदास की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित कर

0: करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर तक निकली बाइक सेवा यात्रा कल रविवार को सतना लोकसभा क्षेत्र पहुंची। सतना सांसद गणेश सिंह ने बेला में यात्रा की आगवानी की और हनुमान मंदिर में श्रमदान कर स्वच्छता और पौधरोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि, पशुपालन, डेयरी प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को अपनाकर आय बढ़ाने का आह्वान किया। दिनवारा में ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने समस्याएं रखी। बाद में यात्रा चित्रकूट विधानसभा के नया गांव पहुंची, जहां सांसद ने यात्रा में शामिल युवाओं से मुलाकात की।
1: हमारी जो यात्रा है जो वाराणसी से चलकर बड़नगर की तरफ रवाना हो रही है, कल रात्रि यहाँ पर मेला में उनका विश्राम हुआ। आज सेवा वाटिका में वृक्षारोपण करने के बाद मैहर की तरफ उनका प्रस्थान होगा। उनके टीम के सभी साथियों का भी सतना जिला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से, यहाँ उपस्थित सभी साथियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि से जापान में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर और जबलपुर सहित कई जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, मंडला स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल करीब 458 करोड़ रुपए की चंबल कोतवाल जल परियोजना का निरीक्षण किया। लोक निर्माण और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने मालाखेड़ी में 368 लाख रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवीए विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। शिवपुरी जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर 2 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। जबलपुर में रेलवे ने विकास कार्यों के चलते जबलपुर हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस के 19 फेरे और भोपाल दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस के 7 फेरे रद्द करने का फैसला लिया है। भोपाल जिले के प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आज विशेष आधार नामांकन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 बकरियों की मौत हो गई, वहीं 3 चरवाहे इसकी चपेट में आकर झुलस गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को

0: दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले शत प्रतिशत भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
6: सूचना और प्रसारण

0: मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4th चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
2: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
1: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
3: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
4: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
3: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
5: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
3: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार लखनऊ।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, खूबसूरत सा ये मौसम है और साथ ही गणेश उत्सव की धूम है। चारों ओर एक खुशनुमा वातावरण है, चाहे हम बात धरती की करें या हमारे आपके मन की। और ऐसे सुहाने से समय में हर दिल कुछ गुनगुनाता है, मुस्कुराता है, और आपकी मुस्कुराहट, आपकी गुनगुनाहट आपके खतों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, जिसमें आप अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके पसंदीदा गीत आप तक भेजें। क्यों? क्योंकि ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। तो चलिए सबसे पहले फरमाइशी नाम बताते हैं कि जो हमारा पहला गीत है आज का, उसे सुनने वाले श्रोता कौन कौन से हैं।

दोस्तों ये चिट्ठी आई हुई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतेक बिरक और मीका बिरक की तरफ से। अगला खत मैं उठा रही हूँ पालदा नाका इंदौर से आई हुई ये चिट्ठी है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और सिंहपुर बड़ा से इसी गीत को पसंद करते हैं राजेश नेमा संगीता भावना और प्राची नेमा। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। बरसात की एक रात इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं मांगा खुदा से रात दिन एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं।

जहरीला इंसान। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। अनुरोध आप सबका है, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से इसी गीत को पसंद करते हैं। दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार। और ये खत आया है अमरावती महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया शोएब खान, साइमा खान, मुज्तबा खान, आफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा, मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से इसी गीत को पसंद करते हैं। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। और ये खत आया हुआ है दतरेंगी से भागवत वर्मा का, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी इसी गीत को पसंद करते हैं, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चलें सदा, कभी खत्म अपना सफर न हो।

आपकी फरमाइश का अगला गीत जूली फिल्म से हमने लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, राही सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता अर्जुन गम्हाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित और ध्वनि गम्हाणकर परी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं जूली फिल्म का ये गीत। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

0: जूली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के लिए और भी फरमाइशी खत हैं, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया और बीबी आरजू जाजूरिया, और इसी गीत को पसंद किया था। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इसके साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4वें चरण का शुभारंभ किया। यात्रा में पंजाब में नशे की समस्या, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर तक निकली बाइक सेवा यात्रा कल रविवार को सतना लोकसभा क्षेत्र पहुंची। सतना सांसद गणेश सिंह ने बेला में यात्रा की आगवानी की और हनुमान मंदिर में श्रमदान कर स्वच्छता और पौधरोपण अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को शुभकामनाएं दी हैं। और प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:35। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल आप सुनेंगे 6:40 पर और 6:45 पर। सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

जन सेवा से देश सेवा, ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनिएगा एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स।

आज शाम 5:40 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे सत्येंद्र सिंह सोलंकी का संतूर वादन, राग जयंत मल्हार, और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी लोक गीतों का निर्धारित क्रम लोक रंग। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए सोहनलाल कुशवाहा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सोहनलाल कुशवाहा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए चंद गजलें। आवाज दीप्ति सिंह परमार की है। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दीप्ति परमार की गाई हुई चंद गजलें। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत रंग फिल्म से हमने लिया है, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। और इसके बाद आप सुनेंगे दीवाना फिल्म का गीत।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली सुचिका तारियाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि उपलब्धि भारतीय खेल जगत के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि ये खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का पहला आयोजन है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा है कि समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्ययोजना पर विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में राजोदा कैलोड डबल चौकी मार्ग के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी भोपाल के साथ। पेश है उर्दू प्रोग्राम आईना।

0: आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज के हमारे प्रोग्राम की झलकियाँ कुछ इस तरह से हैं। पहली पेशकश में हम सुनेंगे तकरीर, दूसरी पेशकश होगी गज़ल और आखिरी पेशकश होगी एक खूबसूरत कलाम के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं। खुद हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें एक सर्वे के मुताबिक 427 हैं। ताहम कुछ ज़बानें ऐसी हैं जो अपनी नुमाया खसूसियात की बुनियाद पर एक अलग शिनाख्त रखती हैं और पूरी दुनिया के लिए मरकज़ तवज्जो बनी हुई हैं। उन्हीं ज़बानों में से एक ज़बान उर्दू भी है। दोस्तों, उर्दू हिंद आर्याई ज़बान है जिसकी खमीर में मुख्तलिफ तहज़ीबों, ज़बानों और फ़िरक़ों की खूबियों को समो लेने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। यही वजह है कि जहाँ एक तरफ हर कोई उर्दू को बड़ी आसानी से अपना लेता है तो दूसरी तरफ उर्दू भी बड़ी आसानी से हर किसी को अपना लेती है और इस तरह अपना लेती है कि न सरहदों के इख्तिलाफ़ को देखती है, न मज़हब व मिल्लत की तफरीक को गवारा करती है। ख्याल है कि अगर किसी ज़बान को यहाँ की रिवायती गंगा जमनी तहजीब की तर्जुमानी का हक हासिल हो सकता है तो वो ज़बान सिर्फ उर्दू ही हो सकती है। उर्दू ज़बान महज इलाकों और ख़त्तों को आपस में नहीं जोड़ती बल्कि दिलों को फतह भी करती है। यही वजह है कि उर्दू जदीद ज़बान होने के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ ख़त्तों में बोली और समझी जाती है और दुनिया की तमाम असनाफ अदब का मवाद भी यहाँ मिल जाता है। मज़ीद ख़ास बात यह है कि उर्दू ज़बान के लहजे में प्यार व मोहब्बत के साथ साथ हुस्न व इश्क के सोज़ो गदाज़ को हर समझदार इंसान वाज़ह तौर पर महसूस करता है। मुझे खुद ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिन्हें उर्दू ठीक से समझ में नहीं आती लेकिन सुनने में मज़ा आता है। दोस्तों, अहमद वसी साहब ने क्या खूब कहा है कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। सामईन, उर्दू ज़बान और गंगा जमनी तहजीब को और मज़ीद जानने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर जिसमें मुकर्रर हैं जनाब आरिफ जुनैद साहब। समाअत फरमाइए।
1: उर्दू ज़बान और गंगा जमनी तहजीब। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई। उर्दू का खमीर हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन के अकदार पर तैयार किया गया है। उर्दू में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी अल्फाज के साथ हिंदी, संस्कृत, निज हिंदुस्तान की इलाकाई ज़बानों के अल्फाज इस तरह घुल मिल गए हैं कि उसी के होकर रह गए। माहिरीन लिसानियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उर्दू ज़बान ने ज़बानों की लेन देन में जिस वसअत कलबी और ज़हनी का सबूत दिया है किसी ज़बान ने नहीं दिया। उर्दू ने हिंदुस्तान की सरहदों को अबूर करके तमाम एशियाई ममालिक, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी ममालिक तक में अपनी धूम मचा दी है। उर्दू ज़ुबान ने अदब व शेर व सुखन की असनाफ के दामन से बाहर निकल कर उलूम व फ़नून, साइंस व टेक्नोलॉजी, तालीमात व नफ्सियात, फ़लसफ़ों, इज़्मों, तारीख़, तिजारत व सनत, बिनकारी, मालियात, माशियात, कंप्यूटर साइंस और डिजिटल एडवांसमेंट, साइबर सिक्योरिटीज़ और जदीद दुनिया में कदम बढ़ाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में रसाई हासिल कर रही है। उर्दू अल्फाज मुस्तलाहात का लामहदूद ज़खीरा, इबारतों की रवानी, मुतरादिफात की फरावानी, फसाहत व बलागत की शीरीनी, अल्फाज की जादू बयानी, तलमीहात व इस्तेआरात की कसरत, सादगी व सलासत और हिंदुस्तानियत की भरपूर तर्जुमानी ने कारीन व सामीन पर ऐसा मौसिर जादू किया जिसने दिल व दिमाग पर गहरे देर पा नकुश सब्त कर दिए। अहले अतीक से हिंदुस्तान में दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों के माहरीन, उलमा, फलासफा, शुरा علوم و فنون کے ماہر، اساتذہ، سیاح، تجار، فنکار، فنون لطیفہ کے ماہرین اور مختلف ممالک کی فوجوں کی آمد، نیز اندرون ہند مختلف علاقائی زبانوں، تہذیب و تمدن کے مختلف رسم و رواج، شادی بیاہ کے طور طریقے، مختلف معاشرتی رہن سہن، کھان پان، لباس و نت نئے پہناوے، عبادات، پوجا پاٹ، عقائد، مذہبی نظریات میں تنوع، جلوس، جلسے، تہوار، تہذیبی محفلیں، ادبی مجلسیں، کوی سمیلن، مشاعرے، غزل کی محفلیں، شعر و سخن کے پروگرام، علمی مجالس، تعلیمی مباحث، مناظرے، بیت بازی، تعلیمی کانفرنس اور فلمی دنیا میں اردو کی کہانیاں، گیت، نغمے جیسی مثبت سرگرمیوں نے ہندوستان میں ایک ایسا مثالی معاشرہ تشکیل دیا ہے جو ہر ہندوستانی شہری میں تمام مذاہب کا احترام یعنی سرو دھرم سمان کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ کل انسانیت ایک خاندان ہے۔ ان بنیادی عناصر نے ایک ایسی مشترکہ تہذیب و تمدن کو فروغ دیا جس نے پورے ہندوستان میں کثرت میں وحدت، اختلافات میں اتحاد، اخوت و بھائی چارہ، محبت و الفت، انسانیت اور احترام آدمیت، ہمدردی، رحم دلی، مساوات و برابری، انسانی دوستی، مذہبی روایات میں مشترکہ شمولیت، ہر قسم کی تقاریب میں تمام مذاہب اور بقائے انسانی اور طبقات انسانی کی مشترکہ شرکت اور دھوم دھام سے خوشیاں منایا جانا، ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت، مذہبی کتابوں کا احترام کرنا اور مذہبی ہدایات کو سمجھنا اور حقائق کا اعتراف کرنا، مذہبی عبادت گاہوں جیسے معابد، مساجد، گردواروں، گرجا گھروں میں عقیدت احترام سے مذہبی عبادات اور رسم و رواجوں کو امن و شانتی سے

0: दोस्तों, अभी आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जादुई आवाज में गजल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था राना साहिर का। सामईन, शायरी अपने दौर के हालात, मसाइल और तहजीबी इकदार का मुशाहिदा करने के साथ साथ इंसान की दबी हुई ख्वाहिशात, उदासी, खुशी और मोहब्बत को अल्फाज का रूप देती है। शायरी बीमार रूह की दवा है, क्योंकि ये दिल का बोझ हल्का करती है। दोस्तों, इसी शायरी के ताल्लुक से हमने आपके लिए एक कलाम का एहतिमाम किया है, जिसमें शायर हैं अंजुम बारा बंकवी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उनके दिलकश अंदाज में। समात फरमाइए।
1: चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मतला ये अर्ज है कि हर तरफ धूम है लफ्ज़ों की बदौलत मेरी, हर तरफ धूम है लफ्ज़ों की बदौलत मेरी, कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी, कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी। मतलब सानी अर्ज़ करता हूँ कि हौसला मेरा बढ़ाने लगी वहशत मेरी, हौसला मेरा बढ़ाने लगी वहशत मेरी, अब तो मिल जाएगी खोई हुई जन्नत मेरी, अब तो मिल जाएगी खोई हुई जन्नत मेरी। एक कागज़ पे मेरा नाम पता भी लिख लो, एक कागज़ पे मेरा नाम पता भी लिख लो, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए ज़रूरत मेरी। एक कागज़ पे मेरा नाम पता भी लिख लो, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए ज़रूरत मेरी। ये भी शेर सुनिए कि नूर हूँ नूर मोहब्बत के खरे रंगों का, नूर हूँ नूर मोहब्बत के खरे रंगों का, दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी, दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी। ये शेर बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में, दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में, शाम के बाद उलझती है तबीयत मेरी, दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में, शाम के बाद उलझती है तबीयत मेरी, शाम के बाद उलझती है तबीयत मेरी। ये ज़मीं तुमको बताएगी कि कब कब मुझ पर, ये ज़मीं तुमको बताएगी कि कब कब मुझ पर, आफतें आई हैं टूटी नहीं हिम्मत मेरी, आफतें आई हैं टूटी नहीं हिम्मत मेरी। ये शेर ख़ास तौर से अर्ज़ करता हूँ कि जिसकी चाहत में मोहब्बत के सलीके सीखे, जिसकी चाहत में मोहब्बत के सलीके सीखे, उसने तरकीब से बदली हर एक आदत मेरी। ये आखिरी शेर कि ऐसे इस शहर में कुछ लोग हैं बेकीमत से, ऐसे इस शहर में कुछ लोग हैं बेकीमत से, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी, ऐसे इस शहर में कुछ लोग हैं बेकीमत से, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी। दूसरी गज़ल के चंद शेर अर्ज़ करता हूँ, आपको पसंद आएंगे। ख़ास तौर से जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद बखुद बनने लगे लोग सहारा मेरा, खुद बखुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। एक आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आप समझें तो किसी रोज़ इशारा मेरा, आप समझें तो किसी रोज़ इशारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। जाने किस किस की दुआएं मेरे काम आई हैं, जाने किस किस की दुआएं मेरे काम आई हैं, वरना तकदीर में लिखा था खसारा मेरा, वरना तकदीर में लिखा था खसारा मेरा। मौजो गिरदाब भी दुश्मन हैं मगर छोटे हैं, मौजो गिरदाब भी दुश्मन हैं मगर छोटे हैं, दुश्मन ख़ास है दरिया का किनारा मेरा। ये शेर बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत आलिया में कि तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तशनगी पर तो अभी तक है इजारा मेरा, तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तशनगी पर तो अभी तक है इजारा मेरा। आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ कि कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद बखुद बनने लगे लोग सहारा मेरा।

आज का ये प्रोग्राम आईना यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। तो चलिए अब आप हमारा पता नोट कीजिए। उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। अब आपके रेडियो दोस्त जावेद को दीजिए इजाज़त। आदाब।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित मखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा भाग।

0: ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई थी। प्लेटफॉर्म के शोर के साथ ट्रेन से उतरने वालों और ट्रेन पर चढ़ने वालों की हड़बड़ाहट भरी अजीबोगरीब आवाजें हो रही थी। कोई बोल रहा था,
1: बेगम इटारसी स्टेशन आ गया, जल्दी समेटो सामान, चढ़ने वालों की भीड़ ज्यादा दिख रही है, जल्दी करो।
2: एक महिला कह रही थी,
0: अरे आप लोग हम औरतों का भी ख्याल नहीं रखते हैं भाई साहब, अरे हमें भी तो इसी ट्रेन में चढ़ना है। अरे लाल शर्ट वाले भाई साहब, आप तो या तो भीतर जाइए या नीचे उतरिए, हिमालय की तरह अटल तो खड़े ना रहिए। कामिनी ये सूट केस पकड़, मेरी चिंता मत कर, मैं भी चढ़ जाऊंगी, एनसीसी की कैडेट रही हूँ। हाँ एक नौजवान कह रहा था,
1: आप कब से गेट पर खड़े हैं भाई, किसी का इंतजार कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर उतर कर कीजिए ना, हमें तो ट्रेन से उतर जाने दीजिए।
2: एक लड़की कह रही थी,
0: अरे आप लोग झटपट उतरिए ना, देखिए कितने लोग चढ़ने को तैयार हैं। एक दुबला पतला मरियल सा वृद्ध कह रहा था,
1: बहन जी हम दुबले पतलों का भी कुछ ख्याल कीजिए, आप दरवाजे को रोके यूं ही खड़ी रहीं तो कोई मच्छर भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा।
3: इतनी भीड़ के बावजूद मेरे कंपार्टमेंट में ये 4 सीटें खाली पड़ी हैं। खैर, खाली रहे या भर जाए मेरी बला से, गाड़ी 5-7 मिनट में चलने ही वाली है, तब तक खिड़की से प्लेटफॉर्म का नजारा ही कर लेता हूँ, सफर की बोरियत भी कुछ कम हो जाएगी। अरे ये राय बहादुर मोहनलाल भार्गव यहाँ

0: प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं? इनके साथ तो कुछ सामान भी है, निश्चित ही ये भी इसी गाड़ी से सफर करेंगे। बाप रे, कहीं इसी डिब्बे में पहुंच गए तो सफर बर्बाद हो जाएगा। इनकी उपदेश भरी बातों और बड़ी बड़ी डींगों को झेलना आसान काम नहीं है। किसी को भी प्रशंसा के पहाड़ के शिखर पर चढ़ा देना इनके बाएं हाथ का खेल है।
1: भाई साहब, आपने इस खिड़की का रिजर्वेशन ना कराया हो तो मेहरबानी कर अब यहाँ से दूर जाइए। बाहर की कुछ हवा का आनंद हमें भी तो लेने दीजिए।
0: वेरी सॉरी, मैं तो यूं ही किसी वेंडर को देख रहा था। अपनी सीट पर चला जाता हूँ, आप जितनी चाहे हवा खाइए। हवा पर फिलहाल कोई टैक्स तो नहीं है।
2: अरे रामाधर, इधर ले आओ सामान। हाँ हाँ, यहाँ भाई, इसी कंपार्टमेंट में। 46 से 49 तक की सीटें अपनी हैं। हाँ, और लड़कियों को भी यहीं बुला लाओ। हाँ हाँ भाई, अभी तो सामान ऊपर वाली बर्थ पर रख दो, लड़कियाँ आएंगी तो खुद ही अपनी सुविधा अनुसार अरेंज कर लेंगी।
0: अरे भार्गव जी, आप?
2: अरे वर्मा जी। अरे वाह भाई, कैसे हैं आप?
0: मेरे अहोभाग्य की इसी एक महीने में आपके ये चौथी बार दर्शन हो रहे हैं। भाई ऐसा लगता है अब तो मुझे अखबार में अपना राशिफल देखकर ही सफर पर निकलने के बारे में सोचना होगा।
2: क्या मतलब वर्मा जी? भाई कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जिस दिन के राशिफल में मुझसे भेंट होने की संभावना दिखाई गई होगी उस दिन के सफर को आप टाल देंगे?
0: नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। आप जैसे सज्जन पुरुष का संग मिल जाए तो सफर बड़ा खुशनुमा हो जाता है।
2: भाई वर्मा जी, आपकी बात आप जाने, मुझे तो जब भी आपका साथ मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। भाई आप जैसे महान लेखक की संगत बिरले लोगों को ही मिलती है। भाई मेरे मन में आपके प्रति अपार श्रद्धा है। वर्मा जी, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए बस कम ही है। आपने इतनी कम उम्र में जितना लिखा है उतना कम ही सरस्वती पुत्र लिख पाते हैं। भाई मेरे घर में तो बस आपका ही राज है।
0: मेरा राज?
2: जी।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
2: वर्मा जी, आपके द्वारा लिखी गई सारी किताबें मेरे घर में हैं। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर दिन आपकी किताब पढ़ता मिल जाएगा। आपने लिखा ही कुछ ऐसा है कि किताब पढ़ना शुरू कर दो तो खत्म करके ही छोड़ पाते हैं। मेरे परिवार की युवा पीढ़ी तो आपके साहित्य की दीवानी है।
0: अच्छा
2: भाई, आपकी नई किताब पहले मेरी बेटियां पढ़ती हैं, फिर कहीं हम मियां बीवी के हाथ पड़ती है।
0: भार्गव जी,
2: जी
0: आपने तो मुझे सातवें आसमान पर चढ़ा दिया है। अरे भाई, कुल जमा मेरे 5 नॉवेल और 7 कहानी संग्रह ही तो छपे हैं अभी। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, काफी कुछ लिखना है। आप देखिए भाई, आप यूं ही प्रशंसा की पुष्प वर्षा करते रहे तो मैं भविष्य में शायद ही कुछ अच्छा लिख पाऊं। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जरूरत से ज्यादा प्रशंसा भी लेखक की दुश्मन होती है।
2: भाई आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि प्रशंसा लेखक के लिए टॉनिक का काम करती है। जब भी आपसे मुलाकात होती है मैं आपको यही टॉनिक देने की कोशिश करता हूँ भाई।
0: आप ठहरे राय बहादुर, भला आपकी राय के सामने सिर झुकाने से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ।
2: अरे भाई आ गई तुम दोनों
1: जी।
2: देखो उधर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाओ।
1: ठीक है।
2: रामधर भाई, अब तुम सारा सामान ठीक से जमा कर उधर वो उस सीट पर बैठ जाओ। हाँ वहाँ।
1: चलो दीदी भाई, चलो।
2: तुम दोनों कहाँ रह गई थी?
1: मेरी एक सहेली भी अपने परिवार के साथ इसी डिब्बे में सफर कर रही है।
2: अच्छा,
1: हम दोनों उसी से बातचीत में लग गई थी।
2: अच्छा अच्छा।
3: गोरी लड़की के हाथ में अपना ताजा उपन्यास बिखरी दुनिया देखकर लेखक हरिकिशन वर्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। नई जनरेशन में भी वो इतने पॉपुलर हैं ये जानकर गर्व से भर उठे। भार्गव जी का कहना उन्हें तो ठीक लग रहा था कि उनके परिवार में वर्मा जी का राज है।
4: वो पर वो दीदी, वो कैसा सूट पहनकर आई थी, तो कलर मुझे बिल्कुल।
0: ये सांवली लड़की अधिक मॉडर्न और चंचल है। कॉलेज की

0: दुनिया में लड़कियों को अपनी धोती अकड़ का भोंडा प्रदर्शन करने की जो ललक पैदा हो जाती है ना, वो इस सांवली लड़की में खूब भरी हुई है। दूसरी लड़की जबकि अपेक्षाकृत अधिक समझदार और अंतर्मुखी दिखती है।
1: अरे नहीं दीदी, अब घर के बाहर निकल रही है तो थोड़ा पंठन के तो निकलना चाहिए। अब ऐसे क्या बाइयों जैसे उठकर आ गई, आप क्या हंस रही हो दीदी?
2: वर्मा जी के हाव भाव ये जाहिर कर रहे थे कि फिलहाल वे इन लड़कियों की अप्रत्याशित उपस्थिति को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजी मासिक पत्रिका करंट हिस्ट्री को पढ़ने में तल्लीन हो जाने का स्वांग कर रहे थे।
1: क्या दीदी?
3: वे उन दोनों लड़कियों को इस बात का एहसास कराना चाहते थे कि कंपार्टमेंट में लड़कियों के आगमन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा।

0: गीली हो गई हैं। रामधर, इन्हें अपने गमछे से अच्छी तरह पोंछकर पेटी में रख दे और मेरे चमड़े वाले जूते निकाल दे। अरे समझ गया ना क्या कर रहा है?
1: रामधर समझ गया था। उसने चप्पलें लेकर चमड़े वाले जूते निकाल कर दे दिए थे।
2: वर्मा जी को पत्रिका पढ़ने का स्वांग रास नहीं आ रहा था। वे चोर नजर से बार बार उन लड़कियों को देख लिया करते थे। वर्मा जी इस नतीजे पर जा पहुंचे थे कि उस सांवली लड़की का अकड़ भरा रवैया उस गोरी लड़की को थोड़ा सा भी नहीं भा रहा था। वो तिलमिला उठती थी।
3: अरे ये क्या, वो गोरी लड़की तो मेरे उपन्यास बिखरती दुनिया का पन्ना खोलकर बहुत सावधानी के साथ उस अकड़बाज लड़की को आंखों के इशारे से दिखा रही है।
1: पुस्तक के उस पन्ने पर वर्मा जी का बड़ा सा चित्र जो छपा था, कमाल हो गया। वर्मा जी का चित्र देखकर उस सांवली लड़की के हाव भाव एकदम बदल गए। वो संयमित हो गई थी। अब वो तेजी से पीछे छूटती आ रही वृक्ष पंक्तियों को खिड़की से देखने लगती थी। उसके फूहड़पन पर अब मर्यादा ने पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। राय बहादुर का ध्यान वर्मा जी पर केंद्रित हो गया था।
4: अरे भाई वर्मा जी, अरे ये बताइए कि लिखने पढ़ने के अलावा आप लेखकों का दीन दुनिया से भी कोई रिश्ता नाता रहता है या नहीं? भाई आप तो इस समय इस पत्रिका में ऐसे खोए हैं जैसे इसके बाहर दुनिया में कहीं भी आनंद का वजूद ही नहीं है।
3: राय बहादुर जी, लेखक तो अपनी जिंदगी में एक नहीं कई रिश्ते एक साथ निभाते हैं और बखूबी निभाते हैं। इन रिश्तों से मिलने वाले रस को समाज में बांटने के लिए ही तो वे साहित्य का सृजन करते हैं।
4: भाई बहुत खुशी की बात है कि आप भी मेरी ही तरह दुनियादारी में विश्वास करने वाले शख्स हैं।
3: बिल्कुल।
4: वर्मा जी
3: जी,
4: भाई थोड़ी देर के लिए इस पत्रिका को एक तरफ रखकर इनसे परिचय कीजिए। देखिए ये दोनों मेरी बेटियां हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: वो जो एन खिड़की के पास बैठी है ना,
3: हाँ।
4: वो मेरी छोटी बेटी निर्मला है।
0: नमस्ते।
4: गर्ल्स कॉलेज में तीसरे वर्ष में पढ़ती है।
3: नमस्ते नमस्ते।
4: और ये जो दूसरी लड़की है ना, ये मेरी बड़ी बेटी है।
1: इसी बीच फलवाला जोर से चीख उठा,
5: ताजा अनार, बहुत बढ़िया, मीठे और बेदाना, खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। अनार, ताजा अनार।
0: जी मुझे कमला कहते हैं।
3: आप दोनों बहनों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। समझ लीजिए मेरी तो ये यात्रा सार्थक हो गई। भगवान सभी को आप जैसे सहयात्री दें।
0: यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। मैंने तो सुना था राइटर लोग बड़े रूखे रूखे और नक चढ़े होते हैं, एकदम बेरस बेमुरव्वत।
4: जी, ये बातों नहीं कमला है ना, ये महात्मा मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ती है।
3: अच्छा।
4: हाँ, और ऑक्सफोर्ड जाने के लिए आसमान सिर पर उठाए हुए कहती है बस आगे पढ़ेगी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, नहीं तो घर बना और ये बली।
3: ये जमाना तो इन्हीं लड़कियों की ऊंची उड़ान का जमाना है।
4: हाँ भाई,
3: इनकी उड़ान को रोकना समय के तकाजों के साथ नाइंसाफी होगी। वैसे भी आपके पास भला कमी भी किस बात की है, कमला जी को भी अपनी मनमानी कर लेने दीजिए ना। अरे वो भी क्या याद रखेंगी कि आप जैसा उदार मना पिता मिला था क्यों।
0: वर्मा जी, आप बार बार उस पत्रिका की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या है उस पत्रिका में कि उसको छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा? जरा बताइए तो सही, ये पत्रिका कौन सी है?

0: ये कोई नॉवेल या स्टोरी कलेक्शन नहीं है निर्मला जी, ये तो हिस्ट्री के रूखे सूखे विषय की अंग्रेजी की एक मासिक पत्रिका है। लीजिए, आप भी देख लीजिए।
1: दीजिए, करंट हिस्ट्री लगती तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो आप इसे अपने पास रखिए, पढ़ने का मूड हुआ तो आपसे मांग लूंगी। ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच।
0: डियर वर्मा, बातचीत का ये सिलसिला तो यहीं थम गया। यदि बातचीत का कोई दूसरा सिरा न मिला तो राय बहादुर मोहनलाल भार्गव का प्रशंसा पुराण फिर से सुनना पड़ेगा, जिसको झेलते झेलते सफर का सारा आनंद ही किरकिरा हो जाएगा।
2: किस सोच में डूब गए लेखक महोदय? कहानी का कोई नया प्लॉट दिमाग में कुलाचे भरने लगा है क्या?
0: ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप लोग आज कहाँ जा रहे हैं?
2: मैं जबलपुर जा रही हूँ, वहाँ मेरी एक मित्र की शादी है।
1: और मैं कलकत्ता जाऊंगी, कलकत्ता में MCC का मैच देखकर शांति निकेतन चली जाऊंगी और पापा सतना में उतर जाएंगे।
0: आप अकेली जाएंगी? आश्चर्य है।
3: अरे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है वर्मा जी, क्या हमारे देश में अकेले लड़की को यूं लंबा सफर करने का अधिकार नहीं है?
0: नहीं भाई, मतलब ऐसा।
3: भाई देखिए लेखक महोदय, भारत की लड़कियां अब पहले जैसी मोम की गुड़िया नहीं रह गई हैं। उन्होंने भी हर तरह के हालात का सामना करना बखूबी सीख लिया है।
0: नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं।
2: निर्मला द्वारा अकेली आधा हिंदुस्तान नापने पर कम से कम आपको तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए वर्मा जी।
0: मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहिए ना।
2: आपने अपने उपन्यास बिखरती दुनिया की लैला रानी को उसके कॉलेज के दोस्त के साथ अकेले लंदन भेजने में कोई संकोच नहीं किया है, फिर निर्मला के अकेली लंबी यात्रा पर निकलने पर ये आश्चर्य कैसा?
3: संगमरमर के बने महल में भी किसी कोने में मिट्टी के चूल्हे होते हैं कम्मू, इसमें वर्मा जी का भला क्या दोष?
2: आप भी पापा कहाँ की बात ले बैठे, वर्मा जी ने तो बात की बात में यूं ही टिप्पणी कर दी थी, हमें उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था।
1: पापा आप भी कभी कभी अपने ठेठ पुराने और बिगड़े स्वभाव के वशीभूत होकर ऐसी चुभने वाली बातें कर डालते हैं। वेरी सॉरी, विचारों की इस अंधी खो से आप आखिर कब बाहर निकलेंगे पापा?
3: क्या कहा?
2: बस निर्मला बहुत हो गया, डोंट मेक सच कमेंट्स अगेंस्ट अवर फादर, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस। वेरी सॉरी निर्मला, यू शुड बी सॉरी।
4: स्पष्ट है कि न तो निर्मला को अपने पिता की चुटकी पसंद आई थी और न ही कमला उसको कोई ध्यान देने की चीज मान रही थी।
5: दूसरी तरफ लेखक वर्मा के मौन, संकोच भरे हाव भाव और गम खाकर बैठे रहने में राय बहादुर की अफसरी उजड़ता को प्रोत्साहन मिला था। वे तो वर्मा जी को आहत और अपमानित करने के ऐसे अवसरों की तलाश में ही रहते थे। सुंदर अवसर जानते तब अपनी सहिष्णुता, सुधार प्रियता और सामाजिक क्रांतिवादिता का बखान करने से न चूके।
3: वर्मा जी, मेरा आदर्श सामाजिक सुधार नहीं, सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति?
0: जी जी।
3: मेरे अंग्रेज और ईसाई दोस्त मेरे घर आते हैं, खाना खाते हैं, हमारे साथ एक ही टेबल पर। संतति नियोजन और सेक्स हाइजीन की किताबें मैंने स्वयं खरीद कर इन लड़कियों को ला कर दी हैं। वर्मा जी, निर्मला अपनी तस्वीरों के एल्बम सजाते ही मुझे दिखाए बिना नहीं रहती। आप जानते हैं जवान पढ़ी लिखी लड़कियों के एल्बम में क्या क्या खुराफाते नहीं होती।
0: वो तो
1: बस कीजिए ना पापा।
3: मैं जात पात नहीं मानता वर्मा जी, मैं अपनी भतीजी की शादी पंजाब में एक सिविलियन भोलानाथ सिंह के साथ कर चुका हूँ।
0: अच्छा
3: जी, आखिर लड़कियों का दूल्हा बेमौसम ओलों की तरह बरसाया क्यों जाए? भाई मैं तो औरतों की व्यक्तिगत आजादी का खूब कायल हूँ।
0: जी जी।
3: कमला और निर्मला के पत्राचार ना जाने कहाँ कहाँ होते हैं, शायद निर्मला शांति निकेतन जाकर अपना दूल्हा खुद चुनाए।
0: जी जी।
5: इस संवेद हंसी में निर्मला की हंसी शामिल नहीं थी। अपने पापा की खुल्लम खुल्ला बात पर झेपने से फुर्सत मिलती तो हंसती बेचारी। उस समय राय बहादुर के बुढ़ाए चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष के ऐसे भाव फैले हुए थे जैसे बातों ही बातों में उन्होंने कोई किला फतह कर लिया है। अनुकूल अवसर देखा तो वे अपनी बघारते चले गए।
3: सच बात तो ये है वर्मा जी,
0: जी,
3: कि आप लोग किताबों में लिखते हैं और हम लोग उस पर अमल करते हैं। नाजुक ख्याली या आजादी को जबान या कलम पर उतारना एक बात है, मगर उसे अपने जिंदगी पर उतार कर जिल्लतें, परेशानियां और अपमान आमंत्रित करना बिल्कुल दूसरी बात। सच मानिए वर्मा जी, राम न हो तो रामायण किसे कहें?

0: इस तरह राय बहादुर की मीठी जुबान, सभ्यतापूर्ण व्यवहार और लेखक वर्मा जी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव ने वर्मा जी के आसपास अवज्ञा का एक घेरा बना दिया था। वर्मा जी भीतर ही भीतर राय बहादुर की मीठी जुबान के तीखे वार से आहत थे। कोई वश न चला तो वे आत्मनिरीक्षण में संलग्न हो गए। राय बहादुर की बातों से वर्मा जी को मालूम हो चुका था कि उनकी दोनों लड़कियां कुंवारी हैं। उन्होंने डरते डरते राय बहादुर से कह ही दिया,
1: जवानी की अल्हड़ता से इनकार तो नहीं किया जा सकता। आखिर हम नौजवानों को आप जैसे बुजुर्गों से ऐसी बातें पूछ ही लेनी चाहिए, जिससे पता चल जाए कि कहीं हम गुमराह तो नहीं हो चले।
0: दूसरी तरफ राय बहादुर का हौसला अपनी बुलंदी पर था। वे किसी की सलाह पर ना तो कान देने को तैयार थे और ना ही तब किसी प्रकार का समझौता करने के वे मूड में थे।
2: वर्मा जी,
1: जी
2: मैं अपनी लड़कियों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं करता। बाल डांस में, सिनेमा और अफसरी मजमों में ये हर जगह जाती हैं। पार्टियों में अपने मनमाने टेबल पर मनचाहे साथियों के साथ बैठती हैं।
1: अच्छा,
2: आखिर एजुकेशन के मायने क्या है वर्मा जी? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, वो सब तो यही हैं। इस जमाने की पढ़ी लिखी लड़कियां, इनका मुस्कुराना, इनका हंसना, मिलना जुलना, यही तो समाज की आगे की परंपरा बनेगी।
1: जी जी।
3: लेखक महोदय, आप तो कहीं खो गए। कहीं कोई परेशानी हो तो हम लोगों के साथ बांटिए ना।
4: हाँ हाँ, परेशानी कह डालने से कम हो जाती है। दीदी ठीक ही कह रही हैं। अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर कर लीजिए।
1: नहीं नहीं, परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तो ईश्वर से कुछ मांग रहा था। अब जब भी मैं उससे कुछ मांगता हूँ वो मुझे निराश नहीं करता, तो अब मांगता हूँ तो तमंचा तो पकड़ा ही देता है।
4: जरा हमें भी तो बताइए, आपने भगवान से क्या मांगा है?
1: देखिए, ईश्वर के सामने रखी गई मांग को हमारे यहाँ गोपनीय रखने की परंपरा है। भाई, गोपनीयता भंग होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है।
4: कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना निजी मामला है। हम तो यूं ही आपके मन को परखना चाहती थी।
1: अच्छा।
4: भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, तथास्तु।
1: धन्यवाद।
5: गोपनीयता तो मात्र एक बहाना था। दरअसल वर्मा जी बड़बोले पर उपदेशक राय बहादुर के ऊपर से आडंबर की चादर उघाड़ने की कोई नायाब कल्पना ईश्वर से उधार मांग रहे थे। लेखक नाम का प्राणी होता ही ऐसा है कि थोथे उपदेशों और शेखी बघारने की मनोवृत्ति पर प्रहार किए बिना उसको चैन नहीं मिलता। वर्मा जी भी ऐसे ही लेखकों में से हैं। वर्मा जी अपने मिशन में सफल हों, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।
4: लेखक महोदय, बुजुर्ग कहते हैं कि पेट भरा हो तो ईश्वर का स्मरण ठीक से हो जाता है। तो लीजिए ये चीकू खाइए, एकदम ताजे हैं। इटारसी स्टेशन से ही खरीद कर लाए हैं। लीजिए।
1: नहीं नहीं बस।
4: अरे अरे लीजिए ना, असंकोच मत कीजिए, लीजिए।
3: आप तो बड़ी बहन की मानिए और संभालिए ये तश्तरी।
1: अरे
3: मैंने सेब छील कर इसमें रख दिए हैं, पहले इन्हें खाइए, फिर निर्मला के चीकू पर हाथ साफ कीजिएगा।
1: पहला ऑफर तो निर्मला जी का था, वो आपसे छोटी भी हैं। उनका मान रखते हुए पहले उन्हीं के चीकू का भोग लगाता हूँ। ये वाह, गजब के मीठे।
4: वाह, क्या खूब कही है, भोग।
1: क्यों?
4: लेखक जी, आप तो स्वयं ही भगवान हो गए। भोग तो भगवान को ही लगाया जाता है। ईश्वर जी महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
5: इस समय लेखक वर्मा जी नाना प्रकार के भावों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसे हुए थे। दोनों लड़कियों की उपस्थिति के कारण चाहे वे धीर गंभीर बने हुए हों, मगर मुस्कुराना ही नहीं, खिलखिलाकर हंसना भी उन्हें खूब आता था। यद्यपि राय बहादुर द्वारा चाहे अनचाहे किए गए अपमान से वे बुरी तरह से आहत थे, लेकिन फलों की मिठास का आनंद लेने से इनकार न करके वे राय बहादुर से मिले अपमान को भी स्वादिष्ट बना देना चाहते थे।
4: क्या दीदी?
3: देख तो निर्मला, आगे एक बोगदा आ रहा है।
6: हाँ दीदी, हाँ।

0: में इस बोगदा में प्रवेश करेगी।
1: सच्ची?
0: और मजा आएगा।
1: हाँ दीदी।
0: पता है, पूरी ट्रेन अंधेरे में गुम हो जाती है।
1: सच्ची?
0: और कंपार्टमेंट में तो कोई नजर ही नहीं आता। खूब अंधेरा और सन्नाटा बस।
2: अरे निर्मला देखो, लो ट्रेन बोगदा में प्रवेश कर चुकी है।
1: बहुत डर लग रहा है।
3: कमला और निर्मला के लिए ये बोगदा मात्र एक आनंद की चीज थी, लेकिन वर्मा जी के लिए तो जैसे इस बोगदे ने विजय का द्वार ही खोल दिया था। आइए वर्मा जी की जुबानी ही सुने कि बोगदे से गुजरते समय ट्रेन के उस अंधेरे कंपार्टमेंट में क्या घटा।
4: राय बहादुर द्वारा दिए गए अपमान से मुझमें एक बेकाबू उद्दंडता का भाव जाग उठा था। जो ही बोगदे का अंधेरा आया और मेरे डिब्बे में बिजली के अभाव में एक दूसरे की शक्लें दिखनी बंद हुई, त्यों ही मैंने बोगदे के बीचों बीच पहुँच कर करंट हिस्ट्री पत्रिका को उठाकर उसे जोर से चूमा।

0: बोगदे से जूं ही गाड़ी बाहर आई और स्टेशन आने को हुआ, यूं ही बरसता सावन बैसाख हो गया। पहले जहां कंपार्टमेंट में रुमानियत और हंसती मुस्कुराती सावन की झड़ी लगी हुई थी, अब वहां क्रोध, घृणा और शिकायत से भरा ग्रीष्म का आग की लपटें बिखेरता मौसम पसर गया था।
1: कमला निर्मला को क्रोध से घूर रही थी तो निर्मला कमला को घृणा से निहार रही थी। सारे कंपार्टमेंट में सन्नाटा फैल गया था। राय बहादुर लाल चेहरा किए बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों को भांप रहे थे कि ट्रेन के बोगदे से गुजरते समय वो बेशर्मी उन दोनों में से किसकी भागीदारी में हुई।
0: उस समय दो बेटियों और पिता के बीच शर्मिंदगी और अविश्वास का एक त्रिकोण बन गया था।
2: लो भाई हरिकिशन वर्मा, तुम्हारा तो स्टेशन आ गया। उतर लो प्यारे, ट्रेन जल्दी तो मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, नीचे उतर ही जाता हूँ।
0: लेखक हरिकिशन वर्मा सारे घटना चक्र को पीछे छोड़ ट्रेन से नीचे उतर पड़े।
1: उतरते समय राय बहादुर और उन दोनों लड़कियों में से कोई भी उनसे नहीं बोला। तब राय बहादुर का लाल चेहरा बता रहा था कि आधुनिकता और उदारता की बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाला राय बहादुर मोहनलाल भार्गव पराजित हो चुका है।
0: उस कंपार्टमेंट में केवल एक पिता शर्मिंदगी के बोझ तले दबा चुपचाप बैठा है। शेष कहानी वर्मा जी से ही सुने तो ठीक रहेगा।
2: मैं करंट हिस्ट्री वाली अपनी पत्रिका उसी कंपार्टमेंट में छोड़ आया। वो वहीं छूटने की सच्ची हकदार भी थी। इस महाप्रलय के अंतिम अध्याय में चूंकि उनका भी 50% हिस्सा था, मैंने उस पर पेंसिल से राय बहादुर के प्रवचन का एक वाक्य उद्धृत कर दिया, जो ये था।
3: नाजुक ख्याली या आजादी को जबान या कलम पर उतारना एक बात है, मगर उसे अपनी जिंदगी पर उतार कर जिल्लतें, परेशानी और अपना अपमान आमंत्रित करना बिल्कुल दूसरी बात।
2: अलविदा, अलविदा दोहरे चरित्रधारी राय बहादुर मोहनलाल भार्गव, अलविदा, अलविदा।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा भाग। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर बाद।

0: मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 22 सितंबर को बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल, पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस साल 20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर लागू होगा। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की 5वीं बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में भवन विकास निगम द्वारा कराए जा रहे बड़े भवन निर्माण कार्यों को समय सीमा से पहले पूरा करें। रीवा में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि रीवा में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गणेश उत्सव के दौरान निकलने वाले चल समारोह और प्रतिमाओं के विसर्जन संबंधित तैयारी की समीक्षा बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति है।

आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका लाला। दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की, और जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। और दोस्तों, साथ ही आज है विश्व अल्जाइमर दिवस भी, यानी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। हम जानेंगे कि अल्जाइमर्स क्या है, इसके बारे में जागरूकता क्यों ज़रूरी है, और परिवार तथा समाज किस तरह अल्जाइमर से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय होगा रीडिंग हैबिट्स और युवाओं का विकास, और कार्यक्रम में आपके लिए होंगे कुछ मधुर फिल्मी गीत की प्रस्तुतियां, और अंत में होगी हमारी विशेष रोजगार सूचना। तो दोस्तों, क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत की जाए इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, आज 21 सितंबर है और आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर के तीसरे मंगलवार को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बाद में वर्ष 2001 में

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थायी तारीख घोषित की। तब से हर वर्ष 21 सितंबर को यह दिवस दुनिया भर में शांति, अहिंसा और संघर्ष विराम के संदेश के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, शांति किसी भी समाज और राष्ट्र

भेदों का समाधान संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से करना ही शांति की भावना को मजबूत करता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि शांति के लिए प्रयास केवल सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति शांति की संस्कृति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। शांति की शुरुआत हमारे विचारों और हमारे व्यवहार से भी होती है। दोस्तों, शांति का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसा सोचें, बल्कि शांति का अर्थ यह है कि अलग अलग विचारों और मतों के बावजूद हम एक दूसरे के सम्मान और अधिकारों को स्वीकार करें। आज का यह दिन हमें दुनिया में शांति, अहिंसा और आपसी सहयोग के महत्व पर विचार करने का एक अवसर देता है। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का संदेश ये है, या यूं कहें कि वर्ष 2026 के शांति दिवस की थीम है इन्वेस्टिंग इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरीडे। दोस्तों, ये संदेश हमें बताता है कि शांति के लिए प्रयास किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। शांति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आइए हम शांति के महत्व को समझें और अपने जीवन में संवाद, सहयोग और अहिंसा के मूल्यों को महत्व दें, क्योंकि एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण बड़े प्रयासों के साथ साथ छोटे छोटे शांतिपूर्ण कदमों से भी होता है। शांति एक विचार नहीं बल्कि निरंतर प्रयास की एक प्रक्रिया है। और इसी संदेश के साथ आइए अब सुनते हैं ये मधुर गीत फिल्म जब तक है जान से।

दोस्तों, आज 31 सितंबर को ही 21 सितंबर को ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे यानी विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया के बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हुई थी। दोस्तों, अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से मेमोरी यानी स्मृति और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हम कभी कभी कई चीज़ें भूल जाते हैं, कभी चाबी रख के भूल जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति का नाम कुछ देर के लिए याद नहीं आता। लेकिन अल्जाइमर्स में मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज समय के साथ साथ व्यक्ति के दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं, इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अल्जाइमर्स केवल उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता जिससे यह बीमारी होती है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और केयर गिवर्स यानी देखभाल करने वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में परिवार का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के बार बार एक ही बात पूछने पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उनके साथ पेशेंस यानी धैर्य रखना चाहिए, उनसे प्यार और सम्मान से बात करनी चाहिए, और अगर मेमोरी या बिहेवियर में लगातार ऐसे बदलाव दिखाई दें जो हमारी डेली लाइफ को प्रभावित कर रहे हों, तो मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हमें यह भी याद दिलाता है कि डिमेंशिया से जुड़े लोगों के प्रति सोशल स्टिग्मा और गलत धारणाओं को कम करना कितना ज़रूरी है। 2026 में अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल की कैंपेन में डायग्नोसिस और डिमेंशिया केयर के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है, और इस वर्ष की वर्ल्ड अल्जाइमर्स रिपोर्ट का फोकस क्लिनिकल ट्रायल्स पर है। तो दोस्तों, आज का हमारा संदेश बहुत सरल है। जागरूक बनिए, संवेदनशील बनिए और अपने परिवार के बुज़ुर्गों के प्रति थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए हमारी थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी केयर ही उनके दिन को बेहतर बना सकती है। और दोस्तों, अब समय हो गया है एक और मधुर गीत का, फिल्म कल हो ना हो से।

दोस्तों, अब समय है आज की हमारी विशेष चर्चा का, जिसका विषय है रीडिंग हैबिट्स और युवाओं का विकास। दोस्तों, किताबें केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। रीडिंग यानी पढ़ने की आदत व्यक्ति के ज्ञान, सोच, भाषा, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में युवाओं के पास जानकारी के अनेक माध्यम हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियोस और पॉडकास्ट। लेकिन इन सब के बीच पढ़ने की आदत का महत्व आज भी बना हुआ है। दोस्तों, जब हम किसी किताब, समाचार पत्र, लेख या अन्य उपयोगी सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो हमें केवल जानकारी नहीं मिलती, बल्कि किसी विषय को समझने और उस पर विचार करने का एक अवसर भी मिलता है। रीडिंग हैबिट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है ज्ञान का विस्तार। जब युवा अलग अलग विषयों पर पढ़ते हैं, तो उनका ज्ञान केवल अपनी पढ़ाई या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहता। वे इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, साहित्य, समाज, संस्कृति और दुनिया में हो रहे बदलावों के बारे में भी जान सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है दोस्तों, तो वो है भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास। नियमित रूप से पढ़ने से नए शब्दों और विचारों से परिचय होता है। इससे युवाओं को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद भी मिलती है। दोस्तों, पढ़ने की आदत सोचने की क्षमता को भी विकसित करती है। जब हम कोई किताब या लेख पढ़ते हैं, तो हम केवल लेखक की बात स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने मन में सवाल भी पैदा करते हैं, और यही सवाल युवाओं में जिज्ञासा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, रीडिंग हैबिट का संबंध व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी है। अलग अलग लोगों, समाजों और परिस्थितियों के बारे में पढ़ने से हमें दूसरों के विचारों और अनुभवों को समझने का भी अवसर मिलता है। इससे हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता आ सकती है। बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने से हमें विभिन्न व्यक्तियों के जीवन, उनके संघर्षों, अनुभवों और उपलब्धियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। लिटरेचर और नॉवेल्स हमें अलग अलग पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से मानवीय भावनाओं और सामाजिक जीवन को समझने का अवसर देते हैं। वहीं न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स पढ़ने से युवा अपने आसपास की दुनिया और समकालीन घटनाओं से जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में एक चुनौती यह भी है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक है, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के लिए समय और एकाग्रता कम होती जा रही है। इसलिए युवाओं के लिए केवल ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, बल्कि अच्छी और विश्वसनीय सामग्री को ध्यान से पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप रीडिंग हैबिट विकसित करना चाहते हैं, तो रोज़ केवल 15 से 20 मिनट पढ़ने से शुरुआत कीजिए। आप कोई पुस्तक, न्यूज़पेपर, मैगजीन या अपने रुचि के विषय से जुड़ा लेख भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, युवाओं का विकास केवल अकेडमिक सक्सेस तक सीमित नहीं है। ज्ञान, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और व्यापक दृष्टिकोण भी युवा विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, और रीडिंग इन सभी क्षेत्रों में योगदान दे सकती है। रीडिंग हमें केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विचारों से भी जोड़ती है, और जब युवा पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं और विचार करते हैं, तो उनका व्यक्तिगत विकास ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी समझ भी व्यापक होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा, रीडिंग हैबिट और युवाओं का विकास। उम्मीद है आज की चर्चा के बाद आप भी अपने दिन के कुछ समय निकालकर पढ़ाई ज़रूर करेंगे और कुछ नई किताबें ज़रूर पढ़ेंगे। और अब समय है खूबसूरत फिल्मी गीत का, फिल्म जब वी मेट से।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है रोजगार सूचना का। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2027 के लिए 480 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिविल

मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 और मुख्य परीक्षा 18 जून 2027 को होगी। तो दोस्तों, आज के युववाणी में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की और जाना कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संवाद, सहयोग और सम्मान की संस्कृति भी है। और हमारी चर्चा रही रीडिंग हैबिट्स और युवाओं के विकास के विषय पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का युववाणी कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और इन विषयों पर कुछ नई जानकारी भी ज़रूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे आपकी रेडियो साथी प्रियंका लाला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
7: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
8: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
7: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
7: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
7: सफर में
6: आपके साथ
7: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए वॉर फिल्म से विशाल ददलानी और बैनी दयाल की आवाज़ में ये गीत लिखा है कुमार ने और इसे संगीतबद्ध किया है विशाल एंड शेखर ने।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय है सुशासन और सेवा पर्व।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेवा संकल्प अभियान,
2: जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 बरस पूरे होने पर देश और प्रदेश में चलाया जा रहा है। राजनीति और शासन में जनसेवा का सफर जब एक लंबा रूप लेता है तो वह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रह जाती बल्कि देश के विकास का अध्याय बन जाती है। आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 बरस पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान की चर्चा कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ अतीत के आकलन का नहीं बल्कि भविष्य के रोडमैप का भी है। आज इसी सेवा संकल्प अभियान के विभिन्न पहलुओं, उपलब्धियों और कड़े फैसलों के पीछे की दृष्टि को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण मोहन झा जी। आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद अभिषेक।
4: धन्यवाद।
2: चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल गिरीश जी मेरा आपसे है, सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष की निरंतरता ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर होती है। इस पूरे कालखंड को और सेवा संकल्प अभियान को आप किस नजरिए से देखते हैं?
4: देखिए अभिषेक जी, यहाँ एक छोटा सा मैं फर्क करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो सार्वजनिक जीवन है वो तो 25 वर्ष से कहीं अधिक का है
2: जी।
4: हम जब बात कर रहे हैं तो वो 25 वर्ष सरकार के मुखिया के रूप में उनके कामकाज की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जब लगभग ढाई दशक की जो यात्रा है, ये ढाई दशक की यात्रा शासन की जिम्मेदारी संभालने की यात्रा है
2: जी।
4: और इसको मैं तीन चरणों में देखता हूँ। इसमें पहला चरण जो है वो गुजरात में प्रयोग का है, जहाँ पर कि ग्रामीण बिजली की व्यवस्था, कृषि महोत्सव, किसान की सरकार तक पहुँच, कन्या शिक्षा, शाला प्रवेशोत्सव, बालिका शिक्षा, स्वागत जैसा कार्यक्रम जो तकनीक पर आधारित संपर्क था लोगों का, और वहां पर एक तरीके से समुदाय को लक्षित करके काम हुआ
2: जी।
4: दूसरा चरण इसका राष्ट्रीय विस्तार का है
2: जी।
4: 2014 के बाद जनधन, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये इस तरीके के तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो पूरे देश को अपने दायरे में लेते हुए उन्होंने अपने काम को विस्तार दिया था
2: जी।
4: और फिर तीसरा चरण है जो सेचुरेशन और विकसित भारत का है। अब केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि इतने करोड़ लोगों को हमने लाभ दे दिया, इतने करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच बन गई। सवाल यह है कि पात्र लोगों में से कोई छूट न जाए, जो छूटा हुआ है उस तक पहुंच बनाना। इसलिए सेवा संकल्प अभियान को मैं केवल 25 वर्षों की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं इन 25 वर्षों के अनुभव को आगे की जिम्मेदारी से जोड़ने के अवसर के रूप में भी देखता हूँ
2: जी। अगला सवाल कृष्ण मोहन जी आपसे है मेरा, अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कई मायनों में ऐतिहासिक भी रहा है। इस पूरी यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री की राजनीतिक शैली की सबसे बड़ी खासियत आप क्या समझते हैं?
3: देखिए अभिषेक जी, जिस समय जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उस समय बहुत जो स्थितियां थी बड़ी विकराल रूप ले चुकी थी। गुजरात की जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था
2: जी,
3: कोई टिक नहीं पा रहा था। ऐसे दौर में लग रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति वहां सरवाइव कर पाएगा
2: जी।
3: सबसे बड़ी चुनौती वहां पे स्थायित्व को लेकर के थी, व्यक्ति के स्थायित्व की लेकर के थी।

0: भाजपा निश्चित रूप से वहां पावर में थी, लेकिन उसको और पावरफुल बनाने के लिए बहुत गहरे निर्णय की जरूरत थी। और जब राजनीतिक अस्थिरता होती है बहुत जिस ढंग से, वहां पे आप देखे होंगे कि राजनीतिक उठापटक का दौर था, पार्टी टूट रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में। और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी जो प्लानिंग का ही परिणाम था कि 2014 तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे, गुजरात देश में विकास के मॉडल के रूप में डेवलप हुआ। यदि इन 14 वर्षों में यदि आप देखते हैं कि 2001 से लेकर 14 तक का, तो गुजरात में जितनी नई इंडस्ट्रियां लगी, जो सिख यूनिट थी वो तेजी से बढ़ी, गुजरात का विकास बहुत तेजी से हुआ। और यही वजह है कि आज भी हम बात करते हैं तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात को आदर्श के रूप में देखते हैं। तो जब 2014 की बात मैं जब करता हूं, जब मोदी जी को कहा गया कि अब वो भारत की कमान संभालेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बड़े बड़े दिग्गज थे, क्योंकि मेरे को, मैंने लगातार 2012 से उन पे आर्टिकल लिखना शुरू किया था, तो मेरे को ध्यान है, मैंने दो किताबें भी लिखी
1: जी।
0: तो 2012 में जब उनको, उनके नेतृत्व में ये हुआ कि फिर से मुख्यमंत्री बने हो, और उसके बाद ये तय किया गया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हुआ कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इनको चुनाव की कमान सौंपी जाएगी, जो भाजपा के तमाम दिग्गज थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, जैसे राजनाथ सिंह तो खैर उनके साथ में थे, ऐसे में उनको आगे लाया गया। और आप देखिए कि उनके नेतृत्व का चमत्कार था कि 2014 में वो प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली 26 मई को, और उसके बाद से बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि यूपीए के शासनकाल में जिस ढंग से करप्शन लगातार उठ रहा था, रोज आए दिन कोई ना कोई करप्शन के मामले आते थे
1: जी,
0: और परिस्थितियां देश की बड़ी डावाडोल थी
1: जी।
0: अब इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि जब प्रधानमंत्री पहली बार कोई भाषण दे रहा हो लाल किले में, तो उसको ये बात करनी पड़ रही कि भैया हमें दिवाली की जरूरत नहीं है, लेकिन घरों में शौचालय की जरूरत है, बेटियों की सुरक्षा की जरूरत है, हमें दिवाले हम बाद में स्थापित करेंगे। और उन्होंने 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आप देखिए कि जो स्वच्छता अभियान भारत में, क्योंकि गिरीश जी ने बहुत करीब से राजनीति को देखी है, वो समझते हैं कि किसी लीडर की मास अपील कैसे हुआ करती थी। यदि लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, मुरारजी देसाई की बात करें, तो उनकी अपील को लोग स्वीकारते थे, लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया था कि किसी लीडर की अपील को स्वीकारना बड़ा कठिन था। लेकिन वैसे में आप देखिए समग्र स्वच्छता अभियान जब चला, तो जब आप सड़क में कचरा डालने के लिए बिल्कुल निसंकोच डाल देते थे, लेकिन जब अभियान जब चला तो आपको नैतिकता का पता चला और आप अपने दायित्वों का निर्वहन करना शुरू किए। तो उस देश की कमान एक प्रधानमंत्री के हाथ में आई जिसको स्वच्छता की बागडोर भी संभालना था, स्वच्छता की अपील भी करना था, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां क्या रही होंगी। और ऐसे दौर में उन्होंने कार्य संभाला और बखूबी निभाते हुए 2019 का चुनाव उन्हें जीता, और 2024 में भी हमने देखा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं जो स्वच्छता आंदोलन शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल से, वो एक ऐसा अभियान बनकर आया जो कि आज हम स्वच्छता को जी रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कई सरकारों को हमने देखा, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई सारी बातें की गई, लेकिन जिस रूप में आज वो अभियान घर घर का हिस्सा बन चुका है, उस रूप में पहले कभी नहीं हुआ। अगला सवाल गिरीश जी मेरा आपसे है, अब हम बात करें किसी भी देश की शासन प्रणाली की, तो शासन प्रणाली का जो तरीका होता है वो ही देश के सकारात्मक नतीजों को तय करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कार्य संस्कृति और प्रशासन के तरीकों में क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
2: अभिषेक जी, मोदी सरकार की जो शासन शैली है उसको समझने के लिए सिर्फ उनके द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं को ही देखना नहीं होगा
1: जी,
2: बल्कि सरकार काम कैसे करती है, सरकार को काम कैसे करना चाहिए, इसमें जो बदलाव आया है उसको देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला बदलाव जो मैं समझता हूँ वो है मिशन मोड पर काम करना
1: जी।
2: किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लें अगर, तो विभाग योजना बनाकर देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन समयबद्ध अभियान के रूप में उसको लेना, और जैसा अभी कृष्ण मोहन झा जी ने कहा भी कि स्वच्छ भारत इसका सबसे बड़ा और सबसे बिल्कुल सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले उदाहरणों में शामिल है
1: जी।
2: दूसरा है कि तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, इस समय टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के लिए कैसी सुविधाएं जुटा सकती है, तो हम अगर देखें तो जनधन, आधार, मोबाइल यानी पूरी जैम व्यवस्था और डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम है, सीधे सहायता लाभार्थियों तक पहुंचाना, उसके खातों तक पहुंचाना, और इसमें बिचौलियों और लीकेज को बीच में से हटाना
1: जी।
2: ये एक बड़ा काम हुआ है। तीसरा है कि उसका किसी भी काम की प्रत्यक्ष समीक्षा और मॉनिटरिंग, और मैं अगर पीछे थोड़ा सा जाएं तो इसकी जड़ गुजरात में उन्होंने अब मुख्यमंत्री रहते हुए स्वागत जैसे प्रयोग में दिखाई थी, जहां पर के लोगों की समस्याओं को सीधे सुना जाता था और तकनीक के जरिए वो नागरिकों से बात करते थे, समीक्षा करते थे। तो ये एक अलग तरीका है। आगे चल के उन्होंने प्रगति योजना केंद्र में लागू की। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो है कन्वर्जेंस। तमाम योजनाओं को एक साथ मिलाकर लोगों के हित के लिए काम करना। बहुत सारी योजनाएं समन्वित रूप से लोगों के जीवन को किस तरीके से सुविधाजनक बना सकती हैं, उनकी परेशानियों को कम कर सकती हैं। तो कुल मिला के ये, और पांचवा है कि सैचुरेशन, मतलब जो छूट गया है
1: जी।
2: उसको भी पहचान करके, उसको भी चिन्हित करके उस तक उन योजनाओं का लाभ उठाना। तो पहले सरकार की सफलता का पैमाना यह था कि उसने कितनी योजना बनाई और कितना पैसा खर्च किया, लेकिन अब उस पूरे विचार का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसका लाभ जमीन पर किसको और कितना मिला, ये फर्क है।
1: गिरीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब हम एक अच्छे सकारात्मक नेतृत्व की बात करते हैं तो उस नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण माना जाता है उसका संचार कौशल, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संचार कौशल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एक दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिनके संवाद को लोग समझते हैं और अनुपालन भी करते हैं, चाहे रेडियो पर मन की बात हो या आम सभाएं, उन्होंने संवाद का एक नया मॉडल पेश किया। जन संवाद की उनकी इस खास शैली को आप किस तरह से विश्लेषित करना चाहेंगे?
2: देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को अगर समझना है तो उनकी संवाद क्षमता को अलग करके देख ही नहीं सकते
1: जी।
2: वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है, और मन की बात जो रेडियो पे आता है वो इसका सबसे सशक्त उदाहरण है
1: जी।
2: अब उन्होंने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही क्षमता से उन्होंने रेडियो जैसे एक पुराने माध्यम को चुना
1: जी।
2: और उसके विषयों को, उसके प्रसार की क्षमता को डिजिटल युग से जोड़ते हुए उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने का काम किया
1: जी।
2: और न सिर्फ उन्होंने इसमें लोगों से संवाद किया, बल्कि सरकार की नीतियों के को भी लेकर भी बात की, उनको जागरूक करने का, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, खेल, परीक्षा, स्थानीय उत्पाद, संस्कृति, मतलब छोटे छोटे प्रयासों को उन्होंने उस माध्यम से उठाया है। दूसरे उनके संवाद की जो विशेषता है वो है कि जटिल से जटिल सरकारी विचार को छोटे और याद रख सकने वाले ऐसे सूत्रों में बदलना। वो सूत्रों में बात करते हैं, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोकल फॉर लोकल
1: जी,
2: एक पेड़ माँ के नाम, ये सूत्र हैं। ये सूत्र लोगों को सहजता से याद रह जाते हैं, तो वो सूत्र देकर लोगों को एक तरीके से अभियान में संलग्न करने की क्षमता रखते हैं। छोटी बात होती है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है।
1: आज का युवा, आज के दौर में युवाओं को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि युवा ही आने वाले देश का भविष्य है। अपने नेतृत्व से बहुत कुछ सीखते हैं ये युवा और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो 25 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा से देश के युवाओं के लिए क्या मुख्य सीख निकलती है?
2: देखिए अभिषेक जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं, उनकी सीख की बात करते हैं कि वो क्या सीखते हैं अपने नेतृत्व से, तो हमको सबसे पहले तो इस बात को किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध से अलग होकर देखना पड़ेगा
1: जी।
2: जो वस्तुनिष्ठ होकर, ऑब्जेक्टिव होकर बात करनी पड़ेगी, और अगर उस दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी के स्वयं के और इस सरकार के काम से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे युवा आगे अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उसको कर सकते। पहली सीख है कि उसकी निरंतरता, किसी भी काम की कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी
1: जी,
2: उसका टिकाऊपन। तो बड़े परिणाम कभी आपको बहुत जल्दी नहीं आते
1: जी,
2: एकदम से। 2001 में उन्होंने गुजरात से अपनी यात्रा शुरू की थी, और ये इसी शासन यात्रा का विस्तार जो है वो बाद के वर्षों में दिखाई देता है। दूसरा है, छोटी भी समस्या को छोटा न समझना
1: जी।
2: जैसे अभी बात कर रहे थे, अभी कृष्ण मोहन जी भी, कहां से शुरू किया? शौचालय चाहिए, स्वच्छता चाहिए, लाल किले से अगर ये बात हो रही है तो अपने आप में उसके महत्व को समझा जाना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री इतनी बात कैसे कर रहे हैं। उन्होंने शौचालय, बैंक खाता, गैस, पानी, मिट्टी की जांच, बेटी का स्कूल जाना, ये सुनने में बहुत सामान्य विषय लग सकते हैं, लेकिन ये आम जनता के लिए, देश को देश बनाने के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और जब ये समस्याएं करोड़ों लोगों की है तो फिर एक तरीके से वो सामान्य राष्ट्रीय प्रश्न बन जाती है, तो ये सीख लेने की जरूरत। तीसरा है कि तकनीक को अपनाना। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीक को हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे, और तकनीक को अपनाने का मतलब है कि वो जन सुविधा के लिए अपनाना। हमने पहले भी बात की कि गुजरात में उन्होंने जब लोगों की शिकायतें सुनने के लिए स्वागत जैसा कार्यक्रम चलाया, राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट बेनिफिट योजना चलाई, तो ये तकनीक अंततः नागरिकों की सुविधा के लिए हो, इस बात को करना। चौथा है संवाद कौशल, जिसकी अभी हमने इससे पहले भी बात की
1: जी।
2: आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना। और लक्ष्य बड़ा रखना, आप अपना लक्ष्य बड़ा रखेंगे आप बड़े परिणाम पा सकेंगे। आज हम जैसे हम कह रहे हैं कि

0: जितना सब कुछ होने के बाद भी 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही, तो ये बड़े लक्ष्य हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेवा, सुशासन और संकल्प अपने आप में यही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की सफलता के परिचायक हैं। आज की इस सार्थक चर्चा से स्पष्ट है कि 25 वर्षों का यह सार्वजनिक जीवन केवल सत्ता का सफर नहीं बल्कि सेवा ही संगठन और जनभागीदारी की एक नई राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक है। इससे साफ है कि सेवा संकल्प अभियान आमजन के मन में कर्तव्य बोध जगाने का एक सशक्त जरिया है। 2047 के विकसित भारत का सपना हो या आज के युवाओं के लिए निष्ठा और निरंतरता का संदेश, यह यात्रा कई दृष्टिकोण से प्रेरणादायी है। आज की इस बेहद ज्ञानवर्धक परिचर्चा में शामिल होने के लिए दोनों ही अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस खास चर्चा में हमारे साथ बने रहे।
2: आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश, विषय था सुशासन और सेवा पर्व। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

कवि बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाजी परिसर भोपाल में आयोजित भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों APU की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 22 सितंबर को बेंगलुरु में टेलीकॉम

क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस साल 20 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर लागू होगा। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की पांचवी बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में वन विकास निगम द्वारा कराए जा रहे बड़े भवन निर्माण कार्यों को समय सीमा से पहले पूरा करें और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गणेश उत्सव के दौरान निकलने वाले चल समारोह और प्रतिमाओं के विसर्जन के संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
3: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
3: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
3: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी

0: radio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।

0: ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
1: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
0: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
1: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
0: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
1: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
0: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
1: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा, मैंने
2: कहा। अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ।

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ, क्या सोच रहे हो?
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
2: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
3: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
2: बेटा
3: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
2: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ा

0: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
1: लेकिन क्या बेटा,
0: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ, दे दो ना माँ, दे दो।
1: अरे बेटा सुनो तो
0: माँ, एक लालटेन दे दो।
1: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, और तुम लालटेन उठाकर, अरे
0: माँ लालटेन दे दो।
1: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
0: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ, कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
2: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
3: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
2: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।
0: मामा, माँ।
1: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
1: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
1: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
2: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
3: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
2: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
3: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
2: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
3: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
2: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
3: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले

0: पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले, भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं। मट्टू बोले,
1: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
1: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
2: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
1: हाय ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
3: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
3: ध्यान देना।
0: रक्कास,
3: नाचने वाला।
0: ताब,
3: ताकत बर्दाश्त।
0: हिंसा,
3: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
3: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी।
3: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था।
3: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे।
4: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शिवाय फिल्म से ये गीत सुनिए मिथुन, मोहित चौहान और साथियों की आवाज़ में। इसके बोल लिखे हैं संदीप श्रीवास्तव ने और साथ ही संगीत दिया है मिथुन ने।

शून्य है वही इकार है जिसके भीतर बसा शिवाय।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अब सुनिए बॉर्डर टू फिल्म से विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ में ये गीत, लिखा है मनोज मुंतशिर ने और विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकास, विरासत और आत्मविश्वास वाले नए भारत के शिल्पकार। आलेख संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन धर्मेंद्र सिंह लोधी का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। किसी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन इस बात पर आधारित होना चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, नागरिकों में आत्मविश्वास पैदा हो और आधुनिकता की यात्रा करते हुए समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी जड़ों से गहराई के साथ जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की यात्रा को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में एक तरफ आधुनिक अधोसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में नया स्थान भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन की सामाजिक दृष्टि का मूल भाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा है। बैंकिंग व्यवस्था से वंचित नागरिकों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने से लेकर आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, खाद्यान्न सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं तक अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने शासन और सामान्य नागरिक के बीच की दूरी को कम किया है। नारी सशक्तिकरण भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत और अधोसंरचना विकास ने उद्यमिता को नई गति प्रदान की है। सड़क, रेलवे, विमानन, मेट्रो, बंदरगाह तथा डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार ने आर्थिक विकास को भौतिक और समावेशी आधार प्रदान किया है। समावेशी विकास के माध्यम से सामाजिक विषमता को कम करने का प्रयास भी मोदी जी के शासन दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता दीर्घकालिक कठोर निर्णय लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति रही है। जीएसटी में एक राष्ट्र एक कर की दिशा, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की समाप्ति, डिजिटल भुगतान क्रांति, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष योजनाएं, आधारभूत संरचना में व्यापक निवेश जैसे निर्णयों ने शासन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। इन निर्णयों से भी अधिक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन राष्ट्रीय मानस में दिखाई देता है कि भारत अब खुद को भविष्य की प्रेरक शक्ति के रूप में देखने लगा है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी के विकास और राष्ट्र दृष्टि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र सामने आता है, विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में हमारी गौरवशाली संस्कृति को राष्ट्रीय आत्मविश्वास से जोड़ा गया है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ पुनर्निर्माण, सोमनाथ में विकास कार्य, करतारपुर साहिब कॉरिडोर और देश के अनेक तीर्थों में आधुनिक सुविधाओं के विकास ने आध्यात्मिकता और पर्यटन के बीच नया संबंध स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व पटल पर प्रमुखता से पहचान मिली है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि के सबसे बड़े केंद्र के रूप में रेखांकित हुआ है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, ओरछा, खजुराहो आदि महत्वपूर्ण स्थलों का विकास, कला और संस्कृति के अनेक केंद्रों की स्थापना और जनजातीय गौरव रेखांकित करने वाले अनेक कार्य मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर हुए हैं। कहते हैं, जो राष्ट्र अपनी विरासत पर गर्व करता है वही आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण करता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब देश में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के उच्च प्रतिमानों को गढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक पटल पर दृढ़ता से रेखांकित कर रहा है। है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा एक राष्ट्र के अपनी सभ्यतागत स्मृति, सांस्कृतिक अस्मिता और आध्यात्मिक आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने की यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने भारतीय मानस को न केवल अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया है, बल्कि उस विरासत को वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास भी दिया है। कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाते हैं जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है भोपाल से, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संकल्प अभियान जारी है। इस अभियान की शुरुआत पर 17 सितंबर को भोपाल में रक्तदान शिविर के साथ आशीर्वाद के दीप जलाए गए। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, साथ ही रक्तदान करने वाले युवाओं और लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दिन शाम को शहर में आशीर्वाद के दीप जलाए गए। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। वीआईपी रोड पर जलाए गए दिए लोगों की आकर्षण का केंद्र बने रहे। शहर के चौतर बंगला स्थित मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निवास पर 25 फीट ऊंचे दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र में 1.25 लाख दीप जलाए गए, जबकि निवास पर 9,125 दीपों में रोशनी की गई। सांसद आलोक शर्मा के नेतृत्व में भवानी चौक पर 5,151 दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा केकड़िया स्थित नमो उपवन में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के संकल्प को समर्पित 2047 पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने भी शाम को दीप जलाकर पीएम को बधाई दी। विधायक भगवान दास सबलानी ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी की एवं मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: वहीं विदिशा जिले में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से विदिशा जिले में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत 8 स्थानों पर नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक आयोजित रक्तदान शिविरों में 140 यूनिट रक्त संग्रहित किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों के उपचार में लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम से नागरिकों में सेवा भावना के साथ स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विदिशा जिला मुख्यालय में हुए एक जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में भारत की ख्याति को बढ़ाया है। भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और देश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान SETI इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता एवं नशा मुक्ति पर केंद्रित संदेश परक नाटकों का मंचन किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अतिथियों द्वारा बड़ी संख्या में हित लाभ देते हुए आवश्यक उपकरणों का वितरण किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में अशोकनगर जिले में चल रहे सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला।
3: अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा

0: के 25 वर्ष पूरे होने तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। अभियान का फोकस सेवा, स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता, हितग्राही कल्याण, युवा नवाचार और नागरिक दायित्व से जुड़ी गतिविधियों पर किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ समाज में हुए बदलाव की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत 13 प्रमुख गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। अभियान का शुभारंभ आशीर्वाद का दिया के साथ किया गया। 17 सितंबर को पूरे अशोकनगर में सामूहिक दीप प्रज्वलन किया गया। जिला मुख्यालय पर नगर पालिका परिषद द्वारा आइकॉनिक स्थल चिन्हित किए गए थे, जहां आशीर्वाद के दीयों का प्रज्वलन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीणों एवं नगरीय क्षेत्रों में शासकीय सेवकों द्वारा पीले चावल एवं आमंत्रण पत्र देकर शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। अभियान के अंतर्गत बच्चों के सपनों का भारत में चित्रांकन सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नवो सेवा गाथा, नुक्कड़ नाटक, आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगन का महोत्सव, आंगन मिलन सेवा और कहानी बदलाव के जैसे कार्यक्रम भी होंगे। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु अभियान और सरकार आपके द्वार जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। वहीं सेवा मेरा योगदान के तहत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, स्वच्छता और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं और स्टार्टअप के साथ राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज भी प्रस्तावित किए गए हैं। 17 अक्टूबर को समापन जनसेवा महाकुंभ पंचायत से पार्लियामेंट के रूप में होगा। इसमें जनप्रतिनिधि समागम भी प्रस्तावित किया गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस देश में जनसेवा, राष्ट्र सेवा से आमजन को जोड़ने के लिए भागीरथी प्रयास सुनिश्चित होगा। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत अनूपपुर जिले में आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी सुनिए हमारे अनूपपुर संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा से।
2: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत अनूपपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले भर में ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर जन्मदिन की खुशियों को साझा किया। जिले में लगभग 5 लाख दीप जलाए गए, जिससे गाँवों और शहरों में उत्साह का माहौल नजर आया। अभियान का भव्य समापन मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक स्थित रामघाट पर हुआ। यहाँ 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों की रोशनी में रामघाट जगमगा उठा। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद महाआरती की गई। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अमरकंटक रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद माद्री सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और एवं पूर्व विधायक रामलाल रोतेल सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता उपस्थित थे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर महाआरती की सहभागिता की। भाजपा जिला कार्यालय अनूपपुर को दीपों से सजाया गया। इसके साथ ही 16 मंडलों के बूथ स्तर तक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों, भाजपा जिला पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान करीब 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने भी उत्साह पूर्वक सहभागिता की। हितग्राहियों ने अपने पक्के आवासों के बाहर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। हितग्राही परिवारों ने कहा कि जिले में दीप प्रज्वलन के दौरान सेवा, समर्पण और जन भागीदारी का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने बताया कि जिले में आयोजित सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के जनउपयोगी कार्यों को भी अमली जामा पहनने का कार्य किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
1: श्रोताओं, ये तो रही बात प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित सेवा संकल्प अभियान की। अब प्रादेशिक समाचार दर्शन में बात करते हैं बैतूल जिले की, जहां पर विद्यार्थियों के आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बैतूल जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अगस्त 2026 में संचालित विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान में बैतूल प्रदेश के शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
3: विद्यार्थियों के आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बैतूल जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अगस्त 2026 में संचालित विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान में बैतूल प्रदेश के शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहा है। जिले ने अभियान के तहत 10.9% उपलब्धि दर्ज की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मध्य प्रदेश निदेशक श्री सुमित मिश्रा ने इस उपलब्धि पर कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाणे को पत्र भेजकर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना

0: की है। उन्होंने बैतूल जिले की पूरी टीम, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग और जिला ई गवर्नेंस के प्रयासों को प्रशंसनीय बताया है। श्री मिश्रा ने कहा कि अगस्त माह के दौरान अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बैतूल का शीर्ष 5 जिलों में स्थान बनाना जिला टीम के समन्वित और प्रभावी प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे के नेतृत्व में बैतूल जिला अभियान के आगामी दिनों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखेगा। विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के आधार में निर्धारित आयु पर आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट को गति देना है। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर ही आधार संबंधी प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे ने इस उपलब्धि का श्रेय अभियान से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और मैदानिक अमले के सामूहिक प्रयासों को दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से डॉक्टर मयंक भार्गव।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है आगर मालवा जिले से, जिसका चयन स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इस बारे में हमें और अधिक विस्तार से बता रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा।
2: स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित आगर मालवा जिले में भी MPACDC द्वारा MPE सेवा सारा एवं संपदा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में जिले की चयनित ग्राम पंचायतों शिवगढ़, महुड़िया, भीमाखेड़ा, निपानिया, हनुमान, गेलाना, खनोटा, देहरी गुजर, करकड़िया, अमरकोट में प्रत्येक सप्ताह 3 दिवसीय शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इन ग्राम पंचायतों के 19 ग्रामों के 2135 निजी प्लाट के अधिकार अभिलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक 335 प्लाट ग्राम निपानिया हनुमान तथा सबसे कम 10 प्लाट ग्राम त्रिलोकपुरा में हैं। तहसीलवार जानकारी के अनुसार आगर मालवा में 374, बड़ौद में 663, सुसनेर में 493, नलखेड़ा में 357 एवं सोयत कला में 248 निजी प्लाट की जानकारी प्राप्त हुई है। शिविर स्थलों पर वाईफाई, इंटरनेट, विद्युत व्यवस्था, पेयजल सहित समस्त आवश्यक सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री अर्पिता राय को निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। योजना का ग्राम सभा के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर समस्त सक्षम अधिकारियों का HSM पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
1: अगली रिपोर्ट में हम रुक कर रहे हैं उमरिया जिले का, जहां पर फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी से।
3: उमरिया जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत जिले भर में 4303 हितग्राहियों के लिए 3635 भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन्हें अब रजिस्ट्री के जरिए मूर्त रूप दिया जा रहा है। राजस्व अधिकारी विक्रेता के रूप में और हितग्राही क्रेता के तौर पर रजिस्ट्रार कार्यालय में भूमि की रजिस्ट्री संपादित कराएंगे। और योजना की खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में हितग्राहियों को किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। रजिस्ट्री के बाद हितग्राही को स्थायी अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद हितग्राही प्राप्त भूमि अधिकार पत्र से कई लाभ ले सकता है, जिसमें बैंक गारंटी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं शामिल है, जिसके तहत हितग्राही मूलक योजनाओं से हितग्राही सीधे लाभान्वित हो सकेगा।
1: उमरिया की रिपोर्ट के बाद अब प्रादेशिक समाचार दर्शन की आज की अंतिम रिपोर्ट में बालाघाट जिले के बिरसा बहर गाँव में स्वास्थ्य और जनकल्याण अभियान पर जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
4: बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड के 57 गाँवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और पोषण को लेकर प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। कुंडेकशा, अडोरी, कोरका, बोंदारी, घुमुर, मछुरदा और मातला समेत आसपास के गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग और उपचार कर रही है। अब तक 40,820 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 6,701 मरीज अलग अलग बीमारियों से पीड़ित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 587 मरीजों का अस्पताल में जबकि 6,087 मरीजों का उपचार घर पर किया गया है। निगरानी और उपचार के लिए 57 सर्वे टीमों के साथ 18 मेडिकल ऑफिसर, 12 एम्बुलेंस और 6 PM जनमन ANMMU की सेवाएं लगाई गई है। स्वच्छता और कीट नियंत्रण के तहत 54 गांवों के 6065 घरों में कीटनाशक

0: का छिड़काव और 44 गांवों के 8,610 घरों में फॉगिंग कराई गई। पेयजल व्यवस्था के तहत 37 हैंडपंपों का क्लोरीनेशन किया गया। बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और पोषण सेवाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। अब आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
4: This strategic partnership.
5: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
3: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।

0: गया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,144 पर आ गया 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इस कार्यक्रम का आकर्षण होगा फरमाइशी लोकगीत। शाम 8:00 विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। शाम 8:35 पर और रात 10:20 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे। साथ ही रात 10:00 एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली के ही अनुप्रसारण में। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रजनी में संतूर वादन का राग जयंत मल्हार में आनंद लीजिएगा। संतूर वादक सतेंद्र सिंह सोलंकी से और तबला संगीतकार होंगे रामेंद्र सिंह सोलंकी। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे कल मंगलवार यानी 22 सितंबर की सभा में। कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदना प्रस्तुत होगा। कल सुबह 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। कल सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में आनंद लीजिएगा। कृष्ण हंगल की आवाज में ख्याल गायन का राग होगा अहीर भैरव। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। अब कल सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनिए। कल सुबह 11:00 से फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे सुनिएगा। कल दोपहर 12:00 और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की चौथी कड़ी प्रस्तुत होगी। दोपहर 1:00 महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति में। शाम 5:02 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम युववाणी। कल शाम 6:00 प्रस्तुत होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल शाम 6:30, 8:35 और रात 10:20 पर फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। कल शाम 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। कल शाम विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा 8:00। कल रात्रि 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रस्तुत होगा। कल रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। और कल रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में कृष्ण हंगल की आवाज में ख्याल गायन का आनंद लीजिएगा। राग होगा चंद्रकौंस। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC ID।
2: CKYC मतलब?
3: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के शासक के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के हाट पिपलिया में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया और कल बेंगलुरु में टेलीकॉम कंपनियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने शाही परिवार और दुबई की जनता के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाला टीवी कमर्शियल जारी करेंगे और लखनऊ और देहरादून में एनसीबी के नए जोनल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सीहोर जिले के एक गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1 लाख रुपए और बेहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवास जिले के हाट पिपलिया क्षेत्र में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। 32 किलोमीटर लंबा राजोदा केलोड डबल चौकी मार्ग हाट पिपलिया को देवास, इंदौर और बैतूल से जोड़ेगा। ये सड़क डबल चौकी में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलेगी। इससे करीब 25 गांवों के 70,000 ग्रामीणों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने सुखलिया से टिगरिया मार्ग बनाने की घोषणा भी की। 12 किलोमीटर लंबी ये सड़क करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। रीवा में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि रीवा में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। त्योथर, लोनी, सिरमौर और सिमरिया की परियोजनाएं पूरी होने पर करीब 1,35,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
2: हमारे किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
1: केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
3: इसमें हम लोग किसानों को काफी खुशी है और ये योजना बहुत लाभदायक है।
1: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बेंगलुरु के उद्योग जगत से संवाद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बेंगलुरु में टेलीकॉम कंपनियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होंगे। बैठक में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में टेलीकॉम उपकरणों के साथ रिसर्च, इनोवेशन और इससे जुड़े उद्योगों के विस्तार पर भी चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री बेंगलुरु के क्वालकॉम आरएनडी सेंटर समेत कुछ तकनीकी संस्थानों का भी दौरा करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने 24 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दिन छतरपुर, सतना, दमोह, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में अब तक औसतन 33.9 इंच पानी गिर चुका है, जो मानसूनी कोटे का करीब 91% है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18 और 39 में चिन्हित स्थलों पर पूर्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया था। अनूपपुर में गांधी जयंती के अवसर पर 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह के तहत गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और सीहोर कृषि उपज मंडी में नई सोयाबीन की फसल की आवक शुरू हुई। बैतूल कलेक्टर ने आज आयोजित समय सीमा की बैठक में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। मंदसौर में विश्व अल्जाइमर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी में कल जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में स्थित बालाजी परिसर में आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने अटल जी के राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों में योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, क्योंकि इस समय गर्मी भी है भैया थोड़ी, और उमस को मौसम भी है। और कहते ना कभी किसान के लाने तो चाहे कोनों भी मौसम का ना हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बसकाव हो, उनको तो भैया खेतन में काम करना ही पड़ता है। तो मौसम को देखा तो भाई, अगर अपने खान पान पर अपन ध्यान रखें तो भैया मौसम को भी आनंद ले सकते हैं, और अपने जो घर गृहस्थी खेती किसानी के और हाट बाज़ार के मंडी के काम है वे भी भैया अपन सुचारू रूप से सही ढंग से कर सकते हैं। मौसम को देखा तो भाई अपन को ध्यान जरूर रखना है। और संगे संगे भैया देखो, बसकाय को मौसम अब धीरे धीरे भैया अपने विदाई की ओर है, तो थोड़ा बहुत जो सावधानी है वो भी अपन को रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में अपन ने देखो कि कौन नाली गड्ढन में भैया जो, और घर की छत पर जो अपने डिब्बा पहिए वगैरह पड़े हैं, तो उनमें अगर बारिश को पानी रुक गया है तो भैया ऊपर होता है अपन को साफ़ सफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि भैया रुके भाई पानी में भैया मच्छर पनपते हैं, और मच्छर से भैया अपन को चिकनगुनिया मलेरिया भी हो सकता है। तो थोड़ी साफ़ सफाई भी अपन को ज़रूर रखने हैं, और अपने पंचायत में अपने गाँव के आसपास जी जगह भी अपन को ऐसा लगे ना कि कोनो नाली में या कोनो गड्ढा में या कोनो ऐसी जगह जहाँ पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, होता है पानी रुको है और सड़ रहा है, तो भैया होता है अपन को मिट्टी के तेल को या जो दवा है उसको छिड़काव जरूर करने हैं। कुल मिला के चाहे कि अपन को मच्छरन को पनपे से रोकने हैं, क्योंकि मच्छर पनपे तो भैया अपन को काटें, और काटवे से भैया अपन को बीमार, और बीमार हो गए तो जब मान लो कि फिर वही काम अपने जो खेती किसानी के काम काज में थोड़े से अपन को लेट लती भी हो सकते हैं, तो इनके काज भैया अपन को सावधानी रखने हैं। और घर में अगर छोटे लड़का बिटिया हैं तो उनको तो भैया विशेष ध्यान रखने हैं। संजावरिया भैया अपन को धुआं भी करने हैं, नीम के पत्तन को अगर जो दवाई है वो भी अपन को हाथ पैर में लगाने हैं, और फुल आस्तीन के फुल बाजू के अपन को कपड़ा जरूर पहने हैं। और संगे संगे भैया हो सके तो अपन मच्छरदानी को भी उपयोग जरूर कर लें, मच्छर से अपन बचे रहें तो भैया अपन अच्छे रहें। और भैया देखो, आज कछु विशेष भी है, काहे कि भैया आज सोमवार है, और सोमवार को हम अपने श्रोता भैया के लाने लाते हैं बुंदेली लोकगीतों को फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो भैया देखो, कार्यक्रम में आज हम आपको पहले सुनवा देते हैं विनोद पुरोहित के स्वर में जो नौ नौ सुई गारी लोकगीत।

भैया देखो, अभी आप सुन रहे थे विनोद पुरोहित के स्वर में जो उन्होंने सुन लोकगीत, तो जहाँ लोकगीत की फरमाइश हमको करी थी ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य। भैया देखो, सोमवार को हम अपने श्रोता भैया इनकी फरमाइश के लोकगीत तो सुनवाते हैं, लेकिन संगे संगे जो आवश्यक जानकारी है वो भी हम आपको देते रहते हैं। तो आप सुन लेते भैया रतनलाल कुशवाहा उनके संगे साथी इनके स्वर में जो 900 कजरी लोकगीत।

भैया देखो, अभी आपने सुनो जो 900 लोकगीत और जलोकगीत की फरमाइश हमको करी थी प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। भैया देखो, बुंदेली लोकगीत इनको फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी चल रहा है, लेकिन संगे संगे भैया जो आवश्यक जानकारी है वह भी हम आपको देते रहे। क्या कि भैया देखो, शासन तो अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रहा है कि अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो सके। ये किलाने भैया शासन की कई महत्वपूर्ण जो कल्याणकारी योजना है वे भी संचालित हो रही हैं, लेकिन भैया शासन की कोनो योजना को लाभ अपन तभी ले सकते हैं जब भैया अपन जागरूक हुई हैं। जब तक भैया अपन जागरूक नहीं हुए, शासन की कोनो भी योजना को अपन लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे शासन की भैया आयुष्मान कार्ड योजना है जो भैया, इसे भी अपन को बहुत लाभ मिल जाता है। क्या कि भैया देखो, आजकल घर में अगर कोनो बीमार हो जाए तो सबसे पहले जो अपना जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाता है भैया, वो धीरे धीरे अपनी दवाइयों में लग जाते हैं तो अपन को परेशान होने पड़ते हैं। तो ई किलाने देखो, शासन ने 5 लाख तक को जो

दवाई को खर्चा है वो शासन की ओर से कोनो भी अस्पताल में अपन को मिल जाते हैं, तो इसे भी अपन को बहुत लाभ है। लेकिन जरूरी जा है कि अपने पास आयुष्मान कार्ड होने हैं। ये किलाने भैया अपन को अपने परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनको आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा के रखने हैं। भैया देखो रात बिरात कब जरूरत पर कौन सी चीज़ काम आ जाए, ये किलाने अपन को स्वयं पहले से तैयार रहने हैं। और संग संग भैया देखो शासन की जो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है, इसको भी बहुत लाभ है। ताकि भैया देखो सब चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद भैया जो अपने जब हाथ पैर काम कर भी लाख नहीं रहते हैं, अपन कहते ना कि अपन मजबूर हो जाते हैं भैया, तो इस समय अपन को जो अपनी आर्थिक स्थिति है वो भी चलत रहे, अपने जो खान खावे पी में जो पैसा है वो अपन को मिलत रहे। तो इस जो योजना है इसमें भैया अपन को 3000 रुपया की जो न्यूनतम पेंशन है वो शासन की ओर से मिल जाते हैं। लेकिन ई किलाने भैया अपन को थोड़ा थोड़ा जमा जरूर करने हैं, और कम से कम जो मासिक आय जो अपनी है वो अपने जो है वो 15000 से होने चाहिए। तो अपने जो थोड़ा थोड़ा जो पैसा कटत रहा था वो में शासन कछु मिला के 60 साल की उम्र के बाद अपन को 3000 रुपया मिल जाते हैं। तो इसे जो अपना जो खर्चा है भी भैया चलत रहते हैं। तो भैया हम तो यही कहें कि शासन की जो भी कल्याणकारी योजना के लाने अपन पात्र हैं तो भैया अपन को आगे आने हैं और वह शासन की योजना को अपन को लाभ लेने हैं। स्वयं भी जागरूक रहें और भैया आसपास के लोगों को भी जागरूक रखें, जिससे कि भैया बेबी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर पाए और देश शासन में अपना योगदान दे सकें। तो भैया अब हम आपको सुनवा देते हैं उर्मिला और देशराज पटेलिया के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत, और जो लोकगीत की फरमाइश हमको करी है चौक छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, काजल, करण, अनुष्का, मोहित, गोलू, नीरज, शीला भाभी, यशोदा भाभी, ममता देवी, रामकली, काजल, करण, भारती, आरती और बाबू। तो भैया सुन लेते हैं इनकी फरमाइश को जो उन्होंने सो लोकगीत।

जाई कादे हो मोखा उतराई सांची सांची देव बताई हाँ बोझ लदी ठाणी भो जाई कादे हो मोखा उतराई।

हम छोड़ देते ने, लेकिन अरे लड़का तुम्हें राम ने दो है, बिटिया भाई होती तुम

हम सब खाए आनंद भो है, हाँ लड़का तुम्हें राम ने दो है, बारह पथरा पूजे भव है, हम

ऐसे काम नहीं चल रहे, देहो नेंग नहीं, अब इंधरो तत्काल गगरी तोरी जब उतर है, गगरी भौजी जब

भैया देखो, अभी आपने सुनो चुनौनो सुन लोकगीत उर्मिला पांडे और देशराज भट्टाचार्य के स्वर में। अब भैया हम आपको सुनवा देते अपने कार्यक्रम में बाबूलाल राजपूत के स्वर में चुनौनो सुन लोकगीत। और जहाँ लोकगीत की फरमाइश हमको करी है न्यू फैसिप के एक अपार्टमेंट बाबड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिताबाई भारतीय, ग्राम कजलास पोस्ट टेहरिया जिला नर्मदापुरम से गोरेलाल नमोदा मिश्रीबाई लक्ष्मी निमोदा और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो भैया सुन लेते हैं उनकी फरमाइश को जो नौ सौ लोकगीत।

भैया देखो, अभी आप सुन रहे थे जो उन्होंने सुलो की, तो भैया स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारों कर रही कि हम अपने सभी श्रोता भैया से लेने आए विदा। तो चलते हैं सभी श्रोता भैया को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गॉव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित है राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
3: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी जी।
3: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
1: जी।
3: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
3: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे, उस मुहिम के, वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा। तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
3: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिव अप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिव अप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिव अप हो पाएगा जब वो वॉलंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के जमाने में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
3: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य है। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
3: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में एक योजनाओं में एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओ, यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख में याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014, यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहाँ पर सुरेश जी हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया।
3: बिल्कुल, देखिए याद रखिए आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
1: जी,
3: 2 अक्टूबर जी। और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होके हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ये सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे एक एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहाँ सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में, लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है
1: जी।
3: तो मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता जनता के अंदर पैदा भी हुई।
1: सुरेश जी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आए। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। यहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे गिव इट अप अभियान यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं। राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहां पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
4: देखिए, आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि वीडियो कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है।

0: करोड़ लोगों ने अपना एलपीजी गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो पीएनजी के इस दौर में मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, यहाँ भी घर घर पीएनजी की पाइप बिछ गई है और लोग पीएनजी का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा एक दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता भी, सहजता भी आई है और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित के पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी
1: जी
0: धुआं से आजादी मिले, कि सेहत में सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है और जिसका परिणाम यह है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
1: सुरेश जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना जो, खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था,
2: जी
1: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक एलपीजी की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा पीएनजी के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है
2: जी
1: कनेक्शंस
2: जी
1: मिल
2: जी
1: गए,
2: जी जी
1: जिसके
2: जी
1: बाद एलपीजी की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
2: बिल्कुल
1: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए।
2: जी
1: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था,
2: जी
1: हम
2: जी
1: एडिशनल भी हमने एक ले लिया था क्योंकि
2: जी जी
1: कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से पीएनजी आया, घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा,
2: जी जी
1: तब
2: जी
1: जाके जो है ये होगा।
2: जी जी
1: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था,
2: जी
1: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं,
2: जी जी
1: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला। और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है, उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
2: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूं मन की बात कार्यक्रम का, प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
1: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में,
2: जी
1: तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला

0: कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे, अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर
1: जी
0: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आमतौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन, वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है।
2: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं, यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है
1: जी।
2: और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
0: देखिए, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
1: जी।
0: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
1: जी, जी,
0: आज
1: जी।
0: जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सीहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से, इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रहा है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था, यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति है उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई, आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको
1: बिल्कुल।
0: मान्यता देना,
1: उनका
0: जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है, और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश

0: जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
1: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है। और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था, अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहां जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
0: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे?
2: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
0: एक किया पूरे भारतवर्ष,
2: पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
0: बिल्कुल
2: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिये, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल की प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
0: लोग जीवन में
2: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलत फहमियों को दूर करके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वीकार्यता, ये राष्ट्रीय एकता का और मजबूत होने का एक प्रतीक है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में ये दूरियां कम होगी, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो।

0: ये बहुत जरूरी है और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
1: अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, भारत विकसित हो ये हम सब की कामना। इस विकसित भारत में लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी, कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है, उसका निश्चित ही कारण।
1: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। विषय था जन भागीदारी से जन कल्याण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। साजन फिल्म से ये गीत सुनिए SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में। समीर ने लिखे हैं बोल, नदीम श्रवण का संगीत है।

अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह और हंसिका पारीक की फिल्म आज़ाद से। इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए जिए देश पर मिटे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और

0: 1390 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उप प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ कारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
7: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
6: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
8: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक

0: हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
1: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month.

नमस्कार, आपके अपने मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी, आज हम ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा में की गई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, या कहिए कुछ अंतराल के बाद, सरकार का ये कदम जो है वो देश के संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना जा रहा है। अब तक जो कर्मचारी एक निश्चित सैलरी ब्रैकेट से बाहर होने के चलते पीएफ और पेंशन के फायदों से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। लेकिन इस वेज सीलिंग के बढ़ने से आपकी इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा? आपकी कंपनी के योगदान में अचानक क्या कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा?

0: और रिटायरमेंट का वक्त आते आते आपके हाथ में आने वाला फंड लगभग अंदाजन कितना बड़ा हो सकता है, जैसे तमाम सवाल लोगों के मन में प्राय उठते रहते हैं। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद मुनीश जी।
0: जी सर, आज हमारा विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमारे नंबर हैं लैंडलाइन के 011-233-1048। अगला नंबर है 23-717-117-23-717-106 और 233-1-4444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फ़ोन कर रहे हैं, एनसीआर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो हम दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं आपके सवालों का। और हम आपको फिर से विषय बता दें एक बार, कामगारों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। और चर्चा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और मैं देख रहा हूं कि नाम जो यहां फ्लैश हो रहा है, राय बरेली उत्तर प्रदेश से रमा शंकर जी। कहिए रमा शंकर जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो सीलिंग रेडिंग हुई है, इसमें जो है कामगारों के जो है फंड ईपीएफ का रास्ता प्रशस्त हो गया, तो इसकी सुरक्षा क्या गारंटी है?
0: जी आप रमाशंकर जी अपना सवाल कृपया दोहराएंगे एक बार।
2: जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामगारों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है
0: जी,
2: तो इससे इनके ईपीएफ का रास्ता तो खुल गया।
0: जी हाँ, ईपीएफ का रास्ता आप कह रहे हैं कि खुल गया, ईपीएफ के दायरे में और कर्मचारी आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपका क्या है?
2: हमारा यही प्रश्न है कि क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा?
0: क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न
2: रहेगा
0: रमाशंकर जी का? जी सर,
1: बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्रीय सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो जितने आप जैसे जितने कर्मचारी हैं उनके जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास आपके नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो जमा करते हैं। हर महीने हम ये जितने भी अपनी राशि है इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड और ऐसे सब बहुत ही सुरक्षित जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। और इसके बाद हर साल में एंड में हम इंटरेस्ट घोषित करते हैं। पिछले साल 8.25% इंटरेस्ट रेट हमने घोषित किया था। और इस पे जितने भी आपके पीएफ का बैलेंस बचा है हमारे पास, उस पे 8.25% जो है हम आपके पीएफ के अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं। ये क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, यह आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है।
0: तो रमा शंकर जी, आशा है कि आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, पब्लिक स्पीक में आज विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ की वेतन सीमा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी। आपसे ये हम जानना चाहेंगे अपने ऐसे श्रोताओं के लिए जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं और बहुत

0: तकनीकी रूप से शायद नहीं जानते कि ये जो ईपीएफओ की वेज सीलिंग या वेतन सीमा बढ़ाई गई है, इसका सीधा अर्थ क्या है और आम तौर पर ये कर्मचारियों को किस तरह से प्रभावित करेगा।
1: ये मैं सारे आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये 1952 का एक्ट है जो कि अभी हाल ही में 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो जितना भी वेतन है प्राइवेट सेक्टर में जितने कर्मचारी हैं उसमें मैंडेटरी कवरेज जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य कवरेज जो है वो 15,000 की वेतन सीमा तक की थी। 2014 में इसको 6,500 से 15,000 किया गया था और अब जो है हाल ही में 17 तारीख को इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी 25,000 का वेतन कमाता है उसका 12% जो है एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आपका वेतन से कट के हमारे तरफ कॉन्ट्रीब्यूट होगा वो, और आपका जो नियोक्ता है आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो अपनी तरफ से 12% वो जमा करेंगे ईपीएफओ के आपके खाते में। तो ये जो पैसा जो जमा होके आएगा ये 3,000, जैसे कि आपका अगर सैलरी 25,000 है तो 3,000 रुपया आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर 3,000, टोटल 6,000 रुपये कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा प्रति माह जब तक कि आप काम कर रहे होंगे इसी एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले ये राशि जो है ये 15,000 के वेज सीमा वेज सीलिंग पे था, अब बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पहले जितने भी अगर लोग कोई अगर 16,000 कमा रहा था या फिर 20,000 कमा रहे थे तो उनको पीएफ का कोई भी फायदा नहीं था। दे ये वॉलंटरी अपना वॉलंटरी स्वेच्छा की तरह से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंडेटरी कवरेज नहीं था। अब ये लोग सब ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अब सुरक्षित अपने आप को पाएंगे।
0: जी हाँ, और देखिए एक और हमारे श्रोता छतरपुर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं लाइन पर, राशिद अहमद खान। राशिद साहब, क्या सवाल है आपका, बताइए।
2: सर नमस्ते। सर
0: नमस्कार। नमस्कार
2: आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई।
2: जी सर, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जैसे कोई भी कर्मचारी है एक कंपनी में काम कर रहा है तो बाय द वे दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है तो क्या उसका मतलब प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा उसका या चेंज हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जैसे 12% का आपने बताया कि 12% कर्मचारी 12% नियोक्ता, इसको मतलब प्लस माइनस किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या, या मतलब फिक्स है ये नियम, ये बताना सर प्लीज।
1: धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसमें ये बताना चाहूंगा कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको वो यूएएन बोलते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। एक बार आपने ले लिया तो वही आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। जब भी आप अपना नौकरी चेंज करते हैं तो आप अपने यूएएन वो दूसरे एम्प्लॉयर को आप दे देंगे, वो उसी हिसाब से आपका जो है पीएफ काट के जमा करना शुरू करेंगे। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये था कि क्या ये 12% चेंज हो सकता है। नहीं, ये कानूनी या फिर लीगल तरीके से ये फिक्स किया गया है एक्ट में, तो इसका जो है ये 12% ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन जो है आप अगर आप 30,000 कमा रहे हैं या 40,000 कमा रहे हैं, ये आप और आपके नियोक्ता दोनों मिलके कंसेंट जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कंसेंट, आप ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से ऊपर हम नहीं कटवाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट जो है वो 25,000 तक ही अनिवार्य है कटना। अगर आप उसके ऊपर आप 40,000 के वेतन पे आप 12% जमा करना चाहते हैं आपका और आपके नियोक्ता का ज्वाइंट कंसेंट के साथ मतलब सहमति के साथ, वो 40,000 पे भी कट सकता है। लेकिन अनिवार्य जो राशि अब रहेगा और वेतन जो रहेगा वो है 25,000। 25,000 पे 12% बनता है 3,000, तो 3,000 आपका और 3,000 नियोक्ता का मैंडेटरी है। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
0: तो आशा है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों के जो हैं जवाब राशिद साहब मिल गए हैं। और आपसे अगला प्रश्न हमारी ओर से ये है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है, टेक अवे जो सैलरी, घर ले जाने वाला जो विशुद्ध वेतन है, उस पर क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा?
1: देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 15,000 जब आपका मैंडेटरी सीलिंग वेज सीलिंग था तब आपका जो 12% है वो 1,800 था। अब जब 25,000

0: गया तो जो 15,000 से कम कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले भी 12% दे रहे थे। जैसे किसी का समझ लीजिए, मान लीजिए 10,000 पीएफ का वेजेस है तो पहले वो 1200 रुपया कटवाता था, अभी भी 1200 रुपया ही कटेगा उसका। इनका इसमें सिमिलरली जब जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं तो उनका जो है पहले अगर वो वॉलंटरी स्वेच्छा अपने इच्छा से ज़्यादा अपना 12% जमा कर रहे थे तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो 15,000 और 25,000 के बीच में थे और जो पहले पीएफ के बाहर थे कम्प्लीटली, जो जिनका पीएफ कवरेज होता नहीं था, अब उनको जो है अब उसका पीएफ कवरेज देना पड़ेगा। जो जैसे कि किसी का अगर 20,000 रुपया वेतन रहा तो उसको 2400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और नियोक्ता का 2400 रहेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो 20,000 है, 20,000 में से अगर 2400 आपका डिडक्शन हो जाता है तो आपका जो टेक होम रहेगा वो 17,600 रुपये आपके टेक होम रहेगा। लेकिन मैं सब सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए ऐसा है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने वाली बात हो गई। जैसे कि ये जो 2400 है ये कहीं नहीं जा रहा, वो आपके बैंक के खाते को छोड़कर आपके पीएफ के खाते में जमा हो रहा है। और पीएफ के खाते से अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया उसमें 75% जो है स्ट्रेट अवे किसी भी कारणवश अगर आपको ज़रूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये हो गया कि ये पैसा आप ही के पास है, इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट में या आपके पॉकेट में हो, ये पीएफ के अकाउंट में है और पीएफ का खाता जो है उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन ये प्राय ये भी एक प्रश्न जो है वो सुनने में आता है कि क्या उसका एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत है जिसे आप रिटायर होने से पहले भी निकाल सकते हैं या पूरा का पूरा आप निकालने की स्थिति में होते हैं?
0: देखिए हमारे जो जो प्रावधान है, दो तरीके के प्रावधान है। एक है एडवांस या जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पीएफ खाता है उसमें से 75% आपका और नियोक्ता का जो शेयर है दोनों का मिला के जो भी आपका उसमें आपके बैंक पीएफ अकाउंट में जो खाता में जो राशि है वो 75% आप कभी भी किसी समय किसी कारणवश आपको निकालना हो, चाहे वो आपको बीमारी की वजह से हो, हेल्थ की वजह से हो, एजुकेशन, हाउसिंग, या फिर आपको शादी के लिए या किसी भी वजह से आपको चाहिए तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका परमानेंट जॉब लॉस हो गया तो आप एक साल से जॉब से वंचित हैं तो 75% के अलावा जो बाकी के जो 25% है वो भी आप एक साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये रिटायरमेंट तक वेट करने की
1: एक वर्ष हो गया है आपको नौकरी से बाहर हुए दुर्भाग्यवश तो वो उस स्थिति में आप पूरा भी उसको निकाल सकते हैं, जबकि सामान्य तौर पर जैसा आपने बताया कि यदि आप अपने नियमानुसार समय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उससे पहले 75% तक निकाल सकते हैं। और उसके लिए आपने कुछ वजहें बताई कि जो देनी होती हैं, जो शायद अब बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं, पहले उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शंका होती थी कि क्या वो वजह हो सकती हैं, तो जैसे शायद शिक्षा और विवाह है और या
0: हाउसिंग
1: मकान का निर्माण कर रहे हैं या खरीद रहे हैं
0: या बीमारी कोई भी
1: या कोई रोग है तो उस स्थिति में उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ पक्ष हैं जिनमें ये आशंका व्यक्त की जाती है कभी कभी कि जो छोटे उद्यम हैं MSME जिनके प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है तो क्या ये नए नियम उनके लिए कोई नई चुनौतियाँ खड़ी कर देंगे?
0: देखिए EPF में जो कवरेज है वो अगेन वो मैंडेटरी तभी है कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब वो 20 से अधिक कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। तो एक तो सेफ गार्ड यहाँ पे रखा गया है कि थोड़ा सा मतलब मीडियम से भी ज़्यादा अगर कोई उद्यमी है तो उन्हीं को ये पीएफ वाला पूरा कानून लागू होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट अभी तो जो नौजवान हैं जो यूथ हैं उनको अभी 20-25 साल का दूरी दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अभी से आप अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आपका समझ लीजिए कि जब आपके आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं और फिर वो
1: जिम्मेदारियां बढ़ जाती
0: हैं, हाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एजुकेशन के लिए खर्च होना पड़ता है, तब आपके पास जो सेविंग्स है, जो जमा पूंजी है, वो कहाँ से मिलेगा? तो पीएफ एक ही इस पूरे प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है जिसके जरिए आप समय समय पर आपका सेविंग्स बनता रहता है, और इसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भी और आपका भी कंट्रीब्यूशन साथ में जुड़ता है इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि 8.25% इंटरेस्ट हम देते हैं, एक समझ लीजिए एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज का जो 25,000 का जो वेज सीलिंग बना, उससे अगर 6,000 रुपया आपका, 3,000 आपका और नियोक्ता का 3,006 रुपया प्रति माह आपका सेविंग्स बनता है, तो एक साल में आपका सेविंग्स बनता है 72,000। और ये अगर आप 35 साल तक अगर इसको कंटिन्यूसली बिना विड्रॉल के आप जमा करते हैं 30-35 साल तक, तो करीबन आपके 7% कम भी आप लेके इंटरेस्ट चलेंगे तब भी आपका 1 करोड़ का जमा पूंजी बनता है। तो ये रिटायरमेंट सेविंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो मैं ये जरूर मैं कहूँगा कि अभी इमीडिएटली तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये तो हमारे तरफ से एक 1200 रुपये का एडिशनल, कोई अगर पहले पीएफ में नहीं था और अभी उसको देना पड़ रहा है तो 3,000 रुपये का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, या फिर वो पहले 15,000 कटवाता था अब 25,000 रुपये कटवाना है तो 1200 रुपये का एडिशनल उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉई जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, आपका वफादार है, आपका लॉयल्टी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट जो है उसको भी आश्वासन देता है, उसको भी ये मैं बोलूंगा प्रिवेंट करता है कि वो अलग अलग नौकरी छोड़ के जाने का सोचे ना, वो यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये एक एक तरीके से ये इंसेंटिव है कि आप अपने एम्प्लॉय रिटेंशन जिसको बोलते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ ही काम करते रहें, तो उनको आप जितना आप वेलफेयर जितना भी आप कुछ अच्छा करके देंगे
1: लाभ
0: दे सकते हैं तो फिर वो उतना आपके साथ तो वो जुड़ के काम करेगा।
1: जी हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं सासाराम बिहार से, अमित उपाध्याय जी। उपाध्याय जी क्या है आपकी जिज्ञासा, कहिए
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मान के चलिए पीएफ अकाउंट है और कोई जॉब करते हैं और मान के 20 साल या 25 साल तक जॉब किए या फिर अपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिए, बिजनेस कर दिए, तो पीएफ अकाउंट को क्या वैसे ही रहता है या फिर उसको कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि जो आम आदमी उपभोक्ता है, जो मान लीजिए जो नॉर्मल श्रमिक लोग हैं, एक उसमें होता है पीपीएफ अकाउंट, जो पीएफ और पीपीएफ में थोड़ा सा भी इसका डिफरेंट थोड़ा बता दीजिएगा। जी
1: जी
0: हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि ईपीएफ में क्या है, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपने पैसा जमा किया, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल तक काम किए उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये जो पैसा है 55 साल तक जो रिटायरमेंट जो एज है 58 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है तब तक आप अपना सेविंग्स पीएफ के अकाउंट में आप रख सकते हैं। हर साल ये आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, इसमें से जब चाहे जैसे मैंने कहा अप टू 75% आप निकाल सकते हैं। इस टाइम हमने जो अभी जून में जो स्कीम जो निकाला है, नोटिफाई किया है, उसमें हमने ये भी कहा है कि किसी कारणवश, मतलब आपको ये नहीं हो कि कोई बीमारी हो या आपको घर चाहिए या फिर घर बनाना है या फिर विवाह क्या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी और रीज़न से भी आपको निकालना है पैसा, तब भी पीएफ अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टअप में अगर आपको कुछ पैसा इसमें से पीएफ से निकाल के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये अकाउंट जो है आपके 58 ईयर्स उसके बाद 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा, आप यहाँ पे पैसा सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट ऑनलाइन पासबुक आपका आपको हमेशा दिखता रहता है, तो इसमें बैंक से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो इसमें आप पैसा जरूर जोड़ के रखिएगा। सेकंड, आपने बोला कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आप अपने आइदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट के खाते में आप खोलते हैं, इसमें हर वर्ष में आप मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये ईपीएफ से काफ़ी कम मिलता है आपको, और ये हर 5 साल 15 पहले 15 साल तो रहता है उसके बाद हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ता है. तो ये आपका कंप्लीटली वॉलंटरी

0: फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है और आपके एम्प्लॉयर आपके नियोक्ता जो है वो भी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डिफरेंस है।
1: जी जी जी, तो आशा है आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर चर्चा कर रहे हैं और आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं रमेश जी, और उनसे अब हमारा जो ये सवाल है वो ये है अगला कि प्राय ये हमारे एक साथी ने ही दरअसल हमसे अनुरोध किया कि ये भी पूछिए कि क्या ऐसा है कि ये जो ब्याज दर है या जो सरकार की ओर से जो उस पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है क्या वो मार्केट लिंक्ड है या वो जो दर घोषित कर दी गई वही है या उसमें जो उतार चढ़ाव है उसका आधार क्या रहता है।
0: हाँ, तो मैं ये अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम घोषणा करते हैं ये हमारा जितना भी आप जैसे जितने कर्मचारी हैं जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन से हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है उनका बनाया हुआ जो अधिनियम है जो रेशियो है कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं उसके स्ट्रिक्टली उसके अनुपालन हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा करीब करीब 85% जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब जो फिक्स्ड ब्याज देने वाली सिक्योरिटी है जैसे केंद्र सरकार का बॉन्ड हो गया हो या फिर रिजर्व बैंक का बॉन्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स हो इसमें हम निवेश करते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 15% जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है इस पे हम जो इंडेक्स फंड्स हैं इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहता है और इसमें से जो हमारा हर साल में इसका जो रिटर्न आता है वो हम सबको एट नो कॉस्ट बेसिस, मतलब हम इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं रखते, हम इसको बांट देते हैं। हम इसी हिसाब से हम ये हर साल में हम जब अपना जो जैसे कि बही खाता टाइप का हम जब निकालते हैं कि हमने कितना कमाया और हमको कितना ब्याज देना है, ब्याज की वजह से कितना हमारा खर्चा आएगा, ये दोनों का हिसाब बराबर करके उसके हिसाब से अगर 8.25% बना तो हम इंटरेस्ट 8.25% देते हैं, अगर कम ब्याज मिला हमको कम रिटर्न मिला तो हम 8% या जो भी है ज़्यादा मिला तो 8.5% हम ब्याज देंगे। तो ये मार्केट लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड है और हर साल के एंड पे घोषणा किया जाता है और इसका जो भी राशि है आपका PF बैलेंस से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
1: जी, मौजूदा दौर में देखें तो सामाजिक आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं और लोग परिश्रम अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी एक कंपनी यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है तो वो कई बार होता है कि दो जगह भी वो काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ दोनों जगह उसको ये जो प्रोविडेंट फंड है उसका उसकी व्यवस्था है तो क्या उसे उन दोनों का लाभ मिलेगा या दोनों जगह उसके कटवाने की अनिवार्यता होगी?
0: ज़रूर, ये जो है ये अगर जिसको बोलते हैं कि काफ़ी आज के यूथ जो हैं सुबह कुछ काम कर लेते हैं शाम को और कुछ जगह पे काम कर लेते हैं तो अगर दोनों जगह से उसका PF अगर कट रहा हो तो ये दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके खाते में दिखेगा, दो एम्प्लॉयर दिखेंगे, दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो है उससे लिंक जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में दिखेगा। इसमें कोई भी हमारे तरफ से EPF कानून में कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रुकावट नहीं है, ये कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है ये जमा हो सकता है।
1: ये नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है कि यदि उन्हें ये आपत्ति नहीं है कि आप दो जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते और वो लेकिन इस स्थिति में जो उनका जो नंबर है जो
0: यूएन नंबर हर जगह हर एम्प्लॉयर को उसको यूएन नंबर देना है।
1: जी जी जी, और इसमें एक और जो प्राय एक समस्या यदि आती है तो देखें कि ऐसी स्थिति में कि यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मौत हो जाए

0: थी ये काम करते हुए, और उन्होंने बनाया था किसी को अपना नॉमिनी, तो वो जो स्थिति है वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो काफ़ी जटिल हो जाती है, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको ये बताइए।
1: तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो ये वेज सीलिंग जो सीमा सीलिंग जो इंक्रीज हुआ
0: जी,
1: तो उससे ना ही प्रोविडेंट फंड बट इवन पेंशन स्कीम में और EDLI दोनों में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी आएगा। तो हमारा जो पेंशन स्कीम था वो 15,000 से सीमित था, इसका मतलब अगर कोई 16,000 रुपया भी कमा रहा हो तो हमारा पेंशन स्कीम का पात्र नहीं था, वो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ, वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था। अब जब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है तो इसका जो है ही बिकम्स, वो अब पेंशन स्कीम का भी पात्र बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% डाइवर्ट होके वो उसके खाते में, पेंशन खाते में चला जाता है। अगर 10 साल तक वो अगर नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन, लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये भी एक बहुत मेजर फायदा है इसमें। और जैसा कि आपने कहा कि EDLI जो हम बोलते हैं एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेंबर का डिमाइस हो जाता है तो उसके सर्वाइवर जो नॉमिनी हैं तो उनको जो है ना केवल फैमिली पेंशन बट EDLI में 2.5 लाख से 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी उसको प्राप्त मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है आपने सही कहा, इसमें अगर नॉमिनी होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड है हमारे वेबसाइट में, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तुरंत जो नॉमिनी को पूरा पैसा EDLI का इमीडिएटली मिल जाता है। उसको अगर ई नॉमिनेशन किया हुआ है तो उसको क्लेम फॉर्म एक भरना है और क्लेम फॉर्म के भरते ही उसको पैसा मिल जाता है। तो ये एक एडिशनल फायदा है अगर 25,000 तक का वेज सीलिंग है, अगर वो कोई भी एम्प्लॉई 33 साल काम करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन जो है 12,500 रुपये, अगर वो 25,000 पे कंटिन्यूसली पे कर रहा है तो उसको पेंशन 12,500 रुपये का।
0: लेकिन क्या केवल नॉमिनी का नाम भर देना ही पर्याप्त है या वो ई साइन होना चाहिए इस विषय में?
1: नहीं, तो मेंबर को ई साइन करना पड़ता है और नॉमिनी का आधार भी उसको देना पड़ता है।
0: जी जी जी जी, तो ये जानकारी तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही और मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपनी तमाम जिज्ञासाओं के जो हैं जवाब इसमें ज़रूर मिले होंगे। और दोस्तों, अब समय हो रहा है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फ़ोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति हमारे स्टूडियो में पधारे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारी व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमेरिका के शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर
3: जीता। जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
4: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्रांश पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
3: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
5: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने

0: सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
2: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
2: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other

0: बड़ा हथियार सेपेक टेकराव। सेपेक टेकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
1: भारत के पुरुष सेपेक टेकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टेकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टेकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा। जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीत कर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टेकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टेकराव में अब तक 2 कांस्य पदक है।
0: टेबल टेनिस की, भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयरबाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shreeja Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0. And thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
0: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया।

0: वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आद्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में दो मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
1: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya, the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye. Aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko. Unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaate ki takkar thi South Korea ke khilaaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko. Magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना पांचवा मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
2: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
0: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनिए प्यासा फिल्म से ये गीत। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत है SD बर्मन का।

आप सुनिए आशा भोसले की आवाज़ फिल्म फिर वही रात से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है राहुल देव वर्मन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आनंद लीजिए संतूर वादन का राग जयंत मल्हार में। संतूर वादक सतेंद्र सिंह सोलंकी से और तबला संगीतकार हैं रामेंद्र सिंह सोलंकी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।